स्वर रंजनी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने पंडित मदन शंकर मिश्रा द्वारा बजाए सितार पर राग रामकली सुना।

0: सुबह के 6 बजने को हैं। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें

0: कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Naolekar. Census Commissioner along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as the members of the committee. The Joint Secretary for Nurse 1 in Home Ministry will serve as the member secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to the national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. We have a report.
2: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
1: Central Board of Secondary Education, CBSE, has clarified that there has been no security breach in its actual on-screen marking system used for evaluation of answer books. The board said that the URL cbse.onmarks.co.in is the testing site only.

0: भाई बलविंदर सिंह रंगीला की आवाज़ में ये शब्द आपने सुना, और इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है मेरी प्यारी पपेट और मैं इसका पपेटियर। कम थोड़ा सा नियर, हाउ आर यू डियर? अरे क्यों बैठी है मुंह लटका कर? खेल का टाइम है, कुछ खो गया है क्या?
3: खो ही जाएगा, आने वाले समय में लोग मैप लगा कर ढूंढेंगे। फोन में रास्ता बताने वाली दीदी का काम बढ़ने वाला है।
2: अरे क्या खो गया है?
3: इस बोतल का पानी जो अब नहीं है, तूने अपनी साइकिल की सीट पर डाल दिया फिजूल में।
2: अरे सीट गर्म हो गई थी।
3: मुझे प्यास लगी है, अब मेरा दिमाग गर्म हो रहा है।
2: अरे तो ला देता हूँ ना पानी।
3: जा ढूंढ, आगे GPS लगेगा तब पानी मिलेगा।
2: जाने कैसी कैसी कहानियाँ बनाती है, कैसी वाणी है तेरी।
3: याद रखियो, पानी वाणी और कहानी बचा कर रखने की चीज है अगली पीढ़ी के लिए।
2: बात तो तेरी काम की लगती है।
3: अच्छा तो फिर एंटर मार दे अपने दिमाग के कंप्यूटर में, फटाफट थोड़ा कंट्रोल कर, थोड़ा सा सेव कर, तभी तो मिलता रहेगा सबको वाटर।
0: श्रोताओं, यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु के जीवन से प्रसंग।

चैतन्य महाप्रभु का नाम उनके माता पिता ने प्रेम से विशंभर रखा था। माता पिता प्रेम से उसे निमाई कहते थे। निमाई को पढ़ने में बहुत रस आता था। 11 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने बहुत कुछ पढ़ डाला। पिता अपने पुत्र की चतुराई सुनकर बहुत खुश हुआ करते थे और सोचते थे कि निमाई को बड़ा विद्वान बनाएंगे, पर होने के आगे किसका वश चलता है। एक दिन अचानक उनके पिता को तेज ज्वर आया और वो चल बसे। घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माँ को देखकर निमाई ने कम उम्र से ही परिपक्वता को धारण कर लिया। उन्होंने अपने साथ साथ माँ को भी संभाला। व्याकरण के साथ साथ अब उन्हें बहुत सी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान हो गया था। उनके ज्ञान की चर्चा हर किसी की जुबान पर थी। लोग उन्हें अब निमाई जी कहते थे। निमाई के बहुत गहरे मित्र थे रघुनाथ जी। रघुनाथ जी भी बहुत अच्छे विद्यार्थी थे। इन दिनों वो एक ग्रंथ लिख रहे थे। उस ग्रंथ में रघुनाथ जी बेहद मेहनत कर रहे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा कि जब ये ग्रंथ लोगों के सामने आएगा तो उनकी विद्वता की चर्चा अवश्य होगी। तभी कहीं से उन्हें ये पता चला कि उनके मित्र निमाई जी भी उसी विषय पर एक ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। ये सुनकर रघुनाथ जी निमाई जी के घर पहुंचे और बोले, मैं न्याय पर एक ग्रंथ रचना कर रहा हूँ, क्या तुम भी न्याय पर कुछ लिख रहे हो? रघुनाथ जी की बात सुनकर निमाई जी मुस्कुराकर बोले, अरे रघुनाथ जी, मैं कहाँ विद्वान हूँ। विद्वान तो आप हैं जो ग्रंथ पर इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये सुनकर रघुनाथ जी बोले, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। कृपया मुझे बताएं कि आपने ग्रंथ में क्या लिखा है। निमाई जी मना करते रहे, लेकिन जब रघुनाथ जी किसी तरह नहीं माने तो वे बोले, अगर तुम नहीं मानते तो ठीक है, सुन लेना, पर अभी मैं गंगा जी की ओर जा रहा था। रघुनाथ जी बोले, ग्रंथ को भी साथ ले लीजिए ना, नाव पर सैर करते हुए सुना देना। रघुनाथ जी की विकलता और अधीरता देखकर निमाई बोले, ठीक है मित्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। उन्होंने ग्रंथ को ले लिया और गंगा जी की ओर चल दिए। एक नाव में बैठकर निमाई रघुनाथ जी को तन्मयता से अपना ग्रंथ सुनाने लगे। निमाई जी जैसे जैसे ग्रंथ पढ़ते जाते, वैसे वैसे रघुनाथ जी का चेहरा फीका पड़ता जाता। आखिरकार रघुनाथ जी अपने आवेगों पर काबू न रख पाए और बिलख बिलख कर रोने लगे। ये देखकर निमाई जी दंग रह गए। उन्होंने अपने ग्रंथ को एक ओर रखा और रघुनाथ जी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, क्या बात है मित्र, रो क्यों रहे हो? रघुनाथ जी बोले, निमाई जी, मैंने अथक प्रयासों के बाद न्याय पर एक ग्रंथ लिखा है, लेकिन तुम्हारी अवधारणाओं और विचारों के आगे वो कुछ भी नहीं है। मित्र की बात सुनकर निमाई जी मुस्कुराते हुए बोले, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो? इसके बाद उन्होंने झट अपना ग्रंथ गंगा को समर्पित कर दिया और बोले, ये तो मात्र मेरे लिए रचित एक ग्रंथ है, मित्र के लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। निमाई जी का त्याग देखकर रघुनाथ जी दंग रह गए और उनके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोले, मित्र, तुम महान हो और तुम्हारी महानता को अनेक पीढ़ियां याद रखेंगी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आपने सुना चैतन्य महाप्रभु के जीवन से प्रसंग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं रामचरित मानस बालकांड 68।

एक बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, क्योंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

0: पूर्व आईपीएस अधिकारी। इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य पूर्वन्यायाधीशः प्रकाशप्रभाकरनावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्यरूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्यसचिवरूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुम् अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेऽपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्री मोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतन्त्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेशमन्त्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिन्द प्रशान्त प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मन्त्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। सीबीएसई ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आपने सुना अजय कपिल द्वारा गाए भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, और सुबह के बज चुके हैं पूरे 7:33 और आप सुन रहे हैं आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, जिसमें मैं हूं आपकी दोस्त आरती गौर। और उम्मीद करती हूं कि आपकी सुबह की चाय कड़क होगी, मूड फ्रेश होगा, और इस गीत को सुनने के बाद आपकी जो सुबह है उसकी खूबसूरती में इजाफा भी हो गया होगा। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। चलिए सुनते हैं इस कार्यक्रम को, और इसके साथ ही बहुत सारी बातें भी आपसे शेयर करनी है।

जी हाँ दोस्तों, हमें भी आपसे मिलना, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और आप सबकी लाइफ में भी ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिससे मिलकर बातें करके आप सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। वैसे इसी बात पर मुझे एक बात भी याद आई है कि अक्सर हम अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी बड़ी गाड़ियां, सब कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन जानते हैं इंसान की पहचान किस चीज से होती है? उसके व्यवहार से। आपका टैलेंट आपको ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचाता, लेकिन आपका व्यवहार आपको ऊंचाई पर बनाए रख सकता है। यानी कि अगर आपके पास टैलेंट और बिहेवियर इन दोनों का मिश्रण है ना, तो फिर समझिए कि आपकी जीत पक्की है। क्योंकि कई बार आप ऊंचाई पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन आपका व्यवहार आपके साथ रहने वाले लोगों को आपसे दूर कर देता है। और कभी कभी हो सकता है कि आप हार गए हों, बहुत सारी मुश्किलें आपने तय करी हों, लेकिन आप हार गए हों, फिर भी क्योंकि आपका बिहेवियर बहुत अच्छा था, आप लोगों के साथ बहुत अच्छे थे, लोग आपको याद रखते हैं और वो आपकी हार में, आपकी जीत में हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो कोशिश कीजिएगा, अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए।

दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बिहेवियर के ऊपर और इसी पर मुझे एक कहानी याद आई है। हमेशा मैं आपको कोई ना कोई एक मोटिवेशनल ज्ञान या फिर एक कहानी ज़रूर सुनाती हूँ, तो मुझे एक कहानी मैंने कहीं पे पढ़ी थी वो याद आई है कि एक कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी थी जिसमें बहुत सारे ऑब्वियसली कर्मचारी काम करते थे, लेकिन उस कंपनी में सब में कुछ अलग सा ही ईगो था। वो लोग अपना काम करते थे, आते थे, चले जाते थे, एक अलग ही एटीट्यूड में रहते थे। लेकिन वहाँ पर काम करने वाले एक पियोन थे और उनका नाम था रामू काका। उनका बिहेवियर सबसे अलग था। वो जब भी जाते थे तो वहाँ पर एक गार्ड बैठते थे, उनसे बहुत अच्छे से बात करते थे, हमेशा उनको आते वक्त गुड मॉर्निंग बोलते थे, जाते वक्त बाय बोलते थे, अगले दिन मिलने का वादा करते थे और बहुत ही प्यार से वो सबके साथ रहते थे। उनका बिहेवियर उनको सबको ही बड़ा अच्छा लगता था। एक दिन की बात है कि जो कंपनी थी वो जब शाम को जब शिफ्ट ख़त्म हुई तो फिर गार्ड जो है वो घबरा गया और भागता हुआ वो अंदर गया तो सीधे मालिक के कमरे में चला गया और मालिक से बोला कि सर, रामू काका अभी तक लगता है ऑफिस से गए नहीं है, सब लोग निकल गए हैं, मुझे डर लग रहा है उनके लिए। तो कंपनी के मालिक ने बोला कि तुम पागल हो गए हो क्या, सब जा चुके हैं, इतने सारे लोग यहाँ काम करते हैं, तुम्हें क्या पता वो चले गए कि वो हैं। उसने कहा नहीं सर, वो जा ही नहीं सकते क्योंकि उनकी आदत है सुबह आकर मुझे राम राम कहने की और जाते वक्त मुझसे बाय कहने की और अगले दिन मिलने का वादा करने की। उनका ये व्यवहार ही तो है जिसकी वजह से मैं हमेशा उनको मिस करता हूँ और मुझे पता है कि वो भी नहीं गए हैं, अगर वो जाते तो मुझे बाय करके ज़रूर जाते। ये सुनने के बाद कंपनी के मालिक ने खोजबीन शुरू करी और सच में उस गार्ड की बात बिल्कुल सच में, बेसमेंट में रामू काका फंस गए थे और वहाँ पर वो पाए गए बेहोशी की हालत में। उन्हें बाहर लाया गया और आप जरा सोचिए उनकी जान बच गई। उनकी जान क्यों बची, क्या उस गार्ड की वजह से? नहीं, उनकी जान बची उनके व्यवहार की वजह से, क्योंकि उन्होंने सबसे इतना अच्छा ताल्लुकात बनाए, इतने प्यार से सबसे मिलते थे, अपने मीठे व्यवहार की वजह से उन्होंने गार्ड के दिल में ऐसी जगह बनाई कि उसे एहसास हो गया कि वो नहीं गए हैं और उसने उनकी जान बचा ली। तो कुछ समझ में आया।

दोस्तों आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये तय करता है कि लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में क्या सोचते हैं। इसलिए इज्जत कमाना सीखिए और अब जब भी अपने घर से निकलें तो अपने से छोटे हों या बड़े हों हर किसी को एक प्यारी सी मुस्कान और सम्मान जरूर दीजिएगा। यकीन मानिए आप हो सकता है उनके घर में जगह ना बना सके पर उनके दिल में जगह जरूर बना लेंगे और वो आपको हमेशा

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

जी हाँ, मोहब्बत ही तो मोहब्बत से पुकार सकती है, यानी कि जो इंसान दूसरों से, खुद से, हर किसी से मोहब्बत करता है, इश्क करता है, पसंद करता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोगों का भला सोचता है, अच्छा सोचता है, वही तो पुकार सकता है इस तरह से। तो आप भी अपने दिल में मोहब्बत को बसाइए और लोगों से अच्छा व्यवहार बनाइए, क्योंकि ताकत जो है वो डर पैदा कर सकती है, लेकिन दिल जीतने हैं तो फिर अच्छा व्यवहार तो चाहिए ना।

और दोस्तों अब इस गीत के साथ आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी जिंदगी में मोहब्बत को बसाएंगे, यानी कि अच्छे व्यवहार का पालन करेंगे और खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे। तो फिर गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। फिलहाल अपनी दोस्त आरती को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग, या आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
5: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
4: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
6: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी

0: की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
1: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है, जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी

0: द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा गैट के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि गैट के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
1: यह रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें दो ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राहम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
0: और अंत में लीजिए सुनिए।

0: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। सेंटर फॉर्म्स हाई लेवल कमिटी टू स्टडी डेमोग्राफिक चेंज कॉज बाय इन्फिल्ट्रेशन एंड अदर रीजंस। सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर इट्स वर्डिक्ट टुडे ऑन पिटिशंस चैलेंजिंग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। CBSE rejects claim circulating on social media about breach of its on-screen marking system, saying it was only testing site and not actual platform. IMD issues red alert for severe heat wave conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. NASA releases details of robotic landers, hopping drones and vehicles it aims to send to moon as part of its plan to build lunar base. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic changes caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. A report.
2: The high-level committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shift at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the high-level committee on demographic change.
3: I want to talk about the situation in front of the country. Under the Sadyantra, देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट विद इन 1 ईयर। इफ नेसेसरी द टेन्योर ऑफ द कमिटी मे बी एक्सटेंडेड बाय अप टू 6 मंथ्स। विद अनुभव मिश्रा, दिस इज विष्णु PS, आकाशवाणी न्यूज दिल्ली।
1: The Supreme Court will today pronounce its judgment on a batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rules done by the Election Commission of India. A bench of Chief Justice of India, CJI Surya Kant and Justice Joymala Bagchi is scheduled to pronounce its verdict today after reserving judgment in the matter earlier this year following extensive hearings. The petitions challenging the legality of the SIR exercise undertaken by the poll body, contending that the revision process exceeds the powers conferred upon the ECI under Article 326 of the Constitution, the Representation of the People Act 1950 and the rules framed thereunder.

0: conditions in Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru storm into final, beating Gujarat Titans by 92 runs in qualifier 1 at Dharamshala. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरेसानी को चैलेंज किया गया है। सीबीएसई ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम की खिलाफ वर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटन्स को 92 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए एक आला सतही कमेटी तशकील दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर मस्कूरा कमेटी की सदारत करेंगे। मर्दुमशुमारी के कमिश्नर के साथ साबिक आईएएस अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक आईपीएस अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर मुआशियात डॉक्टर शामिका रवि को कमेटी के मेंबरान के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में फॉरेनर्स 1 डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में गैर फितरी तब्दीली हो रही है और इससे किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल को बड़ा खतरा लाहिक होता है। उन्होंने मजीद कहा कि आबादी के तनासुब में तब्दीली एक संगीन मामला है जो सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी से ही नहीं बल्कि कौमी सलामती, अमनो कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली मुआशरे के तहफ्फुज़ से भी वाबस्ता है। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
2: आला सतह की ये कमेटी गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीलियों का जाम जायजा लेगी। ये कमेटी मजहबी और समाजी तबकों की सतह पर आबादी में होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों के रुझान का तजज़िया भी करेगी और इसके लिए एक मनसूबा बंद और मुकर्रर वक्त के अंदर पूरा होने वाला हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से यौम आज़ादी के अपने खिताब में आबादी के तनासुब के एतबार से होने वाली तब्दीली के बारे में आला सतह की कमेटी का ऐलान किया था।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: ये कमेटी एक साल के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। अगर ज़रूरी हुआ तो कमेटी की मुद्दत में 6 माह की तौसी की जा सकती है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असगर अली।
1: सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरेसानी SIR के कानूनी जवाब को चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस चोयमालिया बागची पर मुश्तमिल एक बेंच आज अपने फैसले का ऐलान करेगी। मस्कूरा बेंच ने तफसीली समाअत के बाद इस साल के अवाइल में इस मामले में अपना फैसला महफूज रखा था। इन दरखास्तों में इंतखाबी कमीशन की जानिब से SIR के अमल के कानूनी जवाब को ये दलील पेश करते हुए चैलेंज किया गया है कि वोटर फहरिस्तों पर नजरेसानी का ये अमल आईन की दफा 326, अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 और बाद में मुरतब किए गए जाब्तों के तहत चुनाव कमीशन को हासिल इख्तियारात से तजावुज करता है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों में SIR अमल से मुतासिर होने वाले राय दहिंदगान की मुश्किलात दूर करने और शफाफियत को फरोग देने की खातिर

0: अबूरी हिदायत जारी की थीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने ये वजाहत की है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए उसके हकीकी ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी कोताही नहीं हुई है। बोर्ड ने कहा है कि दाखिली जांच और नज़रसानी के मकासद के लिए सैम्पल डेटा के साथ URL cbse.onmarks.co.in सिर्फ एक टेस्टिंग साइट है। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: CBSE ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो URL सर्कुलेट किया जा रहा है वो इम्तिहान के पर्चों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए पोर्टल से मुख्तलिफ है। बोर्ड ने कहा है कि शिकायत के इजाले के लिए मजबूत निज़ाम के साथ असेसमेंट में शफाफियत बढ़ाने के खातिर ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम नाफिज किया गया है। CBSE ने अपने हकीकी ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम में किसी तरह की सिक्योरिटी खिलाफवर्जी के दावों को खारिज करते हुए सभी मुतालिका अफराद को फिर यकीन दिलाया है कि जांच के प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सभी तहफ़ुज़ात नाफिज किए गए हैं। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के अपने दौरे के दूसरे दिन आज सुबह नाथुला पास जाएंगी। सदर जमहूरिया नाथुला में तैनात फौजियों से बातचीत करेंगी और इस दौरान फौज के आला अहलकार उन्हें इलाके की मुख्तलिफ सरगर्मियों से वाकिफ कराएंगे। सदर जमहूरिया बाबा हरभजन की दरगाह भी जाएंगी। बाद में दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू गंगटोक में मनन केंद्र में सिक्किम यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद के दौरान तलबा को डिग्री और तमगों से सरफराज करेंगी। 33 डिपार्टमेंट से वाबस्ता तकरीबन 14,000 डिग्रियां दी जाएंगी, जिनमें 199 खवातीन समेत 285 तलबा को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए जाएंगे। कल सदर जमहूरिया ने ऑर्किडेरियम और नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी का दौरा किया था। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दीगर अहलकारों ने ऑर्किडेरियम में सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोलकाता की एक खसूसी अदालत ने मालदा के मोथाबारी इलाके में जुडिशल अफसरान पर हमले के मामले में मजीद 15 अफराद को 5 जून तक कौमी जांच एजेंसी की तहवील में भेज दिया है। पीर की रात को मोथाबारी और आसपास के इलाकों में मरकजी एजेंसी की छापे मारने की कार्रवाई के दौरान इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था। अदालत की कार्रवाई के दौरान NIA ने इस मामले के सिलसिले में 2 केस डायरियां पेश की। NIA के जराए के मुताबिक इस वाकये के दिन की CCTV फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स का तज्जिया करने के बाद मुश्तबा अफराद की शिनाख्त की गई। एजेंसी ने मजीद छानबीन के लिए गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से 15 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की अपनी हम मनसब पैनी वोंग के साथ 17वें वज़राए खारजा फ्रेमवर्क मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत बहरुल काहिल मगरबी एशिया की सूरत हाल और दीगर इलाकाई आलमी और कसीर जहती मामलात पर तबादलाए ख्याल किया गया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की मुसलसल पेशरफ्त का जायजा भी लिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जौहरी तवानाई पैदा करते हुए यूरेनियम की फराहमी समेत तवानाई के शोबे में बाहमी तआवुन बढ़ रहा है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों मुल्क अहम मादनियात के शोबे में मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून के केरलम पहुंचने में 1-2 दिन की ताखीर हो सकती है। इससे पहले मानसून के कल वहां पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: केरलम के जनूबी हिस्से में कुछ इलाकों में आज सुबह तक 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दीगर मकामात और लक्षद्वीप में कोई बारिश नहीं हुई। केरलम में फिलहाल अगले 4 दिन तक तेज़ बारिश होने की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। इससे पहले वहां मॉनसून के 26 मई को पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी

0: एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में फजाई आलूदगी कम करने की खातिर मुख्तलिफ एजेंसियों के माबैन बेहतर तालमेल, तेजी के साथ अमल दरामद और सख्ती के साथ निफाज की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर मौसूफ ने कौमी राजधानी में हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने की खातिर किए जाने वाले इकदाम की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ जायजा मीटिंग की। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाज़ों की तफसीलात जारी की हैं जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। अमेज़ॉन के बानी जेफ बेजोस की खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन उन कंपनियों में से एक है जिनका इंतखाब मशीनें तैयार करने के लिए किया गया है। अमरीका का ये मनसूबा है कि साल 2028 में सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल अमरीकी खलाबाजों को फिर से चांद पर भेजा जाए। रेलवे की वजारत ने हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली DEMU ट्रेन के लॉन्च की मंजूरी दे दी है। इसमें 10 रेल डिब्बे होंगे। ये इकदाम रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार ट्रांसपोर्टेशन को फ़रोग देने की सम्त एक अहम कदम है। ये रेलगाड़ी बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल्स का इस्तेमाल करते हुए जींद और सोनीपत के दरमियान चलेगी, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा होगी। मस्कुरा रेलगाड़ी में 1200 किलोवाट की मजमुई पावर सलाहियत होगी। इस ट्रेन में पावर निज़ाम सिर्फ एक रेल इंजन तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये ट्रेन के सभी रेल डिब्बों तक फैला होगा। कल पंजाब में हुए आम बल्दियाती इंतखाबात में तकरीबन 64% वोटिंग दर्ज की गई। 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, 75 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 19 नगर पंचायत समेत 102 बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए इंतखाब कराए गए थे। मुखालिफ पार्टियों के हामियों के दरमियान कुछ झड़पें भी हुईं, लेकिन रियासती इंतखाबी कमीशन ने इस बात की तस्दीक की है कि इंतखाबी अमल ज़्यादातर पुरमन रहे। वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इस बीच गुरदासपुर के दीनानगर, कादियान और शाम चौरासी के म्यूनिसिपल काउंसिल हलकों में 13 जून को इंतखाबात कराए जाने का ऐलान किया गया है। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर 1 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर IPL 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जानिब से दिए गए 255 रन के बड़े निशाने का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 3 गेंद रहते 162 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबले होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असगर अली।
2: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में होने वाली क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग को अहमियत के साथ शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि क्वाड वज़राए खारजा के इजलास में अहम समझौते। रोजनामा प्रताप ने इसे अपनी पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि हिंद बहरुल काहिल खत्ते में बहरी सलामती में क्वाड रोल निभाएगा। हज के सबसे अहम रुकन वकूफ अरफात की अदायगी के मौके पर दुनिया भर से लाखों हुजाज इकराम के मैदान अरफात में जमा होने की खबर को भी बेशतर उर्दू अखबार ने पहले सफ़े पर जगह दी है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर उनको मुबारकबाद दिए जाने और नेक ख्वाहिशात के इजहार को भी अखबार ने अहमियत के साथ शाया करते हुए इन 12 सालों को कौम खिदमत, अच्छी हुक्मरानी, खुद इन्हेजारी, गरीबों की फलाह बहबूद और हिंदुस्तान की आलमी साख को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का दौर करार दिया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के बैन अलावी सरहदों को नाकाबिल तस्खीर बनाने के बयान को दूसरी सबसे अहम खबर बनाई है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरख्वास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजर सानी को चैलेंज किया गया है। CBSE ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम की खिलाफ वर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है।

और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, समय हुआ है सुबह के 8:45 और पूरे 15 सेकंड। और आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे राजपाल सिंह द्वारा गायन का राग बसंत मुखारी। तबले पर संगत रहेगी जुहीब अहमद खान की और हारमोनियम पर कौशिक मित्रा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राग बसंत मुखारी में गायन। कलाकार थे राजपाल सिंह। आपके साथ तबले पर संगत करी थी जुहेब अहमद खान ने और हारमोनियम पर कौशिक मित्रा ने। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साइंस मैगजीन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिट्टी दी महक। सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों

0: से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
1: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
0: सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर किए गए एक दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीबीएसई ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग यूआरएल पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: सीबीएसई बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा, जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर काम हो रहा है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जिंद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी क्षमता 1200 किलोवाट होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस के साथ खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बहुत अच्छे अच्छे हम लोग ने सोचा है कि गीत भी सुनवाएंगे अपने श्रोताओं को, और साथ में उनके बहुत सारे मेल आने शुरू हो गए हैं जो हम लोग देख रहे
1: भाई
0: हैं।
1: ये बेसब्री से इंतजार करते हैं कार्यक्रम से पहले ही।
0: और क्या, और अच्छा लगता है जब हमारा कोई इंतजार करता है, और हमको और अच्छा
1: सीरियसली
0: लगता है कि हम जब
1: सीरियसली
0: उनके सारे इंतजार को पूरा करते हुए उनके मेल पढ़ते हैं और उनके संदेशों को ज्यादा से ज्यादा शामिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शुरुआत
1: जल्दी से
0: तो
1: स्वागत कीजिए पहले अपने सारे श्रोताओं का जो बेचारे बेसब्री से वेट कर रहे हैं।
0: जी, लेकिन पहले एक प्यारे से गीत के साथ स्वागत करते
1: वही
0: हैं।
1: तो कह रही हूँ,
0: हाँ तो चलिए,
1: खूबसूरत सा गीत हो जाए
0: हाँ
1: इनके
0: तो
1: नाम के
0: ये एक
1: लिए।
0: बहुत ही प्यारा सा गीत है अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाज में, फिल्म हीरो से।

तो दोस्तों कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है खूबसूरत से गीत से। कार्यक्रम में हमने चार चांद लगाने की कोशिश तो की है, लेकिन आप भी ये कोशिश कर सकते हैं अपने मेल के जरिए। वैसे तो बहुत सारे मेल हमें मिल गए हैं, लेकिन आप भी ipradiodelhi@gmail.com पर अपने मेल हम तक पहुंचाकर इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बना सकते हैं।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो आरती, अब हम लोग देख लेते हैं, बहुत सारे हमारे पास मेल आ चुके हैं। तो सबसे पहला मेल जो मैं पढ़ रहे हैं हम, वो है उमर खेड़ महाराष्ट्र से ही हमें मेल मिला है। अभिजीत का, श्रीमती सरिता, प्रणय, सिद्धांत और टुक टुक है हमारे साथ जुड़े हुए। इसके अलावा बहादुर नागपुर से, बहादुरा नागपुर से है ये शैलेश, श्रीमती वैशाली, एकांश, सुमित और ध्वनि कुमारी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और इसके अलावा
4: जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, और ये हैं मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नमाज, हसन बाबू और मिका बेबी चाहत
3: जी। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चैतन्या मेघा चंडीगढ़ से, और राहुल खुराना रचित और किशु खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
4: साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज।
3: और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहाला पटियाला से हमारे पास मिला है मुकेश भट्ट का और नीलम, निहारिका और वंश का।
4: तो हमारे साथ बहुत सारे श्रोता जुड़े हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जो मैं इनसे भी पूछूंगी, लेकिन फिलहाल मैं तुमसे पूछने जा रही हूँ कि भाई कैसी लग रही है गर्मी, मजा आ रहा है?
3: कैसी बातें कर रही है आज देखिए आरती। और आरती आज सुबह जब हमारे आ रही थी तो आरती की हालत बहुत ही खराब थी,
4: सीरियसली
3: जी। और जब घर से यहाँ आई स्टूडियो में तो ये थोड़ी देर के लिए शांत हुई, हमने कहा क्या हुआ आरती, जो इतना बोलने वाली, इतना शांत कैसे?
4: बोल शांत हो गई है क्योंकि इस गर्मी ने उसे चुप करा दिया।
3: हाँ, और इतनी गर्मी से ये परेशान थी, तो फिर थोड़ा इन्होंने पानी वानी पिया और कुछ लेमन वाली चीजें खाई।
4: आज मैंने कहा कि साथ में ग्लूकोज या ऐसी कुछ चीजें रखना बहुत जरूरी है, जो मैं नहीं लाई
3: जी। तो श्रोताओं से हमारा एक छोटा सा सवाल है कि अभी इतनी जब गर्मी पड़ रही है, देखिए दिल्ली में तो बहुत ज्यादा
4: स्टार्ट हो गया,
3: दिल्ली में तो बहुत गर्मी हो सकता है, आप जहाँ कहीं पहाड़ों पे अगर रहते हैं तो शायद आपके यहाँ इतनी गर्मी ना हो, लेकिन जहाँ जहाँ गर्मी है और आपके शहर में कैसी गर्मी है और आप इससे निजात पाने के लिए क्या क्या उपाय
4: जी,
3: कर रहे हैं,
4: फॉर्मूले हमें भी बता दीजिए, हम भी बच जाएं।
3: हाँ, तो प्लीज आप लिख के भेजिए हमें कि क्या करना चाहिए, इससे हमारे और भी श्रोताओं को पता चलेगा कि क्या मदद मिलेगी,
4: जैसी हालत नहीं होगी।
3: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए एक अच्छा सा गीत सुनते हैं और देखते हैं क्या क्या हमारे श्रोता हमें सजेशंस देते हैं।
4: बिल्कुल।

0: आरती, हमें भी याद रखना है कि हमें समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी
1: जी
0: में
1: हाँ,
0: पानी से ही राहत
1: ये
0: मिलती है।
1: भूलने की चीज है ही नहीं, इसीलिए
0: जी
1: याद आ रही थी और मैंने तुरंत पानी पी लिया।
0: बहुत अच्छा किया। और ये देखिए, हमें बहुत ही अच्छे से जो है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने ये मेल भेजा है और लिखा है, फेस पर स्माइल की और

0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी हमें मेल लिख रहे हैं, और उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी बोधराज, गीतिका और भानु प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: अल्पना, बहुत सारे मेल तो हैं और सबने अपने अपने नाम भी लिखे हैं, अपने शहर के नाम लिखे हैं, लेकिन जो
0: जी
1: सवाल हमने पूछा था उसका जवाब अभी तक हमें मिला नहीं है,
0: जी अभी
1: एक बार
0: तक।
1: दोहरा दीजिए आप।
0: हाँ, तो सवाल ये है कि आपके शहर में कैसी गर्मी है? हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत गर्मी है, और इसके अलावा इस गर्मी के मौसम में आप क्या क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं, और उसके लिए और भी सजेशन दीजिए कि लोगों को क्या क्या करना चाहिए
1: कैसे
0: जिससे वो
1: मिले इस गर्मी
0: बचे।
1: से राहत?
0: जी बिल्कुल। और देखिए, ये हमारे पास जवाब आ भी गया है, वो है चंडीगढ़ में तो बहुत गर्मी यौवन पे है, नौतपा भी अपना रंग दिखा रहा है। गर्मी में हम अपना काम सुबह सुबह निपटा कर घर पर ही रहते हैं, और फिर शाम को जब गर्मी राहत खाती है और रहम खाती है, फिर से कोई बचा हुआ पूर्ण कर लेते हैं काम। और अभी जून में अधिकांश समय मनाली और लाहौर स्पीति के में बीतेगा, जहां अभी भी अच्छी बर्फ पड़ी
1: ये
0: रही
1: तो
0: है।
1: बढ़िया
0: क्या
1: जगह
0: बात
1: है।
0: है, वहां भी एक अपना खुद का आशियाना है, आना जाना लगा रहता है। परमात्मा सबकी गर्मी से बचा कर रखे, यही दुआ है। ये लिख रहे हैं चंडीगढ़ से सतीश अनिजा विमलान जा जी।
1: तो
0: अरे
1: भाई इन्होंने तो बता दिया कि ये तो बर्फ के मजे ले रहे हैं।
0: जी, और इतनी अच्छी जगह पर हैं कि वहाँ पे आपको राहत मिल जाएगी। लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता ऐसे भी होंगे जो ऐसी जगह रहते होंगे जैसे राजस्थान, जैसे ये देखिए एक हमारे पास मेल आया है।
1: ये हैं, कहते हैं कि आप दोनों बहनों को हार्दिक नमस्कार। हमारे राजस्थान में तो भीषण गर्मी पड़ती है, और अब तो जो नौतपा चल रहा है उसमें तो भीषण गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है, और इस नौतपा का भी प्रकृति का जो संतुलन बनाए रखती है वो भी बहुत ज़रूरी है। हमें थोड़ी सहन शक्ति धारण करनी होगी और इस गर्मी को सहन भी करना होगा। भाई वो तो हम
0: जी
1: कर ही रहे
0: बिल्कुल।
1: हैं। इसके साथ लिखते हैं कि गर्मी से बचाव ही उपचार है। गर्मी से निजात पाने के लिए इन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ का सेवन करें, जैसे कि नींबू की शिकंजी, शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें,
0: जी
1: भरपूर मात्रा में पानी पिएं, और आवश्यक हो तो घर से बाहर ना ही निकलें,
0: जी
1: और पानी की बोतल साथ में लेकर निकलें अगर निकलना है तो। इसके साथ ही बोलते हैं कि लू लगने का भी खतरा रहता है, तो इसमें इमली के रस का भी प्रयोग किया जा
0: क्या
1: सकता
0: बात
1: है
0: है।
1: जो लू से बचाता है। वैसे आप जो टिप्स बता रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, कुल मिलाकर बचाव ही उपचार है। और ऐसा लिखना है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा और पूजा परिहार का।
0: जी हाँ, और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने लिखी है, और लगता है कि आगे भी और भी हमारे जो श्रोता है हमारे साथ जो जुड़ेंगे वो आगे हमें बताते रहेंगे और भी पॉइंट्स देते रहेंगे। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: फिर आ गए
1: जी हाँ, आपने बुलाया, हम चले आए।
0: जी।
1: और हमारे पास ये संदेश भी आ गया, व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष का। कहते हैं बेंगलुरु का मौसम सुहाना है, कल यहाँ अच्छी बारिश हुई थी, नौ तपा का यहाँ कोई प्रभाव नहीं है।
0: जी
1: भाई इनके यहाँ
0: बहुत
1: बारिश हुई, थोड़ी हमें भिजवा दीजिए।
0: बिल्कुल, यहाँ भी भेज दीजिए थोड़ी थोड़ी बारिश, जिससे हम लोग को भी इस गर्मी से थोड़ी राहत मिले। और अच्छा है, बेंगलोर का मौसम वैसे भी नॉर्मली अच्छा ही रहता है। और हमारे पास ये देखिए, अब सारे हमारे पास मेल जो आ रहे हैं ना, ऐसी जगहों से आ रहे हैं जहाँ पे गर्मी का प्रकोप
1: हाँ
0: नहीं। जैसे कि ये जसपुर उत्तराखंड से हमारे पास मेल आया हुआ है, रियासत हुसैन, नाजमान बेगम, रियाज क्या, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन और माहिरा नूर का। और इसके अलावा हमारे पास एक और मेल आया है।
1: ये आया है, आपकी पसंद कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता दोनों बहनों को प्रेम भरा नमस्कार,
0: आपको भी
1: प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि धूप में नहीं निकले हैं, पानी पीते रहें, पानी बराबर पीते रहें। और ये लिखने वाले हैं ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से, रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र वधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा, वेद बाबू और समस्त कठेरिया परिवार।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये राजू अग्रवाल, केशव दक्ष और विवेक नाम चौधरी, वासजिला हिसार हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: साथ ही
0: और
1: हमारे साथ जुड़े हैं श्रोता रघुवीर नगर से, लिखने वाले हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू।
0: इसके अलावा हमें नमस्कार भेज रहे हैं वंडी खेड़ा।

0: पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा। देखिए आरती जी आपकी
1: वाह,
0: नाम राशि
1: मेरी
0: कौन है?
1: हम
0: हम
1: नाम मिल
0: नाम
1: गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब और लड्डू भी
1: इनका
0: हमारे साथ
1: संदेश
0: जुड़े हैं
1: मैंने अभी लिया था
0: जी। और
1: ये।
0: देखिए ऐसे आप लोग संदेश भेजते हैं ना तो फिर बहुत सारे संदेश जो हमसे मिस हो जाते हैं वो हमसे नाराज हो जाते हैं, और हम
1: जी
0: तो अपने श्रोताओं की
1: नापसंद।
0: नाराजगी बिल्कुल नहीं चाहते, है ना? तो चलिए अगला संदेश हम बाद में लेते हैं और एक प्यारा सा गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

0: ये जो अगला संदेश हमें मिला है वो है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा लाडो, कोयल पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और टुक्कू भाविका सिक्का हमें संदेश भेज रही हैं।
1: साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कांबड़े।
0: जी हाँ, और हमारे साथ साथ में जुड़े हुए हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र दत्रेती से।
1: हमारे साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं इनका नाम लिया जा चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं अल्पना जी।
0: जी बिल्कुल। और ये भी देखिए, ये भी हमारे साथ
1: हाँ, काफी सारे
0: पहले
1: श्रोता, हम हर बार कहते हैं कि आप एक या दो से ज्यादा संदेश मत भेजे, पर आप एक दो नहीं बल्कि 10-20 संदेश भेज
0: और
1: देते हैं
0: इसमें
1: एक
0: बहुत सारे
1: साथ।
0: हमें नाराज हो जाते हैं हमारे
1: हाँ
0: श्रोता।
1: चलिए इनका
0: और
1: लेते हैं, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा का।
0: जी, और देखिए फिर से सेम संदेश हमारे पास, और ये एक और संदेश मिला है हमें, ये है जमशेदपुर से स्टेशन रोड से ये भेज रहे हैं हरजिंदर भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और पप्पी भाटिया, और ये लिख रहे हैं कब से हम इंतजार कर रहे हैं अपने संदेश पढ़ने
1: तो
0: का।
1: अपने जो साथी हैं उनको थोड़ा समझाइए, क्योंकि जो वो इतने सारे संदेश भेजते हैं ना, सेम बिल्कुल वही चीजें।
0: और इसके अलावा ये देखिए जोधपुर राजस्थान से हमारे पास रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वरी गर्वी और बेबी हिमांशु की जो है संदेश है हिमांश का।
1: इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं राजू अग्रवाल, चरण दास, पंकज, प्रीति, गांव चौधरी वास, जिला हिसार हरियाणा से, कहते 15 दिसंबर 2024 से आपका प्रोग्राम लगातार सुन रहा हूँ। भाई थैंक यू सो मच यार इतना
0: बहुत
1: प्यार देने के
0: जी
1: लिए।
0: बिल्कुल। और इसके लिए पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से हमारे साथ अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू मोहन नायक और मधु नायक हमें संदेश भेज रहे हैं।
1: साथ ही जुड़े हुए हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हसन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी, और कहते हैं हम दुआ करते हैं कि आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें।
0: जी, आपको भी जो है हमेशा खुशियाँ मिलती रहें, और यही हम भी चाहते हैं कि हमारे जितने श्रोता हैं वो स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो चलिए आगे भी और हम संदेश लेंगे, उससे पहले एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: और देखिए आरती, ये बहुत ही अच्छा सा संदेश भेजा है अनीता मुखी, सिमरन मुखी ने और सुदर्शन मुखी ने सोनीपत शांति नगर से, और ये लिख रहे हैं, कोई कुछ भी बोले हमेशा शांत रहो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर को सुखा नहीं सकती।
1: जी हाँ, बहुत अच्छी आपने लाइन लिखी है और इसके लिए तो वाह वाह बनता ही है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन एक चीज आपके में गलत है कि आपने हमारी प्यारी अल्पना जी को थोड़ा सा नाराज किया है कल्पना कहकर।
0: और देखिए ये तो एक्चुअली कल्पना लिख रहे हैं, एक अपर्णा भी लिख रहे हैं।
1: हाँ,
0: तो भाई हम लोग आपको अपना नाम बताते हैं, मेरा नाम अल्पना है और आप,
1: मेरा नाम आरती
0: तो
1: है।
0: प्लीज आप नाम सही लिखा करिए।
1: हाँ
0: और बहुत अच्छा संदेश है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा हमारे पास, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो हैं
1: वो बहुत सारे संदेश वही हैं जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और
0: जी,
1: ये हमारे पास आया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
0: और इसके अलावा संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत और भारत, कमल और पिंगा वाला चौक जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: जी हाँ, साथ में हमारे साथ जुड़े हैं लाजवाब गीत, एक मुलाकात, ये गीत इनको काफी पसंद आया है। लिखने वाले हैं पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी और गोविंद चुग जी। और इसके अलावा हमारे साथ एक और जो संदेश हमें मिला है वो है, देखिए हमारे पास फिर से वही रिपीट हो रहे हैं कुछ संदेश तो, और ये हमें नेहरू विहार दिल्ली से संदेश भेज रहे हैं कि प्रस्तुति उन्हें अच्छी लग रही है, और डीबी राणा ये संदेश हमें भेज रहे हैं। तो चलिए एक और प्यारा सा गीत लेते हैं, ट्रैफिक सिग्नल फिल्म से।

0: देखिए, हम लोग फिर से आ गए हैं और ये जो अगला जो संदेश है वो है चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जसवीर सिंह और अमनदीप, और कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
1: इसके साथ हमारे साथ वही जुड़े हैं जिनका संदेश लिया जा चुका है, आगे बढ़ते हैं।
0: अच्छा जी, और इसके अलावा ये हैं,
1: ये भी वही है, देखिए
0: अच्छा
1: इसी तरीके से बहुत सारे संदेश आ रहे हैं।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: हम आगे बढ़ते हैं किशनगंज बिहार की तरफ, जहाँ से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी हमारा इंतजार कर रहे हैं।
0: जी, और इसके अलावा ये ताज मोहम्मद जी का भी हमने संदेश पहले लिया
1: हाँ,
0: हुआ है,
1: बसंत कुमार
0: और
1: सिन्हा जो हमारे साथ जुड़े हैं, इनका संदेश लेते हैं दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से। ये लिखते हैं रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिमी तनुश्री गुप्ता, नन्हे मुन्ने अनिरुद्ध, गुड़िया रानी, गुड्डू कुमार गुप्ता के साथ, और कहते हैं नाम शामिल करने के लिए दिल से शुक्रिया। भाई ये कार्यक्रम ही आपका है, नाम तो शामिल होगा ही ना।
0: और बिल्कुल, और आप लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं और इससे भी अच्छी क्या बात हो सकती है। तो और ये

0: अगला जो संदेश है वो है सहारनपुर से, जॉन डिकोस्टा, रोजी पर्ल और विलिस का, और ये लिख रहे हैं हम इतनी गर्मी में घर पर ही रहते हैं और औरों को भी कहते हैं कि वो भी घर पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे
1: देखिए,
0: हैं।
1: जहाँ तक आपने लिखा है कि घर पर रहें, जी हाँ, बहुत सही बात आपने लिखी है, घर पर रहना ज़रूरी है। लेकिन जैसे हम जैसे लोग हो गए जिन्हें काम करने जाना है और कुछ ना
0: जी
1: कुछ तो करने के लिए
0: जी
1: निकलना ही पड़ता है, तो उनके लिए यही कह सकते हैं कि जितना हो सके धूप से बचने की कोशिश करें, पानी अपने साथ रखें और नींबू
0: जी
1: वगैरह भी अपने साथ ज़रूर
0: जी
1: रखें।
0: बिल्कुल, ऑरेंज जितनी भी सिट्रस वाली चीज़ें हैं वो आपको राहत देंगी, तो वो हमेशा रखनी चाहिए। कुछ ना हो तो आप कैंडीज रख सकते हैं ऑरेंज वाली, जिससे कि आपको थोड़ी राहत मिले। तो चलिए आगे, एक और हमारा गीत इंतज़ार कर रहा है, बहुत ही प्यारा गीत है उदित नारायण की आवाज़ में, फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगी।

0: आरती, जो समय है ना, हमें रुकने की बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि समय अब समाप्त होने वाला है कार्यक्रम का।
1: जी हाँ, तो रुक तो हम बिल्कुल नहीं पाएंगे, लेकिन आपको एक बार फिर से याद दिला दीजिए, पानी का ध्यान बहुत रखना है
0: जी
1: हमें।
0: हाँ, और आपको छोड़े जा रहे इस प्यारे से गीत के साथ अल्पना को इजाजत दीजिए,
1: आरती को भी इजाजत दीजिए।
0: फिर मिलेंगे एक और प्यारे से शो के साथ।
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 11 बजने को है। अब समाचार सुनिए, पहले हिंदी फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने

0: चिंता एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में यात्रा करके लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। मंत्रालय ने कहा कि वो सतर्क और पूरी तरह से तैयार है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगे। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे बड़े लक्ष्यों को भी सतत प्रयास, धैर्य और दृढ़ इच्छा शक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए कहा कि देश के लोग इसी भावना से प्रेरित होकर भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। इसराइल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में 31 लोग मारे गए और 40 अन्य घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइल और हिजबुल्ला के बीच बढ़ते तनाव के बीच कल कई कस्बों और गांवों को निशाना बनाकर हमले किए गए। अधिकारियों ने बताया कि सबसे घातक हमला दक्षिणी शहर टायर के पास बुर्ज अल शिमाल इलाके में हुआ, जहां 14 लोगों की जान चली गई और 16 अन्य घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवृद्धि सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज मिला जुला रुख दर्ज किया गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 76,050 पर था, जबकि निफ्टी 20 अंक की वृद्धि के साथ 23,932 पर था। IPL क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by VC Pramod. The center has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society.

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुररंजनी के अंतर्गत आप सुनिए राग शुद्ध सारंग में। गायन कलाकार हैं श्वेत खान।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे राग शुद्ध सारंग में गायन। कलाकार थे स्वेप खान।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है, अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआई प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक

0: गई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज टोरंटो में कनाडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस बातचीत के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में आए आर्थिक बदलावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के माध्यम से व्यापार, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच आपसी सहयोग के क्षेत्रों में उभर रहे अपार अवसरों पर भी जोर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज महाराष्ट्र के अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर, गढ़चिरौली और अकोला जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस वर्ष मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से योग का अभ्यास अनिवार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में आज अपने कैबिनेट की बैठक करेंगे। पूर्व राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित कैबिनेट के सभी सदस्यों के इस बैठक में शामिल होने की संभावना है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के अनुसार इस बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और उनके शीर्ष अधिकारी विदेशी और घरेलू दोनों ही मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब ईरान ने अमेरिका पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक का सेंसेक्स 69 अंक बढ़कर 76,079 पर था। निफ्टी 50 27 अंक की वृद्धि के साथ 1,941 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court said that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nasik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 questions leak case. According to CBI, he played key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in

घर आंगन। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत कुछ दे देती है लेकिन हम उसे महसूस करना भूल जाते हैं, और कभी कभी छोटी सी खुशी ही दिल को पूरा भर देती है। शायद इसीलिए खुश रहने के लिए किसी बड़ी वजह की नहीं, बस थोड़े से एहसास की जरूरत होती है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं घर आंगन, एक ऐसी जगह जहां बात होती है उन

सासु की जो शब्दों में नहीं रिश्तों में बसते हैं, जहां हर कहानी किसी न किसी अपने से जुड़ जाती है। इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ हम आ गए हैं आपके बीच 100.1 मेगाहर्ट्ज एफएम गोल्ड पर। साथ ही आप हमें सुन पा रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। आज इस सफर में आपके साथ मैं हूं, आपकी अपनी रेडियो हम सफर सोनाली। तो आइए कुछ पल अपने लिए चुरा लीजिए और मेरे साथ चलिए अपने ही घर आंगन में।

जी हाँ, आप बेगाने थोड़ी ना हैं, आप तो हमारे अपने हैं। लेकिन फिर भी आपके साथ ये जो अपनापन है, ये हम जोड़ पाते हैं एक ही माध्यम से, जो है हमारा ईमेल आईडी। जी हाँ, वो है fmgoldga@gmail.com। और आपने ये जो गाना सुना, ये था फिल्म आंसू बन गए फूल से, और इसमें स्वर थे किशोर कुमार के साथ आशा भोसले के। जी हाँ श्रोताओं, समस्या का समाधान एक ही है, क्षमा मांग लो या क्षमा कर दो, है ना। देखिए, ये स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं, और आप भी मानेंगे कि जीवन में कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो किसी बड़ी वजह से नहीं, बल्कि छोटे छोटे अहम और अनकही बातों से दूर हो जाते हैं। कई बार हम सही तो होते हैं, मगर संबंध हार जाते हैं। ऐसे समय में स्वामी विवेकानंद का ये विचार हमें बहुत सरल लेकिन गहरी सीख देता है। समस्या का समाधान, जैसे कि हमने आपको बताया, कि या तो आप क्षमा कर लें या फिर क्षमा मांग लें। क्षमा केवल दूसरे व्यक्ति को नहीं, स्वयं को भी शांति देती है, क्योंकि मन में जो जमा नाराजगी है ना, वो धीरे धीरे रिश्तों की मिठास को कम कर देती है। कभी एक कदम झुक जाना और एक शब्द माफ कीजिए कह देना, या किसी को दिल से क्षमा कर देना, कई टूटते रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है। आखिर रिश्ते जीतने से अधिक महत्वपूर्ण होता है उन्हें सहज कर रखना, है ना।

फिल्म गुड्डी में आप सुन रहे थे वाणी जयराम की आवाज में ये गीत, और इनका साथ दिया था उनके कई साथी कलाकारों ने भी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम आकाशवाणी के स्थापना के 90 वर्ष को यहाँ पर मना रहे हैं, तो आइए बात करते हैं आकाशवाणी की ही। एक समय था जब सुबह की शुरुआत मोबाइल की घंटियों से नहीं बल्कि आकाशवाणी के संकेत धुन से हुआ करती थी। भोर की शांति में जैसे ही ये मधुर सुनाई देती थी, घर भी धीरे धीरे जागने लगता। रसोई में चाय चढ़ती रहती, अखबार दरवाजे पर गिरता और इसी बीच आकाशवाणी से प्रसारित वंदन वार का भक्ति संगीत सुबह को एक अलग ही आत्मीयता से भर देता था। इसके बाद समाचार प्रभात सुनना कई परिवारों की दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। देश दुनिया की खबरें सुनाने वाली गंभीर और संतुलित आवाजें लोगों के मन में बस जाती थी। उस दौर में ना बहुत से ऐसे समाचार वाचक हुए जैसे मेलविन डी मेलो, देवकी नंदन पांडे, सुरजीत सेन, लतिका रत्नम और विनोद कश्यप। ये समाचार वाचकों की आवाज़ ही ना घर घर में पहचानी जाती थी और ना लोग उन्हें देखे बिना भी जैसे इनकी आवाज़ के जरिए ही उन्हें पहचान लेते थे। सुबह 7:45 बजे प्रसारित होने वाला शास्त्रीय संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम संगीत सरिता भी श्रोताओं की सुबह का अहम हिस्सा था और है, जो आज भी अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत को सहज ढंग से समझने वाला यह कार्यक्रम पीढ़ियों से संगीत प्रेमियों के बीच लोकप्रिय रहा है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात है, उस दौर में ही नहीं आज भी कई लोग अपनी घड़ियों का जो समय है ना, वह आकाशवाणी के समय संकेत और समाचारों के प्रसारण से मिलाते हैं। आकाशवाणी की समयबद्धता पर लोगों का भरोसा आज भी वैसा ही बना हुआ है। कई घरों में बच्चे स्कूल की तैयारी करते हुए रेडियो सुनते थे तो बुजुर्ग विविध भारती, छाया गीत और हवा महल जैसे कार्यक्रमों की चर्चा किया करते थे। रेडियो केवल सूचना या मनोरंजन का माध्यम नहीं था, यह घर के वातावरण का हिस्सा था। उसकी आवाज में एक अपनापन, एक ठहराव है। आकाशवाणी आज भी नए कलेवर में बहुत से FM चैनल्स और मीडियम वेव चैनल्स के जरिए और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी नित नए कार्यक्रमों के जरिए श्रोताओं के दिलों में राज कर रही है। आज समय बदल गया है, सुबह हमारी तेज हो गई है, लेकिन आकाशवाणी की भी आत्मीय सुबह आज भी स्मृतियों में उसी गर्माहट के साथ बसी हैं जब घर सचमुच इनकी आवाज से धीरे धीरे जागता था। तो आइए रेडियो की इस सुबह को फिर याद करें और सुने येसुदास की आवाज में ये एक बहुत प्यारा सा गीत।

0: फिल्म हैसियत में आप सुन रहे थे यशुदास की आवाज में ये गीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर कार्यक्रम घर आंगन में, जो आप सुन रहे हैं FM गोल्ड 100.1 MHz पर। आपके साथ मैं हूं आपके रेडियो हम सफर सोनाली। आज के डिजिटल दौर में ना बच्चों के हाथ में किताबों की जगह धीरे धीरे स्क्रीन ने ले ली है, मानेंगे ना। और जानकारी तो अभी क्लिक पर मिल जाती है, लेकिन किताबें केवल जानकारी नहीं देती थी, वे बच्चों की सोच, कल्पना और संवेदनशीलता को भी आकार देती थी और हैं। देखिए, बचपन में पढ़ी गई कहानियाँ, कविताएं और चित्र, और उनमें जो ये जो पुस्तकें होती थी ना जिनमें चित्र होते थे, उनका असर केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता था। वे बच्चों को धैर्य सिखाती हैं, नए सपने देखने की प्रेरणा देती हैं और सही गलत को समझने की समझ भी विकसित करती हैं। एक बच्चा जब कहानी पढ़ता है ना, तो वो केवल शब्द नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि वो पात्रों के साथ हंसता है, उनके दुख महसूस करता है और धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बनना सीखता है। आज जरूरत इस बात की है कि घरों में किताबों के लिए एक छोटा सा कोना फिर से बनाया जाए, मानेंगे ना। और माता पिता यदि बच्चों के साथ बैठकर पढ़ें, उन्हें कहानियां सुनाएं और किताबों को उपहार देने की आदत उन्हें विकसित करें, तो पढ़ने का जो संस्कार है ना, वो सहज रूप से बच्चों के जीवन का हिस्सा बन सकता है। क्योंकि बचपन में जो हाथ किताबों तक पहुँचते हैं, वे अक्सर सपनों तक पहुँचने का रास्ता पा लेते हैं। देखिए, इसी पर एक छोटी सी कविता आपके सामने रख रही हूँ। किताबें सिर्फ कागज़ नहीं, ये बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। किताबें सिर्फ कागज़ नहीं, ये बच्चों की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। धीरे धीरे उनकी छोटी दुनिया में नए सपनों के रंग भरती हैं। कभी कहानी बनकर हंसाती हैं, कभी चुपके से सीख दे जाती हैं। जब बच्चे किताबों से दोस्ती करते हैं, उनकी सोच हमेशा बड़ी हो जाती है। और जब आपकी सोच बड़ी होती है, आपके जीवन में खुशियाँ होती हैं, तो आपको सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं, आपको कायनात की हर चीज़ बहुत सुंदर लगने लग जाती है ना।

बालिका वधू, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी अमित कुमार की। दोस्तों, आपके साथ जो प्यार है, जो एक रिश्ता है, उसकी जो एक हमें झलक है, वो आपकी ईमेल के माध्यम से हमें मिलती है। तो देखिए हमारे साथ जुड़े कौन हैं। जी हाँ, ये हैं नवीन भाटिया जी, मोतीनगर नई दिल्ली से। लिखते हैं, सोनाली जी नमस्कार। दूसरों को उतनी जल्दी माफ़ कर देना चाहिए जितनी जल्दी हम ईश्वर से खुद के लिए माफ़ी की उम्मीद रखते हैं। बहुत सही बात आपने कही है, और ये बात आपने हमारी उस विचार के लिए के साथ जोड़कर कही है जिससे हमने प्रोग्राम की शुरुआत की थी। धन्यवाद आपका। फिर इसके बाद हमारे साथ कौन जुड़े हैं। जी हाँ, ये हैं गौरी शंकर जी, और ये नांगलोई से हमारे साथ जुड़े हैं। लिख रहे हैं, सोनाली बेटा राम राम। मुझे याद है रेडियो सुनते हुए करीब 60 साल से ज़्यादा हो गए हैं। एक दिन भी ना सुनी तो अजीब सा लगता है। उस समय विविध भारती और रेडियो सिलोन सुनते थे, आज भी यही आदत है रेडियो सुनने की। आगे आप लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम जानदार पेश होता है और गानों में भी तबीयत खुश हो जाती है। शुक्रिया। तो आपका भी शुक्रिया गौरी शंकर जी, हमारे साथ बने रहने के लिए। फिर एक और हमारे पास चिट्ठी आई है, ये आई है सुदर्शन मुखी जी की, इनके साथ अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। लिख रहे हैं, आदरणीय सोनाली जी, सादर प्रणाम। आपको भी मेरा प्रणाम। और आप लिख रहे हैं कि आपको प्रस्तुति बहुत अच्छी लग रही है, अनमोल बातें हैं, रोचक जानकारियां हैं। फिर आप लिखते हैं, दो बहुत अच्छी बातें लिखते हैं कि सबसे बड़ी सीख है अपनों से हार जाना, और यही हम तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है।

एक और चीज़ लिखते हैं कि रिश्ते और विश्वास खराब एक पल में किए जा सकते हैं, जबकि उनको बनाने में जिंदगी गुजर जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और देखिए, ऐसे ही रिश्ते हमने भी आपके साथ बनाए हैं, तो इस रिश्ते को बनाए रखिएगा और हमारे साथ हर दिन जुड़िएगा, कहाँ, घर आंगन में। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए, गर्मी का मौसम आते ही बिजली की बढ़ती खपत और ऊर्जा संरक्षण जैसे विषय फिर से चर्चा में आ जाते हैं, है ना। अब देखिए क्या होता है कि ऐसे समय में सौर ऊर्जा न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी मानी जा रही है, बल्कि आम लोगों के लिए बचत का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनती जा रही है। इसी दिशा में ना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है एक योजना, जिसकी बात आज हम आपके साथ कर रहे हैं। वो कौन सी है? वो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आइए इसके बारे में आपको और भी बातें बताती हूँ। जैसे देश में ना सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। ये योजना जो है ना, ये भारत सरकार की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत संचालित की जा रही है। अब दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत ना घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि लोग स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर सकें और बिजली खर्च में राहत पा सकें। योजना का लाभ लेने के लिए जो आवेदक है ना, उसका वो भारतीय नागरिक होना जरूरी है, उसके पास खुद का घर होना और एक वैध बिजली कनेक्शन होना बहुत जरूरी चीज है। साथ ही घर की छत सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। और जिन उपभोक्ताओं ने पहले किसी अन्य सरकारी रूफटॉप सोलर सब्सिडी योजना का लाभ लिया है ना, वे इसके लिए पात्र नहीं माने जाते हैं। मतलब आपको जो भी आपको यहाँ पर अगर आवेदन करना है, तो आप पहली बार ही आवेदन करने वाले होने चाहिए। सरकार के अनुसार इस योजना का उद्देश्य देश के अधिक से अधिक घरों और को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। योजना के लिए आवेदन और विस्तृत जानकारी आप इसकी आधिकारिक पोर्टल पर प्राप्त कर सकते हैं, जो है solarrooftop.pmsuryaghar.gov.in। ये है सोलर रूफटॉप, यानी solarrooftop.pmsuryaghar.gov.in। आज जब बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है ना, ऐसे समय में सौर ऊर्जा जो है भविष्य की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता और एक बहुत अच्छा स्रोत बनती जा रही है। तो क्या है ना कि अब घरों की छतें सिर्फ छांव ही नहीं देंगी, बल्कि ऊर्जा और बचत का नया रास्ता भी बनेंगी।

शैलेंद्र सिंह को आप सुन रही थी फिल्म तराना में। दोस्तों, आज ना डिजिटल तकनीक केवल सुविधा का माध्यम नहीं रही, बल्कि ये शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और संवाद का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुकी है। ऐसे में ना महिलाओं की डिजिटल दुनिया में बढ़ती भागीदारी समाज में एक बहुत सकारात्मक बदलाव का संकेत मानी जा रही है। आज महिलाएं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, घर से छोटे व्यवसाय चला रही हैं, डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रही हैं और डिजिटल माध्यमों के जरिए अपनी प्रतिभा और विचारों को नई पहचान दे रही हैं। कई महिलाएं घर के बने उत्पाद, हस्तशिल्प, कपड़े और खाने की सामग्री का व्यवसाय भी ऑनलाइन माध्यमों से बहुत सफलतापूर्वक कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल साक्षरता के प्रयासों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी कई महिलाएं अब ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान का उपयोग कर रही हैं। दोस्तों, सरकार की जो डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी जो पहलें हैं और कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC, इनके माध्यम से महिलाओं को डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। आज महिलाएं केवल उपभोक्ता नहीं रही, बल्कि डिजिटल माध्यमों पर कंटेंट निर्माता, उद्यमी और बहुत अच्छी प्रोफेशनल्स के रूप में भी अपनी पहचान बना रही हैं। कई महिलाएं हैं जो ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, तो बहुत सी महिलाएं हैं वो घर से ही काम कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। हालांकि इसके साथ साइबर सुरक्षा और डिजिटल जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग, व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक होना आज समय की एक बहुत बड़ी जरूरत है। जब महिलाएं डिजिटल रूप से सशक्त होंगी ना, तब परिवार और समाज दोनों उनसे ज्यादा सशक्त होंगे। तो तकनीक केवल मशीनों की दुनिया नहीं है दोस्तों, यह अवसरों की भी दुनिया है और आज महिलाएं इस दुनिया में आत्मविश्वास के साथ अपनी जगह बना रही हैं। उन्हें सपनों में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के जो सपने उन्होंने देखे हैं, वो सपने उनकी जिंदगी में खुली आंखों से भी देखे जा रहे हैं और अब वो बहुत आगे बढ़ रही हैं।

फिल्म गोलमाल में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। अब देखिए, सपने तो तब आएंगे जब नींद आएगी, और नींद तब आएगी जब हमको जो हमारा माहौल है वो ठंडा मिलेगा। और इस भीषण गर्मी में हम सभी इतने परेशान हैं कि हम लोग बस इस गर्मी से खुद को बचाने के उपाय सोचते रहते हैं। देखिए, अब लू का ऑरेंज अलर्ट कई जगहों पर जारी हो चुका है, और ऐसे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम सभी से इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी और लू से बचने की हम सभी से अपील की है, और बहुत से उपाय भी उन्होंने बताए हैं। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि गर्मी में लू यानी हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। हमें शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। प्यास न लगने पर भी रुक रुक कर दिन भर में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीजिए। घर से बाहर निकलने से पहले 1-2 गिलास पानी या छाछ पीकर जरूर निकलें। और ना शरीर को ठंडा रखने के लिए आप ना नारियल पानी, नींबू पानी, लस्सी और मौसमी फलों जैसे तरबूज, खीरा, खरबूजा इनका सेवन बढ़ाएं। जितना हो सके कॉफ़ी और चाय और दूसरी तरह के किसी भी नशे की चीज़ से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन बढ़ता है। फिर आप सही पहनावा ज़रूर रखें। देखिए, गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं वो गर्मी सोखते हैं, इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि आप सूती के ढीले ढीले कपड़े पहनें। बाहर जाते समय हमेशा गमछा या दुपट्टे से सिर और कान को अच्छे से ढकें। हाँ, और आंखों को धूप से बचाने के लिए सनग्लासेस और सिर के लिए टोपी का इस्तेमाल ज़रूर करें। धूप में बाहर निकलते समय सनस्क्रीन का प्रयोग करने से आपके स्किन को बहुत लाभ होगा, और हमेशा एक छाता ज़रूर साथ रखें। तो बस ये कुछ उपायों का आप अपने जीवन में पूरा पूरा उपयोग कीजिए, और इस गर्मी से अपने आप को और अपने परिवार को बचा के रखिए।

दोस्तों, इस गीत के साथ जो है फिल्म सितमगर का और आवाज है किशोर कुमार के साथ आशा भोसले की, इस गीत के साथ अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है आपसे और बात हम और नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो हम सफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

हर आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागजी की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा

0: दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such a manner as the Election Commission may deem fit, the impugned exercise cannot be invalidated merely because it does not conform in every respect to the ordinary modalities contemplated for routine revision. Therefore, it cannot be said that the Commission has acted in excess of its statutory powers. The Central Bureau of Investigation, CBI, has arrested two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. The agency has arrested 13 accused so far in this case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilyanagar. An accused, namely Dr. Manoj Shirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the NEET UG 2026 questions leak case. According to CBI, he played a key role in facilitating three students, including the son of an accused coaching center owner, in getting the chemistry questions from the accused P.V. Kulkarni. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. He got the leaked physics questions of NEET UG 2026 exam from the arrested accused Manisha Havaldar. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of homes,

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। 1:10 हुए और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे वक्त के सफ़र पे और साल होगा सन 1965। जी हाँ, आप जानते ही हैं कि हम हर रोज़ एक फिल्म चुनकर लाते हैं आप सभी के लिए, और आज जो फिल्म हम चुनकर लाए हैं वो सन 1965 की है। एक ऐसा दौर जब पर्दे पर रोमांस की परिभाषा लिखी जा रही थी, जब कश्मीर की वादियों में मोहब्बत मुस्कुरा रही थी, और जब ओपी नैयर साहब की धुनों पर पूरा हिंदुस्तान झूम रहा था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आज सिप्पी फिल्म्स की उस शानदार जानदार सदाबहार म्यूजिकल हिट फिल्म जिसका नाम सुनते ही आपका जो दिल है वो बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से झूमने लगेगा, ज़ोर ज़ोर से गाने लगेगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल पहचान जाएंगे कि वो कौन सी फिल्म है। तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से। वो फिल्म कौन सी है ये आप हमें ज़रूर बताइएगा।

क्या बात है दोस्तों, गाने को सुनते सुनते हमें आंखों के सामने आ गए विश्वजीत और कातिलाना आंखों से बिजली गिराती हुस्न की मलिका आयशा पारेख। निर्देशक अमर कुमार के निर्देशन में बनी फिल्म मेरे सनम। जी दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं सिर्फ यही फिल्म मेरे सनम। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि हम कहेंगे कि खूबसूरत नज़ारों, बेहतरीन अदाकारी और लाजवाब संगीत का एक ऐसा गुलदस्ता है जिसकी खुशबू आज भी इतने बरसों के बाद भी उतनी ही ताज़ा है जितनी उस वक्त में थी। और वाकई में गीतों को सुनकर आपको भी यही महसूस होगा।

जी दोस्तों, इस फिल्म जो फिल्म हम आज लेकर आए हैं मेरे सनम, अगर हम बात करें इस फिल्म के संगीत की तो लाजवाब संगीत, और कहेंगे कि इस फिल्म का जो एक प्लस पॉइंट था वो इस फिल्म का संगीत था। जी हाँ, कहानी और अदाकारी वो सब प्लस पॉइंट था, लेकिन उसमें संगीत का भी एक बहुत बड़ा रोल था। और ये फिल्म के संगीतकार ओपी नैयर साहब और साथ में गायक मोहम्मद रफ़ी साहब के सुनहरे जुड़ाव की सबसे बड़ी और कहें कि सबसे आखिरी फिल्म भी रही, क्योंकि इसके कुछ वक्त के बाद दोनों के बीच एक छोटी सी बात पर अनबन हो गई थी। और हुआ ये था कि रफ़ी साहब एक रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा लेट से पहुंचे और उसके बाद नैयर साहब नाराज़ हो गए। बहुत सालों तक उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ काम ही नहीं किया, और उसके बाद ओपी नैयर साहब ने अपनी आवाज़ को चुना महेंद्र कपूर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, रफ़ी साहब जो कि ओपी नैयर साहब की आवाज़ थे, हर फिल्म में वो हट गए और उनकी जगह पर महेंद्र कपूर साहब को लिया गया। लेकिन अभी इस फिल्म की हम बात करते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। फिल्म जो है ये हमारी, इस फिल्म का सबसे जो ब्लॉकबस्टर गाना जो हम अभी आपको सुनवाने वाले हैं, जिसमें विश्वजीत एक खुली जीप में नजर आते हैं चलाते हुए। उसकी शूटिंग के दौरान विश्वजीत को गाड़ी चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन ये सीन शूट होना था गाड़ी चलाते वक्त, तो इसका जो एक उपाय निकाला गया कि गाड़ी को एक टो ट्रक से खींचकर आगे आगे चलाया जा रहा था, और विश्वजीत सिर्फ स्टेयरिंग घुमा रहे थे, दिखा रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे कि वो व्हील को संभाले हुए और गाड़ी वही चला रहे हैं। और वाकई में वो इतने परफेक्शन के साथ में किया कि कोई भी इस चीज़ को पहचान ही नहीं पाया कि विश्वजीत सचमुच में गाड़ी चला रहे हैं या फिर ये एक्टिंग कर रहे हैं। ये था उनके एक्टिंग का जादू। तो लीजिए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा ब्लॉकबस्टर गीत।

0: जी दोस्तों, फिल्म मेरे सनम और विश्वजीत साहब ने जो स्टाइलिश सफारी सूट पहना है, गले में मफलर और हाथ में सिगार वाला लुक,
1: भाई वाह।
0: जो लुक था वो उस वक्त में लोगों ने एक फैशन ट्रेंड सेट कर दिया था। और स्पेशली दिल्ली और मुंबई के जो कॉलेजेस थे उसमें लड़कों ने उनके इस लुक को इतना कॉपी किया कि हर कोई इसी अंदाज में नज़र आता था। लेकिन आपको मालूम है, विश्वजीत इस किरदार के लिए पहली पसंद नहीं थे। जी हाँ, क्योंकि इस फिल्म के जो मेकर्स थे उनकी पहली पसंद थे सदाबहार अभिनेता देवानंद साहब। भाई हूँ भी क्यों ना, उनका मिजाज जो था वो बिल्कुल इस फिल्म के मिजाज जैसा था। गाने उनके रोमांटिक अंदाज पर बिल्कुल फिट बैठते थे, लेकिन कोई वजह ऐसी रही कि जिस वजह से बात नहीं बन पाई और ये फिल्म आकर गिरी विश्वजीत की झोली में, जिन्होंने इसे अपने करियर की सबसे यादगार फिल्म बना दिया। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए सुनते हैं एक और खूबसूरत संगीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म मेरे सनम से।

करियर को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। और यही फिल्म थी जिसके बाद मुमताज़ लीड एक्ट्रेस के रूप में आने लगी। जी हाँ दोस्तों, फिल्म की कहानी और भी किरदार हम आपको बताएंगे। और अगर हम बात करें फिल्म की कहानी के लिए, तो जो फिल्म की कहानी है वो भी बहुत ही प्यारी सी है, खूबसूरत सी है, और इसकी शुरुआत होती है थोड़ी सी गलतफहमी के साथ। साधना यानी कि आशा पारेख अपनी माँ और अपनी सहेलियों के साथ जाती है कश्मीर घूमने के लिए, जहाँ पर भारी बारिश होती है और उनको रुकना पड़ता है एक लॉज में, जिसका मालिक होता है कुमार, कुमार यानी कि विश्वजीत। यहाँ पर गलतफहमी की वजह से साधना और उसकी माँ कुमार को एक चोर समझ लेती है और दोनों के बीच में झगड़ा शुरू होता है। और यही झगड़ा जो होता है धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। धीरे धीरे साधना को कुमार की अच्छाइयों का एहसास होता है, दोनों प्यार करने लगते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है तब जब इस फिल्म के विलन श्याम यानी कि प्राण और उसकी साथी कमली यानी कि मुमताज़ मिलकर कुमार को फंसाते हैं और उसकी जो जायदाद है उसको हड़पने की साजिश करते हैं। कुमार की छवि को ख़राब करने की कोशिश करते हैं साधना के सामने, ताकि वो दोनों अलग हो जाएं। लेकिन कुमार सभी साजिशों को हटाता है, सबका पर्दाफाश करता है, अपने आप को बेगुनाह साबित करता है और हमेशा की तरह से हैप्पी एंडिंग होती है। दोनों प्रेमी एक साथ मिल जाते हैं। ये थी इस फिल्म की खूबसूरत सी छोटी सी कहानी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं हम आपको बताएंगे। हमारे बहुत से श्रोताओं के संदेश भी हम तक आए हैं, जिनके संदेश भी हम शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ, और हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं। पिपरिया से जुड़े हमारे साथ कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पुना राम देवांगन, कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बब्रिश पवार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि मेरे सनम के कई खूबसूरत दृश्यों और गानों को कश्मीर की हसीन वादियों में फिल्माया गया था, और इस फिल्म की शूटिंग सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत होने से ठीक पहले पूरी गई थी। शूटिंग के दौरान वहां का माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो रहा था, लेकिन पूरी टीम ने मुश्तैदी से काम किया, और इस दौरान अभिनेता शशि कपूर भी अपनी फिल्म जब जब फूल खिलेगी वहाँ पर शूटिंग कर रहे थे। बहुत खूब बबलेश जी, खूबसूरत जानकारी के लिए। अगला संदेश हम तक पहुँचाया है गांव लोहागढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलान, अविराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये अगला जो संदेश है वो हमारे पास बबलेश जी का। उन्होंने एक बार फिर से बहुत अच्छी जानकारी दी है कि मुमताज़ जी उस वक्त साइड रोल और स्टंट फिल्मों की हीरोइन मानी जाती थी, लेकिन इस फिल्म से उनकी तरक्की हुई और वो काफ़ी आगे पहुंची। मुकेश भट्टा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कनेरा मोहल्ला पटियाला से। अगला जो संदेश है इसको हम तक पहुँचाए गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार ढूडी, प्रमोद कुमार ढूडी जी ने। हीरामणि वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं दतरेंगी भट्टापारा से।

सुनील पाठक, अमल पाठक, गाव्या मल्होत्रा, अनारकली बाजार, जगराव पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राम नागरकोरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखिया, अनिता सिमरन मुखिया जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता हमारे साथ जुड़े हैं। पारगंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक के साथ। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा जुड़े हुए हैं। ग्राम शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता हमारे साथ जुड़े हैं। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुश्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायल, प्रथमेश प्रणाली, सर्वत सानवी, कल्पना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहरू चौक पैटर्न से जुड़े हैं सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव के साथ। छत्तीसगढ़ चुनी लाइन मुंगेली से जुड़े हैं मोहम्मद शाह, खतीजा बेगम, अशफाक, आफरीन कौशल, अल्ताफ, नीलोफर, फातिमा के साथ। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिव्यम जैन हमारे साथ जुड़े हैं। मालियान सरदनाज मेरठ से। जिला बालोद छत्तीसगढ़ ग्राम भाई भोईनापार लाटा बोर्ड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं देव नारायण साहू, योगिता, गीतिका, चंचल रानी, उमाबाई, गंगाराम साहू के साथ। देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर हमारे साथ जुड़े हैं। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्वला नवानकर, विशाल नवानकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद फूल वाले, जूही इकबाल, इमरान, कापासेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया, मंतशा, अंशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भागवत वर्मा दत्रेंगी से जुड़े हुए हैं, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा के साथ। समडल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन जी एक बार फिर से जुड़े हुए हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर और रिजवान परवीन हमारे साथ जुड़े हैं। गांव फरियासी, जिला हसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, और ये अगला संदेश हम तक आया है और उसको पहुंचाने वाले हैं। बीरगांव गुजरात से अजित भावसार, प्रमीला बेन भावसार, भावेश कुमार सनी, जमीन कुमार भावसार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मकर, ज्योति मन्नत, भारत मक्कर हमारे साथ जुड़े हैं। कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गुरैया, जालंधर पंजाब से। और मोहम्मद सईद अब्बासी जी जुड़े हमारे साथ। निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजाना, बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों के साथ अगला संदेश हम तक पहुंचाया है। ये है भारत मक्कर, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गुरैया से। अगला संदेश आया है डी बी राणा, नेहरू विहार, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश फजल का पंजाब से, भूषण खेरा, विशाल, विशु, गीत इनको अच्छे लग रहे हैं। और ये अगला जो संदेश है इसको भेजने वाले हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू जी। तो संजय डिंगिया, निमन डिंगिया, अपार डिंगिया, मर बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए सभी हम तक जुड़े।

जी दोस्तों, हम सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से और ओपी नैयर साहब की रूहानी धुनें मसरूर सुल्तानपुरी साहब के अल्फाज और मोहम्मद रफ़ी जी और आशा जी की आवाज़ में इस फिल्म को चार चांद लगा दिया और उस दौर को सुनहरे दौर में बदल दिया। लेकिन वक्त अब तेज़ी से बदल रहा है और हमें यानी कि मुझे यानी कि स्प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की, क्योंकि जो घड़ी की सुइयां हैं वो किसी के लिए भी नहीं रुकती हैं और अब मुझे इस सफ़र को यहीं पर रोकना होगा। लेकिन यादों का जो ये सफ़र है उसको लेकर वापस से आऊँगी, जाइएगा कहीं नहीं। कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ फिर से एक बार हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

सीबीआई मुताबिक उसने मुलजम पीवी कुलकर्णी तों एक कोचिंग सेंटर दे मालक दे पुत्र समेत तीन विद्यार्थियों नूं रसायनिक विज्ञान दे प्रश्न प्रदान करन विच मुख भूमिका निभाई। दूजा गिरफ्तार मुलजम तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे दे कोचिंग सेंटर डॉक्टर भंग प्रभु मेडिकल अकैडमी च भौतिक विज्ञान फैकल्टी मैंबर है। उसनों लीक हुए भौतिक विज्ञान दे प्रश्न गिरफ्तार मुलजम मनीषा हवलदार तो मिले सन। सीबीआई ने हुण तक 49 थावां ते तलाशी लई है ते कई अपराधिक दस्तावेज लैपटॉप ते मोबाइल फोन जब्त कीते ने। इस महीने की 3 तरीक नूं मैडिकल कॉलेजां विच अंडर ग्रैजुएट कोर्सां च दाखले लई निर्धारित नीट प्रीख्या पेपर लीक के इल्जामां विचकार रद्द कर दित्ती गई सी। केंद्र ने कहा है कि देश विच हुण तक इबोला वायरस बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया। सेहत मंत्रालय ने कहा है कि अफरीका के कुछ हिस्सों विच इबोला वायरस मामलों के मद्देनजर स्थिति ते नेड़ो नजर रखी जा रही है। सूत्रा मुताबिक हाल ही विच उगांडा तो वापस आए एक व्यक्ति नूं बंगलुरू के सरकारी महामारी रोग हस्पताल च जांच ते इलाज लई अलग रखा गया। उसकी टैसट रिपोर्ट नैगेटिव आई है। सेहत मंत्रालय संबंधित राज अधिकारियों नाल तालमेल करके इस वायरस की नेड़ो निगरानी कर रहा है ते विश्व सेहत संगठन के दिशा निर्देशों मुताबिक सारियां जरूरी कार्रवाई कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चौकस ते पूरी तरह तैयार है। सारे निर्धारित एंट्री प्वाइंटा ते जनतक सेहत प्रणाली च स्क्रीनिंग ते जांच दे उपा जारी ने। नागरिकां नूं घबराउण, गलत जानकारी ना फैलाउण अते जानकारी लई सिर्फ अधिकारित स्रोतां ते भरोसा करन दी सलाह दित्ती गई है। वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कैनेडा के अपने दौरे के दूजे दिन टोरांटो च कैनेडा के सीनियर नेतावां अते संस्थागत निवेशकां नाल कई उच्च पदरी मीटिंगां कीतियां। उद्योग मंत्री ने कहा कि मीटिंगां दा उद्देश दुवल्ले सहयोग नूं डूंघा करना ते रणनीतिक खेतरां च निवेश ते तकनालोजी भाईवाले नूं उत्साहित करना है। इस मौके श्री गोयल ने कैनेडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू नाल मजबूत सरकार उद्योग सहयोग वलों संचालित एक मजबूत ते व्यापारक वातावरण प्रणाली की जरूरत ते जोर दिता। मंत्रालय ने कहा कि दोवां धिरां ने 2030 तक व्यापार नूं 50 अरब डॉलर तक वधाउण दे अपने सांझे टीचे की पुष्टि की है। दोवें देश इस साल के अखीर तक व्यापक आर्थिक भाईवाली समझौते सीईपीए नूं पूरा करन लई भी सहमत हुए ने। इस तों बाद दोवां देशां दे मंत्रियां दी सह प्रधानगी हेठ कैनेडा भारत निवेश गोलमेज मीटिंग हुई। इस विच पेंशन फंड ते बैंकां समेत प्रमुख कनेडियन वित्तीय निवेशकां दे नाल नाल दोवां देशां दे सीनियर सरकारी नुमाइंदे भी शामिल रहे। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @TIRRNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-EIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @TIRR ਜਲੰਧਰ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज शाम गंगटोक च सिक्किम यूनिवर्सिटी के 7वें कन्वोकेशन च मुख मेहमान वजों शिरकत करेंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ते मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह च शामिल होंगे। साडे पत्रकार मुताबिक 33 विभागों में लगभग 14,000 डिग्रियां प्रदान कीतियां जाणगियां। 285 होनहार विद्यार्थियों नूं सोने ते चांदी के तमगे भी दिते जाणगे, जिन्हां विच 199 औरतां शामिल ने। इस तों पहलां राष्ट्रपति दा नाथूला दा निर्धारित दौरा खराब मौसम कारण रद्द कर दिता गया सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वड्डे तो वड्डे टीचे भी निरंतर कोशिश, धीरज ते मजबूत इच्छा शक्ति नाल प्राप्त किए जा सकते ने। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से एक संस्कृत शुभाष्टम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोग इस भावना तो प्रेरित ने ते भारत नूं नवीं उचाइयां ते लैके जा रहे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वख-वख हिस्सों में वध रहे तापमान के दरमियान लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि लोग खुद को हाइड्रेटेड रखन और बाहर जाने वेले अपने नाल पानी जरूर लेके जान। गर्मी कारण होने वाली वादियां मुश्किलों बारे श्री मोदी ने कहा कि अजिहे मौसम च संवेदनशीलता एक वड्डा सहारा बनती है। उन्होंने कहा कि कोई भी प्यासा होवे तां उसनूं एक गिलास पानी जरूर पिलाओ। उन्होंने सारयां नूं अपने परिवार ते करीबियां दे संपर्क विच रहण ते उन्हां दी तंदरुस्ती दी जांच करदे रहण दी अपील की। प्रधानमंत्री ने तेज दुपहर दी धुप विच बाहर जाण तों बचण ते जिन्ना हो सके आराम करन दी सलाह दित्ती है। श्री मोदी ने लोकां नूं जानवरां ते पंछियां नूं ध्यान विच रखदे होए अपने घरां, छतां, दुकानां ते दफ्तरां दे बाहर पानी नाल भरे होए बर्तन रखण दी सलाह दित्ती। श्री मोदी ने उन्हां लोकां दे उपरालयां दी शलाघा कीती जो अपने घरां ते दुकानां दे बाहर घड़ियां च पानी रखदे ने तां जो कोई भी उन्हां नूं पी सके। श्री मोदी ने सारयां नूं इन्हां मुश्किल समयां दौरान पूर्ण संवेदनशीलता ते हमदर्दी नाल इक दूजे दा ध्यान रखण दी अपील भी कीती है। पिछले कई दिनों तो अत्यधिक गर्मी का सामना कर रहे पंजाब, हरियाणा ते चंडीगढ़ में आने वाले दिनों च मौसम दी बदलाव बारे एक खुशखबरी है। चंडीगढ़ स्थित भारतीय मौसम विभाग ने मौसम च महत्वपूर्ण राहत दी भविखबाणी करदिया कल तो मई के अखीर तक तेज बारिश, गरज चमक नाल कुछ थावां ते गड़ेमारी अते 60 तों 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल तेज हवावां बारे येलो अते ऑरेंज अलर्ट जारी कीते ने। इस दौरान अज दोवां सूबयां दे अते केंद्री शासित प्रदेश चंडीगढ़ च मौसम गर्म ही रहेगा। पिछले 24 घंटे च पंजाब दे बठिंडा 45.8 डिग्री सैलसीयस नाल सब तों गर्म रहा।

0: हरियाणा के सिरसा च वध तो वध तापमान 40 डिग्री सैलसियस दर्ज किया गया। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਢਲਾਣਾਂ ਤੇ ਗਿਲਬਰਟ ਟ੍ਰੇਲ ਤੇ ਅਪਰ ਮਾਲ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਲੱਗੇ ਇਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਸੌਲੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਸੰਘਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਅੱਗ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਸ਼ਤਰੰਜ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਇਨਿਆਨ ਪੰਨੀ ਰਸੇਲਵਮ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਰੈਪਿਡ ਤੇ ਬੈਲਟਿਸ ਦੋਵੇਂ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ 2 ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਮਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ 6.5 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤੈ। IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਨੀਟ UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ IPL ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿਚ ਸਨਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਵਜੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰ ਮੈਚ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं माजिद अली। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खुसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के इख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि यह लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबकत रखता है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तिजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरका अहद का एदा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जा हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। IMD ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में गर्मी में और तेजी आने की पेशगोई की है। CBI ने नीट UG 2026 इम्तहान के पेपर लीक मामले में 2 और मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इम्कानी साजिश की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से इसराइल की मुखालफत किए जाने का हवाला दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और यह भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी की गुंजाइश रखी गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अदालत आलिया ने कहा है कि चुनाव कमीशन को अवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों में खसूसी नजरसानी करने का अख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरख्वास्तों पर फैसला सुनाते हुए यह बात कही। इन दरख्वास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में यह भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूदा तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी अख्तियारात से तजावुज किया है। उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
1: दिल्ली में चुनाव फहरिस्तों पर खसूसी नजरसानी का काम अगले महीने की 20 तारीख से शुरू होगा। दिल्ली के आला चुनाव अफसर अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव फहरिस्तों का मुसविदा 5 अगस्त को शाये किया जाएगा और हतमी चुनाव फहरिस्त इस साल 7 अक्टूबर को शाये की जाएगी। दिल्ली के आला चुनाव अफसर ने कहा कि खसूसी नजरसानी का असल मकसद यह है कि कोई भी अहल शहरी चुनाव फहरिस्त से बाहर न रह जाए और गैर अहल वोटर फहरिस्त में शामिल न होने पाए। جناب اشرف

0: कुमार ने कहा कि बूथ सतह के अफसर अगले महीने की 30 तारीख से घर घर जाकर दिल्ली चुनाव फहरिस्तों की तस्दीक करेंगे।
1: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है, जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की, वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे, जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है, और 2 फॉर्म लेके जाएंगे, इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है, और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज साबिक वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कनाडा के अपने दौरे के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के सनतकारों और इदारा जाती सरमायाकारों के साथ कई आला सतही मीटिंगें की। कॉमर्स और सनत की वजारत ने कहा है कि इनका मकसद कलीदी शोबों में सरमायाकारी और तकनीकी इश्तराक को फरोग देना और बाहमी तआवुन को मुस्तहकम करना है। जनाब गोयल ने कनाडा की आलमी तजारत के वजीर मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की और हुकूमत सनत मजबूत इश्तराक पर मबनी ज्यादा मुतहरक कारोबारी को निजाम की जरूरत को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि तरफेन ने 2030 तक बाहमी तजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसत देने के अपने मुश्तरक अहद का इरादा भी किया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत में इजाफे के दरमियान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वह जहां तक मुमकिन हो एहतियाती इकदाम करें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने सभी को मशवरा दिया है कि वह जिसमें पानी की कमी न होने दें और घरों से बाहर जाते वक्त साथ में पानी की बोतल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: रोजमर्रा की जिंदगी में शदीद गर्मी के सबब परेशानियों में इजाफे के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा वसीला होती है। उन्होंने जो कोई प्यासा हो उसे पानी का एक गिलास देने का मशवरा दिया। उन्होंने सभी से कहा कि वह अपने कुनबे के अफराद और अपने अजीजों की खैर आफियत के बारे में मालूम करते रहें, उनसे राबते में रहें, उन्हें खूब पानी पीने की याद दहानी कराते रहें, दोपहर में तेज धूप में जाने से गुरेज करें और जितना मुमकिन हो आराम भी करें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए अपने घरों की बालकोनी, छतों, दुकानों या दफातर के बाहर पानी के लिए एक छोटा बर्तन रखें। जनाब मोदी ने उन सभी की कोशिशों की सताइश भी की जो अपने घरों या दुकानों के बाहर मटकों में पानी रखते हैं ताकि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सके। जनाब मोदी ने सभी पर जोर दिया कि इन मुश्किल दिनों में वो हसासियत और हमदर्दी के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। इधर बिहार, कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों और शुमाल मशरकी खित्ते में इतवार तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 3-4 दिन के दौरान केरला, माहे, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, रॉयलसीमा, जनूबी कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और शुमाल मशरक के बाद हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 इम्तहान पेपर लीक मामले में 2 और मुलजिमों को हिरासत में लिया है। एजेंसी ने अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से 13 मुलजिमीन को हिरासत में लिया है। लातूर में मुकीम डॉक्टर मनोज शिरूरे नाम के एक मुलजिम को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है। CBI के मुताबिक उसने 3 तलबा की मुलजिम PV कुलकर्णी से केमिस्ट्री के सवाल हासिल करने में मदद की खातिर अहम रोल अदा किया था, जिसमें मुलजिम कोचिंग सेंटर मालिक का बेटा शामिल है। अमेरिका के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान के इम्कानी साजिश होने पर सवाल उठाया है और यह भी कहा है कि वह गैर जानिबदार नहीं हो सकता, क्योंकि एक तवील अरसे से पाकिस्तान इसराइल की मुखालफत करता रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में ग्राहम ने दावा किया कि ईरान के फौजी हवाई जहाज पाकिस्तान की फजाइया के हवाई अड्डों पर रखे जा रहे हैं और पाकिस्तानी रहनुमाओं की तरफ से इसराइल पर रायजनी परेशान कुन है। अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे پروتن نینی اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں پاکستان پر شدید

0: प्रमुखता चीनी की है और कहा है कि वो बराबर सरहद पार से दहशतगर्दी फैला रहा है। भारत के नुमाइंदे ने कहा कि उसे भारत के खिलाफ दहशतगर्दी को शह देने का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबिल होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। फातह टीम फाइनल में जगह बनाने के लिए जुमे को गुजरात टाइटंस का मुकाबला करेगी। फाइनल इस महीने की 31 तारीख को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर वन मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंची है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नजरसानी के इंतखाबी कमीशन के इख्तियार को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये लोगों की नुमाइंदगी से मुतालिक कानून 1950 से मुताबिकत रखता है। भारत और कनाडा ने 2030 तक बाहमी तिजारत को 50 अरब अमरीकी डॉलर तक वसूल देने के अपने मुश्तरका अहद का इरादा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते दर्जे हरारत के दरमियान लोगों से एहतियाती इकदाम करने पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 इम्तहान के पेपर लीक मामले में दो और मुलजिमों को गिरफ्तार किया है। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान बातचीत में इमकानी सालिस की हैसियत से पाकिस्तान के रोल पर सवाल उठाया है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Supreme Court upholds Election Commission's power to conduct SIR of electoral rolls, says it is in consonance with Representation of the People Act 1950. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbh. India-Canada reaffirm shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. U.S. Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in U.S.-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in eliminator match in Chandigarh this evening. And now the news in detail. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Mallya Bagchi pronounced the judgment in the writ petitions, which challenged the notification issued by the ECI in June last year to conduct SIR in Bihar. The court held the SIR process had a nexus with the goal of having free and fair elections. The court said free and fair elections depend on accurate and credible electoral rolls and observed that the Election Commission's revision exercise aims to remove possible errors and duplication caused by migration, urbanization, and decades without an intensive revision. On the Supreme Court upholding ECI's decision to undertake SIR of voter rolls that started in Bihar, BJP leader Nalin Kohli has said that the Election Commission is mandated under the constitutional scheme to take care of elections in India and having free and fair elections is a basic requirement of a democracy.
2: Having free and fair elections is a basic requirement of a democracy. In that context, at regular intervals, the Honorable Election Commission has these special intensive drives in terms of correcting the voter list. And every political party has a stake to ensure that elections are free and fair and the voter list is absolutely pure. Only bona fide voters are there. This is what the scheme of things is, and that's what the Honorable Supreme Court has held. So I think it should

0: Start at 7:30 p.m. The winner will take on Gujarat Titans in qualifier 2 on Friday for a place in the final. In badminton, India's top player H.S. Pranoy produced a superb comeback performance to defeat Indonesia's Jonathan Christie in the opening round of the Singapore Open 2026 at the Singapore Indoor Stadium. Benchmark domestic equity indices were trading in negative territory during the afternoon session today. The Sensex dipped 102 points to 75,908 and the Nifty 50 slipped by 14 points to 23,900 when reports last came in. However, in the broader market at the National Stock Exchange, Midcap 100 index was trading almost 0.3% up. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Supreme Court upholds Election Commission's power to conduct SIR of electoral rolls, says it is in consonance with Representation of the People Act 1950. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take precautions amid rising temperatures. IMD predicts severe heat wave conditions over Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha. India-Canada reaffirms shared objective of expanding bilateral trade to $50 billion by 2030. CBI arrests two more accused in NEET UG 2026 examination paper leak case. U.S. Senator Lindsey Graham questions credibility of Pakistan's role as possible mediator in U.S.-Iran talks, cites Islamabad's long-standing opposition to Israel. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad to face Rajasthan Royals in eliminator match in Chandigarh this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की

0: संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
1: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और दो फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
0: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक ग्लास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
3: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर को

0: कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के सातवें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉ मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित तीन छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉ अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
4: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और

विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 2:30 हुए और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। तो एक ही कलाकार की करते हैं हम शुरुआत और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: कार्यक्रम एक ही कलाकार में आप सभी सुनने वाले श्रोताओं का सभी का स्वागत। खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में हमने एक से बढ़कर एक कलाकार देखे। किसी ने अपनी अदाकारी से हमें हंसाया तो किसी ने अपनी ट्रेजिडी से हमें रिलाया। लेकिन आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेता या शानदार फिल्म मेकर ही नहीं थे, बल्कि वो एक मुकम्मल इंसान थे। एक ऐसे इंसान जिन्होंने जिंदगी की हर परीक्षा को हंसते हुए मुस्कुराते हुए पार किया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मदर इंडिया के बिरजू, पड़ोस के सीधे सादे, भोला और असल जिंदगी के मसीहा सुनील दत्त साहब के बारे में।
1: तो क्यों

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और आज हम बात कर रहे हैं कलाकार सुनील दत्त साहब या कहें कि बलराज दत्त जी के बारे में। पंजाब के झेलम जिले में जन्मे बलराज दत्त, जिन्हें दुनिया ने आगे चलकर सुनील दत्त के नाम से जाना, उन्होंने प्रसिद्धि पाई सुनील दत्त के नाम से। अगर हम देखें तो उनकी जो जिंदगी का सफ़र है वो किसी फिल्मी सफ़र से कम नहीं। विभाजन का दर्द सहकर जब वो मुंबई आए तो उनकी जेब बिल्कुल खाली थी, लेकिन आंखों में कुछ कर गुजरने का सपना था। आपको मालूम है, फिल्मों में आने से पहले सुनील दत्त साहब ने बहुत संघर्ष किया। फिल्मों में आने से पहले दत्त साहब बस डिपो में चेकिंग क्लर्क का काम किया करते थे और उसके बाद उन्होंने रेडियो सैलून में एक बेहद लोकप्रिय उर्दोष यानी कि आरजे के रूप में अपनी पहचान बनाई। यानी कि जिस माइक से आज आप हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, कभी इसी माइक के सुल्तान हुआ करते थे सुनील दत्त साहब। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं के बारे में, उन्हीं के लेकर आज हम कर रहे हैं इस सफ़र के बारे में बात। तो सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत उन्हीं की फिल्म से।

जी दोस्तों, आरजे बने रेडियो में और साथ ही साथ बस में टिकट कलेक्टर भी बने, लेकिन उसकी किस्मत को था कुछ और ही मंजूर। और शायद यही वजह थी कि निर्देशक महबूब खान की कालजयी फिल्म मदर इंडिया आई और इस फिल्म ने सुनील दत्त साहब की तकदीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। पर्दे पर बागी बेटे बिरजू का किरदार निभाकर उन्होंने जो तहलका मचाया, उसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन इसी फिल्म के सेट पर एक और वाकया हुआ जिसने उसकी जिंदगी में मोहब्बत के रंग भर दिए। सेट पर लगी भयानक आग से जब उन्होंने नरगिस जी की जान बचाई, तो वो सिर्फ रियल लाइफ के नहीं बल्कि रियल लाइफ के भी हीरो बन गए। और दोनों की ये पावन मोहब्बत बाद में शादी के खूबसूरत बंधन में बदल गई।

दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त प्रीति। और हम बात कर रहे हैं दत्त साहब के बारे में। सुनील दत्त साहब, जिनके अभिनय का दायरा इतना बड़ा था, जिसमें साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, वक्त जैसी फिल्मों में जहां उन्होंने बहुत ही संजीदा किरदार निभाए, बहुत ही गंभीर किरदार निभाए, वहीं दूसरी ओर पड़ोसन का भोला बनकर उन्होंने सबको हंसने पर मजबूर किया। बिंदु के प्यार में पूरी तरह पागल, बालों में तेल लगाया हुआ सीधा साधा भोला, कौन बोल सकता है उसे, बिल्कुल भी नहीं। और इतना ही नहीं, बतौर निर्देशक उन्होंने यादें जैसी अनोखी फिल्म बनाई जिसमें पूरी फिल्म में सिर्फ एक ही अभिनेता थे और वो थे खुद सुनील दत्त साहब। ये प्रयोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। इसके अलावा रेशमा और शेरा जैसी बड़ी बड़े बजट की फिल्म देकर उन्होंने सिनेमा को एक अलग और नया नज़रिया दिया, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिली इस तरह की फिल्में बनाने की।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और हम बात कर रहे हैं सुनील दत्त साहब के बारे में, उन सुनील दत्त साहब के इस बारे में जिन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो कि 2 घंटे की एक ऐसी फिल्म बनाई जो कि एक एक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्टर के। जी हाँ, और भारतीय सिनेमा नहीं बल्कि दुनिया के सिनेमा में, पूरे विश्व के सिनेमा में एक ऐसा स्पेशल, एक ऐसा अनोखा प्रयोग था जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ, और वो फिल्म थी यादें। इसके बाद डाकुओं के जीवन पर उन्होंने फिल्म बनाई मुझे जीने दो, राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बनी क्लासिकल फिल्म रेशमा और शेरा जैसी फिल्में जिन्होंने सिनेमा और विजुअली बेहद रिच और रियलिस्टिक बनाया। जिस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन को भी एक गूंगे का किरदार दिया था। 70-80 के दशक में वो जानी दुश्मन, शान, परंपरा जैसी मल्टी स्टारर और बहुत से दमदार किरदारों में नजर आई, और उसके बाद इस शानदार सफर, फिल्मी सफर का आता है आखिरी पड़ाव। 2003 में निर्देशक राजकुमार हिरानी की फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस के साथ। पूरे 16 साल के बाद वो बड़े पर्दे पर नजर आए, और वो भी अपने बेटे संजय दत्त के साथ। उनके साथ रियल लाइफ में भी पिता बनकर आए फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में, और फिल्म में जब उन्होंने संजय दत्त को दी जादू की जप्पी तो वाकई में वो सीन ऐसा था कि हर किसी को, हर देखने वाले को रुला दिया इस सीन ने। उनके 5 दशक लंबे इस फिल्मी सफर में सबसे ज्यादा भावुक और यादगार शॉट रहा यही मुन्ना भाई एमबीबीएस का। और अगर हम देखें पीछे मुड़कर कि किस तरह संजय दत्त, जो सुनील दत्त साहब का एक सफर रहा, एक क्लर्क रहे, एक आरजे रहे, एक रोमांटिक हीरो बने, एक डाकू बने, कॉमेडियन बने, और उसके बाद में बने क्रांतिकारी फिल्म मेकर, कहेंगे कि उनका जो सफ़र था वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा जानदार शानदार था। और दोस्तों, उनका सफ़र तो जानदार शानदार रहा, और उसी तरह से शानदार जानदार हमारे श्रोताओं के संदेश भी हैं जो हम तक पहुँचे हुए हैं, और उसी में से एक ये संदेश हम ले लेते हैं। सैयद मसरूर, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम ने हमें संदेश भेजा है गांव कुमार हिड़ा सहारनपुर से। हमारे साथ जुड़े हैं गांव रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और परिवार के सदस्य। गांव लोहागढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभापुर कैंट से दिग्दर्शन और कविता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से हैं हमारे साथ, और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन टल्लू नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला संदेश छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, अशफाक अल्ताफ और इनके साथ हैं खतीजा बेगम, आफरीन कौसर, नीलोफर फातिमा के साथ। ऊपरकोट मोहल्ला चौकटी बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े मोहम्मद सईद अब्बासी जी और इनके साथ हैं निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूजा परिहर के साथ। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखिया, अनिता, सिमरन मुखी जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। और राजकुमार टूडी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ ग्राम नागरकोहरा, जिला राजनंदगांव से

राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मुरियकर हमारे साथ जुड़े हैं। और ये जो अगला संदेश है इसको भेजने वाले हैं संजय डिंगिया, नमन डिंगिया अपार के साथ बागपत उत्तर प्रदेश से, ज्योति मकर, मन्नत भारत, कमल सहनी पिंगावाला चौक, गोरैया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस और यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहजी नगर देगलूर जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे के साथ। अगला जो संदेश है उसको भेजने वाले हैं हमारे पास उदय भान पाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, सुनील दत्त साहब के बारे में हमने आज जाना समझा, और सुनील दत्त साहब के बारे में यही कहेंगे कि उनका मदर इंडिया से शुरू हुआ ये सफ़र लंबा चला, काफ़ी शानदार रहा, जानदार रहा। और उन्होंने इस सफ़र में न सिर्फ फिल्में की बल्कि उन्होंने दुनिया के लिए, देश के लिए भी बहुत कुछ किया। सुनील दत्त साहब एक महान आत्मा 25 मई 2005 को हमसे दूर हो गई, लेकिन उनकी अपनी फिल्मों, अपनी इंसानियत और अपनी नेकी के ज़रिए वो आज भी हमारे सभी के दिलों में ज़िंदा हैं। तो दोस्तों, सुनील दत्त साहब को हमारी तरफ से शत शत नमन। कार्यक्रम का जो सफ़र है अब यहीं तक। अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम की समाप्ति की। छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए उन्हीं की एक खूबसूरत सी फिल्म से, आशा जी की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत, और फिल्म का ये गीत आपको ज़रूर पसंद आएगा। उम्मीद करती हूँ कि लता जी और मुकेश जी की आवाज़ में है मिलन फिल्म से ये गीत, और बहुत ही खूबसूरत गीत है। और ये गीत को सुनते ही याद आती है सुनील दत्त साहब की वो खूबसूरत सी, प्यारी सी, भोली सी सूरत। तो इसी गीत के साथ मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 3 बजने को है। लीजिए सुनते हैं NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
1: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
2: जी,
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
1: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी,
2: सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
1: अभिमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओ, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहाँ तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
2: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां, खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
2: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
2: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
3: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
4: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
5: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
4: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
5: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
4: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
5: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
4: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
5: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
4: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
5: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
4: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
5: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
4: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
4: मश्क,
3: होशियार,
4: समझदार,
3: पेंसिल तराश,
4: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
4: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
2: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
6: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना, और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
7: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे।
8: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
7: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
8: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं, उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाएं, हो नहीं सकता।
7: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
9: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
10: क्या बात है,
9: सुनकर ही जोश आ गया।
10: हाँ
9: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
10: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।

0: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चल

0: चमत्कार है।
1: धन्यवाद।
2: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
1: हमला करो दुर्गा माता की जय। भारत माता की जय।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबरा कर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
4: साम जी, साम जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
4: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जाओ।
4: मैं जा रहा हूँ
1: साहब जी। साहब जी
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीरगति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। अपराहन के 3:30 हुए हैं। अब वक्त है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का।

0: और मैं काफ़ी फ्री। मेरी मसरूफियात मेरी तरह कमतर थीं। सुबह 10 बजे अपने मामूली से दफ्तर जाना, शाम 4 बजे घर लौट आना। घर आते ही निर्मला के लाए इम्पोर्टेड शावर जेल से नहाकर और कीमती डिओडोरेंट में बसकर ताज़ा इस्त्री किए कपड़े पहन लेता। छत पर शाम के सूरज को अलविदा कहते हुए तारों का कारवां का पुरजोश इस्तकबाल करता और बराबर वाली कोठी की बरसाती के सहन और मेरी छत की मुश्तरका दीवार से लगकर बोगनवेलिया के गुलाबी फूलों के गुच्छों के दरमियान छुपकर गोरी गोरी शर्माई लजाई मिसिज अहमद को ताकता। मिसिज अहमद बड़े से दोशाले में छिपी रहती, मेरी तरफ पीठ किए अपने कामों में मशगूल। धूप में उनके सुनहरी बाल और ज़्यादा सुनहरी हो जाते। अहमद साहब, उनके शौहर, शायद किसी रियासत के नवाब हैं, बड़ा ही शाही मिजाज रखते हैं। खाने के वक्त बेगम अहमद साहब के सामने सफ़ेद चीनी की प्लेट में भागम भाग तवे से उतरी गर्मा गर्म रोटियाँ रखती और ज़रा देर होने पर अहमद साहब की दहाड़ के साथ वो रोटी की तरह सेक दी जाती और कौरमे के मसाले की तरह भून दी जाती। दिवाली पर निर्मला अहमद साहब के यहाँ मुलाजिमा के हाथ प्रसाद भिजवाती और ईद पर वो लोग अपने गांव चले जाते। लेकिन एक ईद पर अहमद साहब को छुट्टी नहीं मिली थी और खुशकिस्मती से उस दिन दरवाज़ा मैंने ही खोला। कंचन सी धुली धुलाई काया पर सादगी से लिपटी बसंती लखनवी चिकन की साड़ी में वो यानी मिसिज अहमद मेरे घर के दरवाजे पर खड़ी थी। चार उंगलियां चांद सी पेशानी तक ले जाकर झिझक गईं और दरवाजे के हैंडल को मुखातिब करके मध्यम सुर में गुनगुनाई, ईद मुबारक, ये सिवैयां। दिल चाहा प्याले के साथ उन्हें भी रख लूं, लेकिन उनकी नाजुक कलाइयों पर जुल्म कैसे बर्दाश्त करता। मैंने जल्दी से प्याला पकड़ लिया और प्याले पर उनकी उंगलियों के लतीफ़ और नरम गर्माहट को अपनी सर्द उंगलियों में महसूस किया, लेकिन वो जा चुकी थी। एक सिंदूरी शाम मैं अपने पौधों से गुफ्तगू में मसरूफ़ था और मेरी नज़र बेइरादा उड़ गई। दीवार के पार अहमद साहब के मलमल झक सफ़ेद कुर्ते में घुली मिली सफ़ेद उंगलियां गाड़े वो कढ़ाई कर रही थीं। बोगनवेलिया के गुलाबी गुच्छों के दरमियान मैंने झांका कि अचानक मलमल का सफ़ेद कुर्ता सुर्ख गुल बूटों से सजने लगा। सुई उनकी उंगली को छेद चुकी थी, लेकिन अचानक आस्तीनों वाले लंबे बनियान और टखनों खुले पजामे में अहमद साहब बाथरूम से बाहर निकल आए। बल्लोरी कलाई पर अहमद साहब की गिरफ्त सख्त से सख्त होने लगी थी। मैंने अचानक निर्मला की कद्दादम तस्वीर को देखा, वो मुझे और भी नाराज़गी से घूरने लगी। निर्मला की गर्म नज़रों की ताब न लाकर मैंने कस के आँखें बंद कर लीं कि एक अजीब से शोर ने मुझे बेदार कर दिया। मैंने धूल से अटी घड़ी को देखा, सुबह के 5 बजे थे। घुटी घुटी नरम चीख सुनकर मैं बिस्तर से कूदा, छत की तरफ दौड़ पड़ा। सवेरे की हल्की धुंध में दीवार के पार मिसिज अहमद और अहमद साहब एक दूसरे में उलझे हुए थे। मिसिज अहमद पहली बार दोशाले के बगैर थी। मिसिज अहमद का सुनहरी जोड़ा अहमद साहब की मुट्ठी में कांप रहा था। मिसिज अहमद के हाथ से पौधों में पानी की धार देता बड़ा पाइप छूट गया। मिसिज अहमद की हथेलियाँ लरजने लगीं और अहमद साहब की खिचड़ी दाढ़ी के सामने जुड़ गईं। वो कमर के बल झुकी जा रही थी। दर्द की कर्बनाक लहरें उनके सुर्ख चेहरे से दौड़कर मेरे दिल पर शिगाफ डालने लगीं। उनकी सुनहरी पलकें अब तक उनकी आंखों पर ढकी थीं। इसी कशाकश में अहमद साहब के हाथों में लरजता हुआ सुनहरी जोड़ा खुलकर बिखर गया। अहमद साहब ने उनकी कांपती हथेलियों को चीते की सी फुर्ती में अपने कब्जे में ले लिया। मैं दीवार पर चढ़कर बोगनवेलिया के गमले पर खड़ा हो गया। बलोरी कलाइयाँ अहमद साहब ने एक झटके से झंझोड़ दीं। मेरे दिल में छन छन करके उनके शीशे की नाजुक कलाइयाँ चरमराईं। अहमद साहब ने फर्श पर पड़ा पानी से भरा रबड़ का मोटा पाइप उठा लिया। मैंने कसकर दीवार को अपने हाथों में जकड़ लिया। पानी की धार से बौखलाई मिसिज अहमद इधर उधर बचने लगीं। हिचकियों की लड़ियों ने उनके भरे भरे वजूद में इरताश पैदा कर दिया। वो अहमद साहब के कदमों में झुकने लगीं और उनकी नरम नाजुक हथेलियाँ अब तक जुड़ी रहीं। भारी पाइप के बोझ से अहमद साहब हाँप गए। वो पाइप को भीगी हुई मिसिज अहमद के ऊपर फेंक कर कमरे में कूच कर गए। सुनहरी पलकों की झालर मेरी जानिब उठी। हरे समंदरों में सुनामी आ चुका था। आंसुओं से लबरेज उनकी सब पुतलियाँ मुझे ही देख रही थीं। उनकी आपस में जुड़ी हथेलियाँ मेरी तरफ उठने लगीं। मैं हरे समंदरों में डूब गया। सहमी सहमी शबनमी मिसिज अहमद बंद गुलाबी होंठों में मुस्कुरा दी। बलोरी नाजुक हथेलियाँ एक दूसरे से जुदा हो गईं और उबलते हरे हरे समंदरों सी आँखों पर वो हथेलियाँ बादबान बन गईं। बोगनवेलिया के फूलों के गुच्छे महक उठे। आज जिंदगी में पहली बार मुझे अपना बेकार वजूद भारी भरकम लगने लगा। मैं किसी आजुर्दा वजूद के मुस्कुराने की खूबसूरत वजह बन सका। मैं धम से अपनी ठंडी छत पर गिर पड़ा। एक लम्हा ज़ाय किए बगैर मैं अपने बेडरूम की तरफ दौड़ गया। चर्मी बैग की अंदरूनी जेब से अपना पासपोर्ट निकाला और 10 साल के मल्टीपल यूएस वीज़ा की स्टैंप लगे सफ़े को पासपोर्ट से अलग कर दिया और उस सफ़े के अनगिनत नन्हे नन्हे पुर्जे करके खिड़की से खुली बाहर गर्म हवा में उड़ा दिया।
1: लम्हा एक गुमान का, इस उन्वान के तहत अभी आप मोहतरमा रक्षंदा रूही से उनका अफसाना सुन रहे थे और आइए अब चंदनदास की आवाज़ में समाप्त करते हैं ये खूबसूरत गज़ल।

0: और हयात पाते तो कुछ ऐसी शायरी दे जाते जो आम पढ़ने वालों तक पहुंचकर उनके दिलों को मजीद गरमाती और बानी इतने अजनबी न रहते जितने आप हैं। उनका ये कहना किसी हद तक दुरुस्त है, कोई भी घर में समझता न था मेरे दुख सुख, एक अजनबी की तरह मैं खुद अपने घर में था।
1: लफ्जों से मंजर बनाने वाला राजेंद्र मनचंदा। इस मौजू पर अभी आप जनाब मरगूब अली की तहरीर सुन रहे थे, पेश कर रहे थे जनाब नोमान शौक। सामीन, आइए अब बात करते हैं आकाशवाणी के 90 साल जश्न की। जैसा कि आप जानते हैं कि आकाशवाणी ने 9 दहाइयों का तवील सफर तय कर लिया है। इस मौके पर मुल्क भर से ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहने वाले अदीब, शायर और फनकार माजी की हसीन यादों को ताज़ा करते हुए खुशी, फ़ख्र और जज्बाती वाबस्तगी का इजहार कर रहे हैं। इसी ताल्लुक से मोहतरमा अज़रा नकवी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा,
2: आदाब, मैं हूँ अज़रा नकवी, शायरा, अदीबा और मुतरजम। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो से मेरा एक बहुत पुराना ताल्लुक है। सबसे बड़ा ताल्लुक तो यह है कि मेरे नाना डॉक्टर आबिद हुसैन एक ज़माने में यहाँ के एडवाइज़र थे। अब मेरा ताल्लुक इससे कैसे हुआ? 1975 में मैं JNU में MPhil कर रही थी, तब मैंने यहाँ ऑडिशन दिया कैजुअल अनाउंसर के लिए और मुझे ले लिया गया। तो 2 साल तक मैंने मुस्तकिल यहाँ कैजुअल अनाउंसर के तौर पर काम किया। वैसे भी रेडियो स्टेशन से मेरा एक जज्बाती ताल्लुक था, लेकिन इन 2 साल में मैंने इतना कुछ सीखा यहाँ से कि जो जिंदगी भर मेरे साथ है। उस वक्त यहाँ पर एक्सटर्नल सर्विस में मैं थी और बहुत से मशहूर लोग थे, पैक्स थे, अमीर हनफी साहब, और जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन जुबैर रजी साहब रिटायर हो रहे थे। जाहिर है कि उनकी शायरी से, उनके बहैसियत शायर हम पहले से वाकिफ थे, बत्रा साहब थे, और जो अनाउंसर्स थे उनमें ताहिरा नियाजी थी, मरियम काजमी थी, एसएम शफीक थे, बहुत से लोग थे जो बहुत ही पुराने और बहुत ही सीजन अनाउंसर्स थे। उन्होंने मुझे बताया कि कहाँ रुकना है, आवाज़ का उतार चढ़ाओ, आवाज़ को बहुत बुलंद नहीं करना है, किस तरह से हमको रिपोर्ट पढ़नी है, किस तरह से हमको प्रोग्राम करने हैं। तो ये चीज़ मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम थी और वो यादें मेरी ज़िंदगी की बहुत ही खूबसूरत यादें हैं। जब भी कभी मैं AIR के इस बिल्डिंग में दाखिल होती हूँ तो मैं दुआ करती हूँ कि ये बिल्डिंग इसी तरह रहे, क्योंकि ये एक तारीख का, हमारे देश की, हमारी तारीख का एक हिस्सा है, हमारी सकाफत का एक हिस्सा है। चाहे आज सोशल मीडिया कितना ही बड़ा हो जाए, TV कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन ये आकाशवाणी भवन अपनी एक अलग हैसियत रखता है। जब इसके गोल हॉल में आते हैं, एंट्रेंस में आते हैं, तो एक अजब फ़ज़ा तारी हो जाती है। अगर एक बड़े कमाल की बात यह है कि मैं 1976 के एंड में शादी होकर मैं बाहर चली गई और पूरे 38 साल मैं मुख्तलिफ ममालिक में रही, इराक में रही, मैं कनाडा में 15 साल रही, फिर 15-20 साल सऊदी अरब में रही, और जब मैं वापस आई 2011 में, तो आप ही आप ऑल इंडिया रेडियो से मेरा रिश्ता फिर जुड़ गया। जैसे मैं कहीं गई ही नहीं थी, बहुत कुछ बदल चुका था। वो पुराने, मुझे याद है कि स्टूडियो में स्पूल्स होते थे और उसको हमको ऑपरेट करना सिखाया जाता था, अब बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन ये रिश्ता फिर से जुड़ा और आज तक जुड़ा हुआ है। अपनी शायरी सुनाती हूँ, डिस्कशंस में शामिल होती हूँ, फीचर्स लिखती हूँ, तो मेरा इससे जो एक ख़ास जज्बाती रिश्ता है वो कभी टूट नहीं सकता, और ये इसने मेरी शख्सियत के डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा किया है। मैं AIR के, आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर सबको बहुत मुबारकबाद देती हूँ, अपने देश को मुबारकबाद देती हूँ, और अब जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं उनको मुबारकबाद देती हूँ, बल्कि खुद को मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया।
1: सामीन, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम अक्से अदब। तरतीब पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। उर्दू मजलिस का आज का ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपने मेज़बान सरफराज आलम को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।

0: शाम के 4 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने कई अहम फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्थक पीडीएस स्कीम में 3 बड़े सुधारों को मंजूरी दी है।
2: सार्थक पीडीएस स्कीम करीब 25,000 करोड़ का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में, एक जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बियर करने में दिक्कत आ रही थी राज्य सरकारों की। भारत सरकार ने फैसला लिया है कि उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे इस प्रोग्राम के तहत। दूसरा, जो फेयर प्राइस शॉप उन फेयर प्राइस शॉप्स में जो डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था एक लंबे टाइम से वो स्टैटिक था, तो वो भी इसमें आज फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला लिया गया, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का घर है। उन्होंने बताया कि हर महीने लगभग 80 करोड़ नागरिकों को राशन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि गरीबी में कमी आई है और सामाजिक सुरक्षा मजबूत हुई है। श्री वैष्णव ने कहा कि सभी लाभार्थियों का डेटा एक जगह मौजूद रहेगा और स्वच्छ पारदर्शी तथा सटीक खाद्य वितरण का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में भीषण गर्मी पर भी चर्चा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनियों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरूरे को भी गिरफ्तार किया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया।

और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: for sponsoring terror activities against India. The BSE Sensex dropped 142 points to close at 75,868. The stock markets will remain closed tomorrow on account of Bakri Eid. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad will face Rajasthan Royals in the eliminator match at New Chandigarh this evening. The match will start at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार. आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आयोजित स्वरांजलि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानी आप सभी का स्वागत करती हूँ. इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर्स यानी 819 किलोहर्ट्ज पर इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जा रहा है और साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ऑडियंस इस कार्यक्रम से जुड़ी है. सभी का कार्यक्रम में पुनः अभिनंदन स्वागत. आज स्वरांजलि कार्यक्रम में प्रस्तुति के लिए हमने सादर आमंत्रित किया है पंडित प्रदीप्तो सेन गुप्ता को. आप अपने समूह के साथ आज कार्यक्रम में मैंडोलिन वादन की प्रस्तुति देंगे. मैं कलाकार के परिचय के साथ साथ आज आपके वाद्य यंत्र का परिचय भी करवाना चाहती हूँ. मैंडोलिन एक बहुत ही मधुर और आकर्षक तार वाद्य यंत्र है जिसका विकास इटली में 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर में मैंडोर नामक वाद्य से हुआ. महान कलाकार यू श्रीनिवास ने इस वाद्य को कर्नाटक संगीत के अनुरूप विशेष रूप से संशोधित करके अपनी अद्भुत शैली से भारतीय शास्त्रीय संगीत में इसे एक नई पहचान दी. और प्रदीप्तो सेन गुप्ता भारत में मैंडोलिन वादक के रूप में एक अत्यंत लोकप्रिय और सम्मानित नाम है. आप सभी से अनुरोध है पुनः करतल ध्वनि से कलाकार का अभिनंदन करें. आप आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं और कोलकाता के एक संगीत प्रेमी परिवार से हैं. मात्र 10 वर्ष की आयु में आपने श्री तपस पाल के मार्गदर्शन में मैंडोलिन सीखना प्रारंभ किया. बाद में श्री सरोज बरुआ से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया. धीरे धीरे पंडित प्रदीप्तो सेन गुप्ता ने बंगाली फिल्म उद्योग में अपनी पहचान बनाई. वर्ष 1988 में आप मुंबई गए जहां प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक मनोहरी सिंह ने आपका परिचय महान संगीतकार आरडी बर्मन से करवाया. इसके बाद आपका संगीत सफर लगातार नई ऊंचाइयां छूता रहा. आपने बॉलीवुड संगीत जगत में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है. पंडित प्रदीप्तो सेन गुप्ता ने मैंडोलिन फेस्टिवल की शुरुआत की और आज देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े अनेक मैंडोलिन वादक आपके शिष्य के रूप में मंच पर आपके साथ प्रस्तुति दे रहे हैं. आपके एक शिष्य विशेष रूप से इस प्रस्तुति के लिए अमेरिका से आए हैं. मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ सभी कलाकारों के लिए आप करतल ध्वनि से पुनः स्वागत करें अभिनंदन करें. सबका मैं नाम के साथ परिचय आपको दूंगी. पंडित प्रदीप्तो सेन गुप्ता को आपके संगीत योगदान के लिए अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है. इंडो अमेरिकन अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, आरडी बर्मन मेमोरियल अवार्ड, स्वर बंध सहवादक सम्मान, पंचम रत्न सम्मान सहित कई सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं. आपके साथ जो मैंडोलिन कलाकार आज प्रस्तुति देने वाले हैं सभी का परिचय करवा रही हूँ. डॉक्टर दीपक गोविल, डॉक्टर नम्रता जोशी, डॉक्टर अंजलि चौहान, मंगेश नागोटकर, मयूर भट्ट, वंदना आपटे, विशाल नांगरे, वैभव राठौड़, आलिया गुप्ता, प्रशांत दुबे और रजनीश कपूर. और आपके साथ गिटार पर संगत कर रहे हैं श्री रतन प्रसन्ना और तबले पर हैं गुलाम साबे. सभी का पुनः अभिनंदन स्वागत. आज की प्रथम प्रस्तुति रहेगी वंदे मातरम. तो कलाकारों से अनुरोध है अब प्रस्तुति आरंभ करें.

इस सुंदर प्रस्तुति के बाद अगली प्रस्तुति राग कलावती पर आधारित, और आपको बताना चाहेंगे कि इसकी रचना पंडित प्रदीप्तो सेन गुप्ता ने ही की है।

स्वरांजलि कार्यक्रम का आनंद YouTube के माध्यम से भी लिया जा रहा है। हमें प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है नीना धामी, लविश रावत, शुभम बेलवाल और तरुण जोशी की। अन्य साथियों ने भी प्रस्तुति की तारीफ की है, प्रशंसा कर रहे हैं। अगली प्रस्तुति का आनंद लीजिए, राग मिश्र खमाज पर।

हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वरांजलि कार्यक्रम का आनंद YouTube के माध्यम से लिया जा रहा है और लगातार हमें संदेश प्राप्त हो रहे हैं। आशुतोष पोखरियाल, अभिषेक, सत्यम झा, विपुल यादव, गीता बिष्ट और अन्य साथी हमें लगातार लिख रहे हैं, प्रस्तुति का आनंद आप ले रहे हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि कोविड काल में लॉकडाउन के कठिन समय के दौरान पंडित प्रदीप्त सेन गुप्ता ने अपने संगीत के माध्यम से जन सेवा की और अपने शिष्यों के साथ मिलकर आप लगातार ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुतियों का आयोजन करते रहे और इस प्रकार आपने लोगों में राहत का संचार किया। आज स्वरांजलि कार्यक्रम में आप अपने शिष्यों के साथ प्रस्तुति दे रहे हैं, मैंडोलिन वादक, जाने माने कलाकार आप, और अगली प्रस्तुति है राग मिश्र पहाड़ी पर आधारित धुन।

मौलवी पर आधारित एक विशेष रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। बचपन में आकाशवाणी पर इस रचना को सुनकर ही आपको मैंडोलिन सीखने की प्रेरणा मिली थी। ये रचना हमारे देश के सुप्रसिद्ध मैंडोलिन वादक दिवंगत जसवंत सिंह जी द्वारा स्वरबद्ध और प्रस्तुत की गई थी, जो आकाशवाणी दिल्ली के कलाकार थे। ये प्रस्तुति पंडित प्रदीप्तो सेन गुप्ता की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि है।

आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आयोजित स्वरांजलि कार्यक्रम में आज पंडित प्रदीप्त सेन गुप्ता ने मैंडोलिन वादन की प्रस्तुति दी और आपका साथ निभाया आपके शिष्यों ने। हम आपको बताना चाहेंगे कि आकाशवाणी के 90 वर्षों का उत्सव इन दिनों हम मना रहे हैं और इसी उपलक्ष्य में विशेष प्रस्तुतियों का आयोजन किया जा रहा है। आज की हमारी प्रस्तुति भी इसी प्रकार की, जिसमें देश भर के अलग अलग राज्यों के कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति दी और पंडित जी के एक शिष्य अमेरिका से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। आप सभी से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से सभी कलाकारों का अभिनंदन करें, सभी कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त करें। मैं कलाकारों का परिचय एक बार फिर से करवाना चाहूँगी। मैंडोलियन कलाकार पंडित प्रदीप्त सेन गुप्ता के साथ जो प्रस्तुति दे रहे थे, डॉक्टर दीपक गोविल, डॉक्टर नम्रता जोशी, डॉक्टर अंजलि चौहान, मंगेश नागोटकर, मयूर भट्ट, वंदना आप्टे, विशाल नांगरे, वैभव राठौड़, आलिया गुप्ता, प्रशांत दुबे, रजनीश कपूर। गिटार पर संगत की श्री रतन प्रसन्ना ने और तबले पर गुलाम साबिर साहब थे। हम आपको बताना चाहेंगे कि YouTube के माध्यम से अभी भी हमें संदेश प्राप्त हो रहे हैं। अपने साथियों के प्रति आभार हम अवश्य प्रकट करना चाहेंगे। अमित, अजय, वी पांडे, निधि गर्ग, प्रियांशु और अन्य साथी जिन्होंने भी इस कार्यक्रम में प्रतिक्रिया दी, सभी के लिए बहुत बहुत आभार। और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आगे भी हमारे जो कार्यक्रम आकाशवाणी 890 के उपलक्ष्य में हो रहे हैं, आप उनमें शामिल होइए, उनके साथ जुड़िए। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा मनीष आनंद, बी जयवंधन और सुशील भटनागर का। प्रस्तुति सहयोग था आकाश गौतम, दिव्या और रेवती राजन का। और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्पर्शिता श्रीवास्तव और प्रदीप अग्रवाल। मैं नीलम मलकानिया अब स्वरांजलि कार्यक्रम से आप सभी से अनुमति लेती हूं। आप सभी का स्टूडियो में आने के लिए, इस अद्भुत प्रस्तुति का साक्षी बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही देर में हम सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण के लिए 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आज तीन और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने आज केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved continuation of the scheme for assistance in ration transport and handling income with automation and PDS, Sarthak PDS, as an umbrella scheme in the 16th Finance Commission cycle award period, with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the scheme will provide assistance to state agencies for intra-state movement of food grains, support fair price shops, and help in modernization of the public distribution system.
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं.
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे. फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स. सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल. थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी.
1: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
2: Home Minister Amit Shah today hailed the approval of over 25,500 crore rupees for Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. In a social media post, Mr. Shah said the government is equipping poverty alleviation schemes with technology to make them more transparent and convenient. The Supreme Court today agreed to examine a plea challenging a CBSE policy mandating the study of three languages, including at least two native Indian languages, for Class 9 students. A bench of Chief Justice Suryakant and Justices Joymalia Bagchi and Vipul M. Pancholi issued notices to the Centre, the CBSE and the NCERT and sought their replies within 2 weeks. According to a recent circular issued by the Central Board of Secondary Education, CBSE, the study of three languages, including at least two native Indian languages, has been made compulsory for Class 9 students beginning from the 1st of July. The Supreme Court today left to the Election Commission to take a decision on a plea seeking changes to VVPAT guidelines to show the exact time when a vote is cast on each slip. A bench of Chief Justice of India, Suryakant and Justice Joymalia Bagchi said the matter is technical in nature and falls within the jurisdiction of the Election Commission. The plea stated that adding a timestamp on VVPAT slips would improve transparency, verification and auditability in the electoral process. The Central Bureau of Investigation has arrested two more accused in the NEET UG 2026 examination paper leak case. An accused, namely Dr. Manoj Chirure, a Latur-based doctor, has been arrested in the case. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching centre. The agency has arrested 13 accused so far in the case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilya Nagar. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of the home. Mr. Modi stressed that in such weather, sensitivity becomes a great source of support. He further directed placing a small vessel filled with water outside homes, balconies, rooftops, shops or offices for animals and birds. The Indian Meteorological Department has issued a yellow alert for heatwave conditions today over parts of Delhi, with maximum temperature expected to hover between 43 and 45 degrees Celsius. The Met Department has also predicted severe heatwave conditions over Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha. In badminton, Indian shuttler H.S. Pranoy stunned 5th-ranked Jonathan Christie of Indonesia with a 10-21, 21-12, 21-18 first-round victory in men's singles at the Singapore Open today. Later in the day, Lakshya Sen will take on China's Liu Kuangsu. In the mixed doubles, the pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto defeated the Malaysian duo of Wong TNC and Lim Chiu Sen in the first round. And with that, we end this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. शाम के 5:10 हुए हैं. अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी.

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को अरुणेश कुमार
1: और
0: और
1: लोकेंद्र वर्मा का नमस्कार।
0: नमस्कार। तो लोकेंद्र, हमारा आकाशवाणी का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 90 वर्षों की यात्रा अनवरत रूप से जारी है और इस दौरान हम अपने श्रोताओं का मनोरंजन करते हैं लोकगीत के माध्यम से और अलग अलग जो हमारे और लोकगीत के विधाएं होते हैं उस बारे
1: हाँ
0: में।
1: बिल्कुल अरुणेश भाई, देखिए हमारा जो कार्यक्रम है लोकगीतों पर आधारित है, क्योंकि हम उसमें अपनी विधाएं भी बताते हैं
0: हाँ
1: और लोकगीत प्रॉपर एक चीज़ पर नहीं होता, हर चीज़ उसमें उनकी लोक संस्कृति होती है, उनके रहन सहन वगैरह सब चीज़ दर्शाया जाता है। तो हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं अरुणेश भाई, सीमा राठी की आवाज़ में, ये इस लोकगीत से।

तो लोकेन भाई, अभी हमारे श्रोताओं ने सुना सीमा राठी को, और अब हम सुनवाते हैं प्रियंका चौधरी की आवाज़ में एक और लोकगीत।

0: उमेश भाई, अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे प्रियंका चौधरी की आवाज़ में ये लोकगीत, और चलते चलते एक और लोकगीत सुनवाते हैं राजबाला की आवाज़ में।
1: ओ ले ले छुट्टी फौजी बाल माँ, मन हिंदुस्तान घुमा दे। ओ ले ले

0: तो लोकेंद्र भाई, अब इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो सभी सुनने वालों को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी। शाम के 5:30 हुए हैं, आप सुनते हैं दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और

हॉकी की। श्रोताओं, एक दुखद समाचार यह भी है कि भारत के पूर्व ओलंपियन निशानेबाज और जाने माने खेल प्रशासक रणधीर सिंह का निधन हो गया है। उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। खेलों के अन्य खेल खबरों पर भी चर्चा होगी, पर सबसे पहले बात आईपीएल की।

0: कप्तान रजत पाटीदार की आतिशी पारी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंचा दिया। पिछली विजेता टीम ने कल आईपीएल में मौजूदा सीजन के पहले क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस को 92 रन के बड़े अंतर से पराजित किया। रजत पाटीदार ने 33 गेंदों पर 93 रन की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 9 छक्के शामिल थे। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल शायद धर्मशाला के मैदान की पिच के मिजाज को नहीं भाप सके और टॉस जीतकर पहले आरसीबी को बल्लेबाजी का निमंत्रण दे डाला। आरसीबी के लिए पाटीदार के अलावा विराट कोहली ने 25 गेंदों पर 43 और कुणाल पांड्या ने 28 गेंदों पर 43 रन की ही पारी खेली। देवदत्त पड्डिकल ने भी 30 अहम रन का योगदान दिया। एक समय जेसन होल्डर ने कोहली और पड्डिकल को लगातार 2 गेंदों पर आउट कर दिया था, लेकिन पाटीदार और किनाल की चौथे विकेट के लिए 95 रन की साझेदारी से आरसीबी ने 5 विकेट पर 254 रन का एक बड़ा स्कोर बनाया, जो आईपीएल प्लेऑफ दौर का श्रेष्ठ स्कोर है। इससे पहले 2023 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ गुजरात टाइटंस ने 233 रन बनाए थे। गुजरात की टीम इस क्वालिफायर 1 के मुकाबले में बड़े लक्ष्य के आगे दबाव में बिखर गई और 19.3 ओवर में 162 रन ही बना सकी। गुजरात ने तीसरे ओवर में ही पहला विकेट गंवा दिया था। उसके बाद तो गुजरात की बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई और टीम 88 रन पर 8 विकेट गंवा चुकी थी। ये तो राहुल तिवेतिया ने 43 गेंदों पर 68 रन बनाकर गुजरात को कुछ सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। आरसीबी के लिए भुवनेश्वर रसिक सलाम और कुणाल पांड्या ने 2-2 विकेट लिए। हालांकि अभी गुजरात टाइटन्स के पास मौका है। वे एलिमिनेटर मुकाबले की विजेता टीम से 29 मई को क्वालिफायर 2 में भिड़ेगी। फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। गुजरात की बल्लेबाजी तो खराब रही ही, उसका क्षेत्र रक्षण भी आशा के अनुरूप नहीं रहा। रजत पाटीदार का 21 रन पर कैच छोड़ना उसे काफी महंगा पड़ा। बाद में गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल ने भी यह माना कि क्षेत्र रक्षण उम्मीद के मुताबिक नहीं था।
1: I mean, not really. I think we were going pretty well up until the 12th, 13th over, you know, and I don't think our fielding was at par, dropping a couple of catches, and then our ground fielding was not up to the mark. One of those games that we'd like to forget and start over in Mohali. It's definitely something that we, you know, we do address in the team meetings and also in the practice sessions. But like I said, I don't think it was a day, you know, the intensity was right there, but, you know, under pressure situations, we were not up to the mark. It's all about getting a good start, you know. If you get a good power play and on a ground like this, you know, we know the ball travels and the outfield is also very quick. So, if you would have gotten off to a good start in the power play, you know, any target with the kind of way the wicket was playing and the kind of ground that we were playing at, it could have been chaseable.
0: RCB ki gendbaaz Bhuvneshwar Kumar ne apni pratikriya mein kaha.
2: Yes, I think a lot of credit goes to the planning we do, you know, behind the scene, and of course execution is there, but I think credit goes to the way we plan. It's kind of cliche to say that we plan and everything is execution, but I think if you plan well, there's a good chance of that you can execute things well. It's everyone's. I mean, yes, the experience we bought, me and Hoffitz, is one thing, but yes, when it comes to support staff, the small things they bring in, it you might avoid that, but if an experienced player like me and Hoffitz adapts that and, you know, apply that, it works for us, and I think we are doing that from the first match and it's helping us a lot. I think I can say we are data informed. If there is something new players are doing, we definitely look into that and try to adapt that, but not 100% depends on data, but yes, sir. It helps.
0: जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि हमने अपनी जो रणनीति बनाई थी उसके मुताबिक गेंदबाजी की और उसका अच्छा नतीजा देखने को आया। बात न्यू चंडीगढ़ में आज होने वाले एलिमिनेटर मुकाबले की करें तो सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की टीमें आमने सामने होंगी। राजस्थान को 18 साल से जबकि हैदराबाद को 10 साल से

दूसरे खिताब का इंतजार है। हैदराबाद की टीम को राजस्थान रॉयल्स के 15 साल के करिश्माई ओपनर वैभव सूर्यवंशी से जरूर सतर्क रहना होगा। वैभव का आईपीएल 19 में 232.27 का स्ट्राइक रेट रहा है। वह इस सत्र में अब तक 53 छक्के लगा चुके हैं 14 मैचों में, और जो क्रिस गेल का हाईएस्ट रिकॉर्ड है एक सत्र में 59 छक्कों का, उसको उस पर उनकी निगाह है। देखना है कि वो इस मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करते हैं और अपने छक्कों की जो फहरिस्त है उसको कितना और बढ़ाते हैं। मेरा लीग चरण में हैदराबाद ने राजस्थान को दोनों बार हराया था। हैदराबाद ने नियमित कप्तान जो पैट कमिंस हैं उनके फिट होने के बाद एक अच्छा प्रदर्शन किया है। अंतिम 7 मैचों में से 5 में जीत हासिल की है। दोनों टीमों ने अभी तक 23 मैच खेले हैं जिसमें 14 हैदराबाद ने जबकि 9 मैच राजस्थान ने जीते हैं। तो ये तो बात हुई आईपीएल की।

0: जी हाँ, पूर्व ओलंपियन और वरिष्ठ खेल प्रशासक रणधीर सिंह का निधन अत्यंत दुखद खबर है। उन्होंने खिलाड़ी के तौर पर देश का गौरव बढ़ाया और प्रशासक के तौर पर भारतीय खेलों को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक भावपूर्ण रिपोर्ट। भारत की पूर्व निशानेबाज और वरिष्ठ खेल प्रशासक रणधीर सिंह का आज 79 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 5 बार ओलंपिक में हिस्सा लिया। वह 1978 बैंकॉक एशियाई खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक दिलाने वाले पहले भारतीय रहे। खेल प्रशासक के रूप में 25 साल तक भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव पद पर आसीन रहे। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हासिल करने में उनका योगदान रहा। वे 2001 से 2014 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी रहे। सितंबर 2024 में एशियाई ओलंपिक परिषद के निर्वाचित अध्यक्ष बने। ऐसा गौरव हासिल करने वाले वह पहले भारतीय रहे। अर्जुन अवार्डी राजा रणधीर सिंह खेलों की दुनिया में एक बड़ी विरासत छोड़कर गए हैं। भारतीय खेलों के प्रति उनका योगदान हमेशा याद किया जाता रहेगा। उनको हमारी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। वरिष्ठ प्रसारण कर्मी महेंद्र सिंह लालस जी रणधीर सिंह के भारतीय खेलों में योगदान को लेकर कहते हैं,
1: राजा रणधीर सिंह जी जो है, आप जानते ही हैं कि उन्होंने खेलों की बहुत सेवा की है। और ख़ास तौर पर अगर खेल प्रशासक की बात करें तो आज़ादी के बाद भारत के वो सबसे बड़े अगर खेल प्रशासक रहे, ये अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एशियाई ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे, लिहाजा बहुत सारे महत्वपूर्ण एशियाई खेलों में के आयोजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और ख़ास बात यह कि वो प्रसारण से भी जुड़े रहते थे और आकाशवाणी को लेकर उनके मन में बहुत प्रेम और सम्मान था। और जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में उनसे मिलते थे तो उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं व्यस्त हूँ या बाद में बात कीजिएगा। आकाशवाणी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे और फ़ोन पर भी बहुत बार जब ज़रूरत होती तो उनसे बात करते थे। और दूरभाष पे भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं व्यस्त हूँ या मेरे पास समय नहीं है। तो बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों से पहले, खेलों के दौरान और उसके बाद उनसे बात होती रही निरंतर। और वही उनका सम्मान रेडियो के लिए ख़ास तौर पर रहा। बहुत अच्छे इंसान थे, शाही परिवार से थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में वो बिल्कुल भी घमंड या दर्प नहीं दिखता था। और खिलाड़ियों के प्रति भी बहुत प्रेम सम्मान रखते थे और ख़ास तौर पर पॉजिटिव थे। जब आप उनसे किसी भी खेल के दौरान बात करते थे तो हमेशा यही कहते थे कि भाई हम अच्छा करेंगे, हमारे ये एथलीट अच्छा है, इस एथलीट से हमारी उम्मीद है। गलती से किसी का परफॉर्मेंस अगर बेकार भी रहा है तो उन्होंने कभी भी उस खिलाड़ी को जाकर ये नहीं कहा कि तुमने अच्छा नहीं खेला या तुम में ये कमी थी। उसको हमेशा प्रोत्साहित करते थे। बहुत विनम्र, अच्छे इंसान, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान। उन्होंने भारतीय खेलों की बहुत सेवा की। और देखिए, इतने बड़े खेल प्रशासक थे और इतने अच्छे और इतने बड़े इंसान थे कि उनका जो उनके जाने से जो वैक्यूम बनेगा वो सच में इतनी आसानी से पूरा हो ये संभव नहीं है। उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
0: वरिष्ठ पत्रकार राकेश राव ने रणधीर सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा,
2: जी रणधीर सिंह जी के बारे में हम उनको अलग अलग रूप में हमने उनको देखा। पहले तो ऑफकोर्स बहुत उच्च कोटि के जो यू नो लाइक स्पोर्ट्समैन रहे, लेकिन उनकी मुझे एक चीज जो अच्छी लगी कि जब वो शूटिंग करते भी थे, काफी उम्र तक उन्होंने शूटिंग की, मेडल भी जीता, मुझे फोर्स है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। तो सोचिए 60 साल से ज्यादा मतलब हो गए हैं उस बात को, उनके पहले ओलंपिक के बाद आज 60 साल बहुत कंसिस्टेंट रहे। जो उनके पास मैन मैनेजमेंट का जो स्किल था, हालांकि रॉयल फैमिली से आते थे, लोग उनको राजा के नाम से भी जानते रहे, उनके नाम के आगे एक राजा ऐड हो जाता था। जितना उनको मैंने देखा, मैंने उनको 1985-86 से देख रहा हूँ मैं उनको रेगुलरली। अभी पिछले कुछ सालों से उनकी जो हेल्थ थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन इस दौरान कम से कम मेरा उनसे कोई 30-35 साल से जो भी मेरा उनसे मिलना जुलना हुआ और अलग अलग पतियों में हमारी मुलाकात हुई है। मैं जो पहली बार सिडनी ओलंपिक, जो मेरा पहला ओलंपिक था 2000 का सिडनी ओलंपिक, आज से 26 साल पहले, मेरा एक एक्रेडिटेशन का इशू हो गया था, थोड़ा लेट हो गया था मेरा, लेकिन उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया। उन्होंने सिडनी आईओए ऑफिस में, उस टाइम वो सेक्रेटरी जनरल हुआ करते थे, मतलब एक यंग जर्नलिस्ट के लिए उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने कहा आप चिंता मत करो। और वो दिनों में फैक्स होता था, और मुझे आईओए से फोन आता था कि आप चिंता न करें, अब आपका काम हो जाएगा। और हुआ कि रॉयल फैमिली के होते हुए, इतने सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन होते हुए, इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए, और हर लेवल पे, इंडिया पे लेवल पे देख लीजिए, एशिया लेवल पे देख लीजिए, वर्ल्ड लेवल पे देख लीजिए, आईओसी के स्पेशल यू नो लाइक मेंबर्स, ये रियल लॉस कहते हैं ना कि साहब उनके जाने से बड़ी क्षति हो गई। मेरे लिए ये रियल एक एडमिनिस्ट्रेटर का और एक स्पोर्ट्समैन का जाना और सब कुछ मिला के ये सचमुच की एक क्षति है। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, हम लोग महसूस कर सकते हैं इस बात को।
0: जी हाँ, उनका रणधीर सिंह का जाना भारतीय खेलों के लिए एक अपूर्ण क्षति है, लेकिन वो साथ ही एक बड़ी प्रेरणा भी हैं भावी पीढ़ी के लिए। और ये खेल, ये वर्ष जो है एशियाई खेलों का है, और एशियाई खेलों में पहला निशानेबाजी में गोल्ड उन्होंने ही दिलाया था। अब बात आर्चरी की करते हैं, तो एशियाई खेलों के लिए तैयारियां चल रही हैं और हमारे तीरंदाज भी अपना लक्ष्य साधे हुए हैं। तो पेश है दर्पण टिकिया की ये खास रिपोर्ट, जिसमें एशियाई तैयारियों पर, एशियाई खेलों की जो तैयारियां चल रही हैं उन पर उन्होंने खास बातचीत की है, खास रिपोर्ट की है। तो पेश है दर्पण टिकिया की ये खास रिपोर्ट।
3: जिंदगी हर किसी को एक सपना देती है, फिर इंसान उस सपने को अपना लक्ष्य, अपना निशाना बना लेता है। लेकिन लक्ष्य सिर्फ चाहने भर से हासिल नहीं होते, उन तक पहुंचने के लिए गुजरना पड़ता है तैयारी की आग से, वो तैयारी जो वक्त से पहले जगा देती है, थकान से आगे धकेल देती है और हर रोज खुद से एक नई लड़ाई लड़वाती है। क्योंकि बड़े मौकों पर चमक वही पाते हैं जिन्होंने खामोशी में अपने हुनर को रोज तराशा हो। भारत के तीरंदाजों ने इस बात को साबित किया है। क्रिकेट या हॉकी की तरह आर्चरी के खेल में मैदान भले ही दर्शकों की तालियों से गड़गड़ाते ना हो, देश विदेश में भारत के लिए मेडल लाने वाले हमारे आर्चर्स भले ही सोशल मीडिया सुपरस्टार ना हो, लेकिन उनके समर्पण, उनके परिश्रम और उनके जज्बे में कोई कमी नहीं। शायद इसीलिए लगातार भारत की मिट्टी से जुड़े तीरंदाजी के खेल के इस आधुनिक स्वरूप आर्चरी में हम लगातार बेहतरी और तरक्की देख रहे हैं, जिसके चलते लगातार खेल प्रशंसकों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। इस साल सितंबर अक्टूबर में जापान के नागोया में होने वाले एशियन गेम्स में एक बार फिर भारत के कंपाउंड आर्चर से पदक लाने की भारी भरकम अपेक्षाएं हैं। 2023 में, लेकिन 2023 में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली ज्योति सुरेखा वेनम इन उम्मीदों का बोझ ढोना जानती है।
4: I would like to say that I'm really happy that I got to be a part of the 2026 Asian Games team. I am really excited and looking forward to it to see what's in store for me. I think expectation sabhi ko hota hai jab hum koi tournament mein jate hai, even for ourselves ki hum ye soch ke jate hai ki hum acha perform karenge. Obviously medal prospect uska aim leke hi jayenge ki kuch bhi ho, like we have to win a medal there. As you already know that a new team has been selected, this would be the first time that we'd be competing as a team. So I'm really looking forward to it and I'm really hopeful that we'll be doing great there too.
3: जी हाँ, टीम नहीं है, इसी साल आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 में ज्योति ने भारत के लिए वुमेन्स कंपाउंड टीम में स्वर्ण पदक जीता था। तब उनका साथ निभा रही थी प्रगति और मधुरा धमांगांवकर, लेकिन आने वाले एशियन गेम्स और उससे पहले होने वाले वर्ल्ड कप स्टेज 3 और 4 में टीम अलग है। इस बार ज्योति का साथ देंगी चिकिता तानिपार्थी, प्रतिका प्रदीप और 2023 में एशियन गेम्स में ज्योति के साथ खेल चुकी परनीत कौर। टीम अलग इसलिए है क्योंकि इन बड़े टूर्नामेंट से पहले एक कड़े सिलेक्शन ट्रायल से इन तीरंदाजों को गुजरना पड़ता है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने सिर्फ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पहुंचे।
4: आई वुड लाइक टू से दैट दो वी हैव यंग आर्चर्स इन आवर टीम, दे आर हाईली केपेबल बिकॉज़ दैट इज द रीजन दे आर सिलेक्टेड फॉर द इंडियन टीम, राइट? एंड थ्रू आफ्टर रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस दे गॉट सिलेक्टेड। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव मेड इनटू द सीनियर टीम, दे हैव बीन अ पार्ट ऑफ द सीनियर टीम बिफोर एज वेल, लाइक लास्ट ईयर for the World Cups or the World Championship or the Asian Championship. But it's just that we couldn't get to participate as a team, compete as a team, and this will be our first time. So before the games, we have World Cup Stage 3 and Stage 4 lined up. So we can prepare ourselves. We can see, we can plan on things where if we are lacking on anything, we can improve those things and go ahead as a team.
3: ऐसा ही कुछ रिकर्व मेंस टीम में भी देखने को मिला है, जहां इस बार धीरज बोमादेवारा के साथ तरुणदीप रॉय का अनुभव नहीं होने वाला है। एशियन गेम्स और उससे पहले वर्ल्ड कप स्टेज 3 और 4 में धीरज का साथ निभाएंगे यशदीप भोगे और नीरज चौहान। आपसी तालमेल बिठाने के लिए ये टीम इस वक्त भारतीय खेल प्राधिकरण के सोनीपत कैंप में तैयारी कर रही है। और बताते हुए धीरज बोमादेवारा,
5: मेन सीनियर प्लेयर्स जो थे तरुणदीप राय भैया हो, अतनु भैया हो, वो लोग आउट हो गए एंड ये हमारे लिए एक नया टीम है। ये कैंप के कारण हमको थोड़ा टाइम मिला है टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, आने वाले वर्ल्ड कप्स में एक दूसरे का साथ देने के लिए। वी कैन ब्रिंग अवर बेस्ट आउटकम यूजिंग दिस टाइम, क्योंकि उधर दो टीम्स के बीच में मैच हो रहा है, सेम प्रेशर रहता है, सेम कंडीशंस रहता है, बट जीतता वो है जो प्रिपरेशन अच्छे से करके आए हो एंड वी आर फोकसिंग ऑन दैट। बाकी टीममेट्स नए हैं, मेरा ये भी काम रहेगा कि उन पे उतना प्रेशर ना लगाए एंड वो लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे।
3: सिर्फ नए टीममेट्स ही नहीं, ज्योति के लिए तो इक्विपमेंट भी नया होने वाला है। वो बताती हैं कि जिन तीरों का इस्तेमाल कर उन्होंने देश विदेश में भारत के लिए पदक जीते हैं, उनकी प्रोडक्शन बंद हो जाने की वजह से उनको अपनी खेल सामग्री में बदलाव करना पड़ा है, जो अपने आप में एक चुनौती है।
4: जो मैं एरोज यूज करती थी, प्रोटूर एरोज, वो अभी बंद हो गए प्रोडक्शन एंड वी नीडेड टू स्विच टू एक्सटेंस। फ्रॉम 2017 से मैं वही एरोज शूट कर रही थी एंड तो इजी था प्रिपेयर करना, क्योंकि मुझे पता है कि एक्चुअली करना क्या है, कितना कट करना है, कैसे प्रिपेयर करना है एंड ऑल। अभी क्योंकि वो अभी बंद हो गए प्रोडक्शन, मुझे एक्सटेंस में एक्सपेरिमेंट करना है कि मुझे कौन सा एरो सूट करता है, उसमें भी कौन सा लेंथ मुझे सूट करेगा।
3: हालांकि इसके लिए भारतीय तीरंदाजों को आधुनिक टेक्नोलॉजी का सहारा दिया गया है, जिसके बारे में समझाते हुए धीरज।
5: बेसिकली सर, ये मतलब ये टेक्नोलॉजी बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुद आर्चर्स को ही समझाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था हम लोग को समझने में, बट मैं सिंपली आपको बताऊं तो हमारा एरोस जो आता है वो एक दर्जन आता है, मतलब दर्जन वाइज हम लोग खरीदते रहते हैं। 12 तीर में भी हम लोग को चला चला के सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा तीर अच्छा है, तो उसके लिए मिनिमम एक हफ्ता लगता था। एंड वर्ल्ड में टॉप आर्चर्स कभी भी सिर्फ एक दर्जन को चेक नहीं करते, दो तीन दर्जन में से बेस्ट एरोस निकाल के हम लोग चलाते हैं। तो टेक्नोलॉजी ऐसे था कि वो मशीन में सारा एरोस रख के ना वो सेलेक्ट कर देता था। टाइम्स जो हमको लगता था एक हफ्ता, वो एक दो दिन में हम लोग चेक कर सकते।
3: तो एक तरफ जहां खिलाड़ी जुटे हुए हैं परिश्रम करने, तो वहीं दूसरी तरफ आधुनिक टेक्नोलॉजी और सभी तरह की सुख सुविधाएं उनको प्रदान की जा रही है, इस कोशिश में कि हमारी तैयारियों में कोई कमी ना रहे। आर्चरी विश्व कप का स्टेज 3 जून में तुर्की में, तो स्टेज 4 जुलाई में स्पेन में खेले जाएगा, जिसके बाद बड़ी चुनौती सितंबर अक्टूबर में जापान में होने वाले एशियन गेम्स में होगी। आपको याद दिला दे, पिछली बार रिकर्व और कंपाउंड मिलाकर भारतीय आर्चर्स ने 5 स्वर्ण के साथ कुल 9 पदक जीते थे। इस बार भी वो अपना निशाना यश, गौरव और कामयाबी को बनाएंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण का शुक्रिया, जिनके सौजन्य से धीरज और ज्योति से ये बातचीत संभव हो पाई। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ आकाशवाणी के लिए दर्पण की रिपोर्ट।

तो ये तो बात हो रही थी तीरंदाजी की, और अब बात करते हैं सिंगापुर ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट की, जहां भारतीय शटल नई उड़ान, उनकी शटल नई उड़ान पर है। भारतीय स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु और सात्विक चिराग की जोड़ी जो है वो आगे बढ़ चुकी है, और आज जो मुकाबले खेले गए हैं पुरुष एकल की अगर बात करें तो एच एस प्रणय ने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को 10-21, 21-12, 21-18 से पराजित कर दिया है। हालांकि किदांबी श्रीकांत को सिंगापुर के लोहकिन के हाथों 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। और महिला एकल की अगर बात करें तो मालविका बंसोड़ को ताइपे की एच टी लिन के खिलाफ 21-11, 19-21, 12-21 से हार का सामना करना पड़ा।

0: तो क्यों ना प्रतीक, अब बात
1: चेस की कर लेते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इस समय बुद्धि का महासंग्राम चल रहा है, जहां शतरंज के धुरंधर अपना लोहा मनवा रहे हैं। 25 मई से शुरू हुए नॉर्वे चेस 2026 टूर्नामेंट में कल देर शाम दूसरे चरण के मुकाबले खेले गए, जहां भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन साधारण रहा। पुरुषों में बात करें तो दूसरे चरण के मुकाबले में भारत के आर प्रज्ञानंदा फ्रांस के अली रेजा फिरोजा से क्लासिकल गेम में बाजी हार गए। वहीं मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन भारत के डी गुकेश को भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वेस्ली सो से आर्मेगेडन राउंड में हार का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं महिला मुकाबलों की, जहां दूसरे चरण में भारत की दोनों महिला खिलाड़ियों का एक दूसरे से सामना हुआ। भारत की दिव्या देशमुख ने अपनी हमवतन कुनेरू हम्पी को आर्मेगेडन राउंड में हराया। श्रोताओं, आज तीसरे चरण के मुकाबले खेले जाएंगे। तीसरे चरण में मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन भारत के डी गुकेश का सामना फ्रांस के अली रेजा फिरोजा से होगा। वहीं भारत के आर प्रज्ञानंदा अपनी दावेदारी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन के आगे पेश करेंगे। बात करें महिला मुकाबलों की तो भारत की कुनेरू हम्पी का सामना यूक्रेन की एना मुजिचुक से होगा। साथ ही भारत की दिव्या देशमुख अपनी दावेदारी कजाकिस्तान की बिबिसारा असोबायेवा के आगे पेश करेंगी। अंक तालिका की बात करें तो पुरुषों में लगातार दो क्लासिकल गेम जीतकर फ्रांस के अली रेजा फिरोजा 6 अंकों के साथ पहले स्थान पर हैं। वहीं भारत के डी गुकेश 2.5 अंकों के साथ तीसरे और उनके हमवतन आर प्रज्ञानंदा 1.5 अंकों के साथ छठे स्थान पर हैं।
0: जी, बात एथलेटिक्स की, एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कल से 31 मई तक हांगकांग में होगा। भारत के प्रतिभाशाली लॉन्ग जंपर शाहनवाज खान को 48 सदस्यीय राष्ट्रीय ट्रैक एंड फील्ड टीम में शामिल किया गया है। टीम का चयन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने घरेलू प्रतियोगिताओं में एथलीटों के शानदार प्रदर्शन के आधार पर किया है। शाहनवाज खान ने हाल ही में 24वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप में 8.23 मीटर का शानदार प्रदर्शन किया था, जो नेशनल अंडर 20 में लॉन्ग जंप का कीर्तिमान है। मोहम्मद अशफाक 400 मीटर और रिले, नितिन गुप्ता 5000 मीटर रेसवॉक और पूजा हाई जंप इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता के लिए नेशनल टीम में शामिल अन्य प्रमुख एथलीट हैं। प्रत्येक बात फ्रेंच ओपन की करें, जो कि पेरिस में रोल वगैरह में चल रहा है।
1: हाँ जी, फ्रांस के शहर पेरिस में इस समय टेनिस की जगत का बेहद प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन चल रहा है। इस साल फ्रेंच ओपन में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष युगल स्पर्धा में शानदार शुरुआत की है। भारत के यूकी भांबरी और उनके न्यूजीलैंड के जोड़ीदार माइकल वीनस ने पुरुष युगल के पहले दौर में अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरुंडुलो और मारियानो कैस्टलबॉम को सीधे सेटों में हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। वहीं भारत के श्रीराम बालाजी ने अपनी ब्राजीलियाई जोड़ीदार मार्सेलो डोमिनोलिनर के साथ नीदरलैंड्स के रॉबिन हास और जर्मनी के कॉन्स्टेंटिन फ्रेंडसन की जोड़ी को कड़े मुकाबले में शिकस्त दी।
0: बिल्कुल, म्यूनिक में चल रहे निशानेबाजी राइफल और पिस्टल के विश्व कप की बात करें तो 25 मीटर पिस्टल महिला वर्ग में भारत की ईशा सिंह क्वालिफाई करने में सफल रही। उन्होंने प्रिसीजन में 293 और रैपिड में 294 का स्कोर किया। भारत की मनु बाकर 12वें स्थान पर पिछड़ गई, प्रिसीजन में बेहतर नहीं कर पाई थी और 288 का स्कोर किया था। हालांकि रैपिड में उन्होंने भरपाई करते हुए 294 का स्कोर किया, लेकिन क्वालिफाई करने में सफल नहीं हो सकी। राही सरनोबत प्रिसीजन में 287 और रैपिड में 294 के साथ 14वें स्थान पर रही। प्रिसीजन दौर कल खत्म हो गया था, आज रैपिड दौर हुआ था। 10 मीटर एयर राइफल में भारत के 18 साल के पार्थ राकेश माने ने फाइनल में 145.8 अंक बनाए, लेकिन वे 7वें स्थान पर रहे। 4 बार के विश्व कप पदक विजेता क्वालिफिकेशन अर्जुन बबोटा 63वें, रुद्राक्ष पाटिल 30वें स्थान पर रहे, साहू तुषार 25वां स्थान मिला। 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन की बात करें तो आशा चोकसी 12वें स्थान पर रही और निपुर 14वें स्थान पर रही। बात कुश्ती की करें तो वियतनाम में अंडर 23 कुश्ती प्रतियोगिता चल रही है, एशियाई प्रतियोगिता है और एशियन कुश्ती में भारत का दबदबा जारी है। अंडर 23 फ्री स्टाइल में 57 बार वर्ग में भारत के अक्षय ने स्वर्ण, 61 बार वर्ग में दीपक ने रजत, 65 में मोहित ने स्वर्ण, 74 में दीपक ने कांस्य, 79 बार वर्ग में चंद्रमोहन ने गोल्ड, 86 बार वर्ग में सचिन मोर ने कांस्य, 92 बार वर्ग में पुनीत ने रजत, 97 में विक्की ने गोल्ड और 125 वर्ग में लकी ने रजत पदक दिलाया। तो शानदार प्रदर्शन है। फ्री स्टाइल में भारत ने 9 पदक लिए हैं, महिला फ्री स्टाइल में 10 पदक मिले थे, ग्रीको रोमन में 5 पदक, तो यानी 24 पदक हो चुके हैं। कल से अंडर 17 के मुकाबले खेले जाएंगे। अब प्रत्येक भारतीय महिला हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है और कल पहला मुकाबला हुआ था और ये उनकी एक तैयारियों का हिस्सा है। अभी उन्होंने प्रो लीग में भी क्वालिफाई करने का एक लक्ष्य है और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के साथ 4 मैचों की सीरीज होनी है। कल जो मुकाबला हुआ था उसके बारे में क्या बताएंगे?
1: जी हाँ, कल शाम ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में स्थित पर्थ हॉकी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहला मैत्रीपूर्ण मुकाबला, जहां ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 2-1 से हरा दिया। भारत की शुरुआत मजबूत रही। मैच के पहले क्वार्टर में भारतीय टीम ने आक्रामक खेल दिखाया। भारत की स्टार फॉरवर्ड नवनीत कौर ने 13वें मिनट में एक बेहतरीन पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। हाफ टाइम पर भारतीय डिफेंस ने ऑस्ट्रेलियाई फॉरवर्ड्स को रोके रखा। इसके बाद दूसरे हाफ में घरेलू मैदान पर खेल रही हॉकी रूस के नाम से प्रचलित ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जोरदार वापसी की। ऑस्ट्रेलिया की एबी विल्सन ने मैच का पासा पलट दिया। उन्होंने तीसरे क्वार्टर के 36वें मिनट और चौथे क्वार्टर के 53वें मिनट में पेनल्टी कॉरियर के जरिए शानदार गोल दागकर अपनी टीम को 2-1 से जीत दिलाई। आज इस श्रृंखला का दूसरा मैच खेला जाएगा।
0: जी हाँ बिल्कुल, जिसके बारे में जैसे ही हमें अपडेट मिलेगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। पैरल हॉकी की बात को जारी करें और बात पुरुष हॉकी का करें तो कप्तान और शानदार ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह को अगले महीने होने वाली FIH प्रो लीग के यूरोपीय चरण के लिए 24 सदस्यीय भारतीय पुरुष हॉकी टीम की कप्तानी करने के लिए फिर से कमान सौंपी गई है और उनकी टीम में वापसी हुई है। FIH प्रो लीग जो है अगस्त में होने वाले विश्व कप से पहले तैयारियों के लिए एक अहम टूर्नामेंट है। हरमनप्रीत ने निजी कारणों से फरवरी में प्रो लीग का होबर्ट चरण नहीं खेला था। भारतीय टीम 7 से 9 जून तक ट्रेनिंग और एक मैत्री मैच के लिए ब्रसल्स जाएगी। और बात अगर टीम की करें, इसके बाद भारतीय टीम लंदन भी जाएगी जहां 23 से 28 जून तक प्रो लीग में उसका मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड से होगा। बिल्कुल,
1: आइए अब चर्चा करते हैं फुटबॉल पर। लंदन में चल रही यूनिटी कप 2026 फुटबॉल टूर्नामेंट में कल देर शाम खेले गए पहले सेमीफाइनल में नाइजीरिया ने जिम्बाब्वे को 2-0 से शिकस्त दी। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत और जमैका के बीच होगा, जो कि चार्ल्टन FC के घरेलू मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम के लिए यह दौरा बेहद ऐतिहासिक है। 24 साल बाद यानी साल 2002 के बाद पहली बार भारतीय पुरुष सीनियर राष्ट्रीय टीम ब्रिटिश धरती पर कोई प्रतिस्पर्धी मैच खेलेगी। मुख्य कोच खालिद जमील और गोलकीपर कप्तान गुरप्रीत सिंह संधू की अगुवाई में 22 सदस्यों का स्क्वाड ब्रिटेन गया है।
0: बिल्कुल, और प्रतीक बात अब IPL के उसकी राजस्थान और हैदराबाद के मुकाबले की करते हैं तो ये मुकाबला 7:30 बजे शुरू होगा और निश्चित रूप से ये या दोनों टीमें कोशिश करेंगी कि वो जीतें और एलिमिनेटर मुकाबले में गुजरात का सामना करें। बहरहाल घड़ी की सुइयां हमें ज्यादा अनुमति प्रदान नहीं कर रही हैं तो प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मुझे यानी नवीन कुमार शर्मा और मेरे साथी प्रतीक आनंद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी को स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम दो भारतीय भाषाओं सहित तीन भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में आज और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने का दर्द में बदल गया है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हिंदी वार्ता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, अभिव्यक्ति, संघर्ष और उत्कर्ष की अविरल यात्रा। वार्ताकार हैं कन्हैया झा, वरिष्ठ पत्रकार।
1: श्रोताओं, इस बार का हमारा विषय है हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, अभिव्यक्ति, संघर्ष और उत्कर्ष की अविरल यात्रा। दरअसल हिंदी पत्रकारिता अपने गौरवमयी 200 वर्षों की यात्रा पूरी करने जा रही है। 30 मई 1826 को कलकत्ता से जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड अखबार के रूप में पहला बीज बोया था, तब किसी ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि यह नन्हा पौधा एक दिन विशाल वटवृक्ष बन जाएगा। उदंत मार्तंड का अर्थ होता है उगता हुआ सूर्य। आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह यात्रा केवल कागज और स्याही की नहीं बल्कि भारत के पुनर्जागरण, स्वतंत्रता संग्राम और आधुनिकता की कहानी प्रतीत होती है। दरअसल हिंदी पत्रकारिता का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी बल्कि उस पर औपनिवेशिक पहरा था। यही कारण रहा कि सरकारी संरक्षण नहीं मिल पाने और डाक दरों के बोझ के कारण उदंत मार्तंड को महज 1.5 साल में ही बंद कर देना पड़ा। लेकिन इस अखबार ने भारत के लोगों के हित के लिए जो संकल्प लिया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए मंत्र बन गया। कुछ ही वर्षों बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे साहित्य से जोड़कर जन आंदोलन बना दिया। उनके समाचार पत्र कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन ने समाज में व्याप्त तमाम कुरीतियों पर प्रहार किए। वह दौर पत्रकारिता के मिशनरी स्वरूप का था जहां पत्रकार का अर्थ एक प्रकार से देश का सिपाही होना था। 20वीं सदी के शुरुआती 5 दशक हिंदी पत्रकारिता के स्वर्ण युग के साक्षी रहे। यह वह समय था जब पत्रकारिता और आजादी का आंदोलन एक दूसरे के पूरक बन गए थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने समाचार पत्र सरस्वती के माध्यम से हिंदी खड़ी बोली को एक नई पहचान दिलाई जिससे पत्रकारिता की भाषा बहुत समृद्ध हुई। वहीं दूसरी ओर गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने अखबार प्रताप के माध्यम से गुलाम भारत में लोगों के बीच क्रांतिकारी चेतना जगाई। उनकी शहादत आज भी पत्रकारिता के लिए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। माखनलाल चतुर्वेदी के कर्मवीर, शिव प्रसाद गुप्त के आज और महात्मा गांधी के नवजीवन जैसे अखबारों ने देश के कोने कोने में स्वराज की अलख जगाई। उस दौर के पत्रकार लाठी और जेल से नहीं डरते थे। उनके लिए कलम एक हथियार थी जिसे वे सत्ता के खिलाफ बेखौफ चलाते थे। वर्ष 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। इसके बाद से पत्रकारिता का स्वरूप भी बदला। अब चुनौती एक बिखरे हुए देश को जोड़ने और विकास की मुख्य धारा से जनता को जोड़ने की थी। 1960 और 70 के दशक में अज्ञेय, रघुवीर सहाय और धर्मवीर भारती जैसे दिग्गजों ने हिंदी पत्रकारिता को वैश्विक दृष्टि दी। इसी दौर में दिनमान और धर्मयुग जैसी पत्रिकाओं ने राजनीति, कला और संस्कृति पर गंभीर विमर्श शुरू किया। 1980 के दशक में प्रभास जोशी ने जनसत्ता के माध्यम से बोलचाल की भाषा में पत्रकारिता करके इसे एलिट क्लास के कमरों से निकालकर आम आदमी की चौपाल तक पहुंचा दिया। हालांकि 1975 का आपातकाल हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय रहा। सेंसरशिप के बावजूद कई पत्रकारों ने सत्य को सामने लाने का साहस दिखाया जिससे पत्रकारिता की विश्वसनीयता और मजबूत हुई। 1990 के बाद उदारीकरण ने मीडिया को एक उद्योग में बदल दिया। रंगीन अखबार, केबल टीवी और फिर 24 घंटे चलने वाले टीवी समाचार चैनलों के आने से सूचनाओं की बाढ़ आ गई। देखते ही देखते हिंदी समाचार चैनलों की टीआरपी ने अंग्रेजी के वर्चस्व को चुनौती दी और उसे पछाड़ दिया। इससे अखबारों के सामने एक नया संकट भी पैदा हुआ। लेकिन हिंदी पत्रकारिता का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, लिहाजा इसने क्षेत्रीय स्तर पर अपना विस्तार किया। राष्ट्रीय समाचार पत्रों के क्षेत्रीय संस्करणों ने ग्रामीण भारत में हिंदी पत्रकारिता की पैठ बहुत मजबूत की। स्थानीय समाचार पत्रों के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में एक नया रुझान सामने आया, जिसे अखबारों ने समझा और प्रत्येक गांव तक पहुंचने में वह सक्षम हुआ। अब डिजिटल युग में हिंदी पत्रकारिता ने तेजी से बदलाव को अपनाया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रसार ने खबरों की पहुंच को व्यापक बना दिया है। अब समाचार केवल अखबारों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच चुके हैं। यह सही है कि डिजिटल युग ने हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाइयां दी हैं। पहले जहां समाचार केवल अखबारों और टीवी तक सीमित थे, वहीं आज स्मार्टफोन और इंटरनेट के माध्यम से हर व्यक्ति तक तुरंत पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, सोशल मीडिया और स्मार्टफोन ऐप्स ने खबरों को तेज, सुलभ और व्यापक बना दिया है। अब गांव-गांव तक हिंदी में समाचार आसानी से पहुंच रहे हैं, जिससे आम आदमी की भागीदारी बढ़ी है। परंतु इस डिजिटल विस्तार के साथ कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। फेक न्यूज, अफवाहें और बिना सत्यापन के खबरें तेजी से फैलती हैं, जो समाज में भ्रम और अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। कई बार टीआरपी और क्लिक बटोरने के चक्कर में खबरों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। ऐसे समय में हिंदी पत्रकारिता की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आज 2026 में हम एक बिल्कुल अलग धरातल पर खड़े हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब समाचार लिख रहा है और सोशल मीडिया के दौर में हर नागरिक एक प्रकार से पत्रकार बन चुका है। स्मार्टफोन आज का सबसे बड़ा मीडिया है, लेकिन इस तकनीकी छलांग के साथ कुछ गंभीर संकट भी सामने आए हैं। इनमें सबसे बड़ा संकट है फेक न्यूज। दरअसल सूचना की गति बढ़ने से तथ्यों की जांच यानी फैक्ट चेक का मामला कमजोर हुआ है। वहीं दूसरी ओर टीआरपी और व्यूज की होड़ ने पत्रकारिता की गंभीरता को प्रभावित किया है। विज्ञापन और समाचार के बीच की रेखा धुंधली हुई है। हिंदी पत्रकारिता ने इन दो शताब्दियों में भाषा को बचाया, लोकतंत्र को संभाला और समाज को आईना दिखाया। आज हिंदी पाठक संख्या के मामले में विश्व की अग्रणी भाषाओं में से एक है। डिजिटल पोर्टल्स और स्वतंत्र यूट्यूब पत्रकारिता ने मुख्यधारा मीडिया के एकाधिकार को चुनौती दी है, जो लोकतंत्र के लिए सुखद संकेत है। कहा जा सकता है कि उदंत मार्तंड से शुरू हुई यह यात्रा आज मेटावर्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुकी है। आने वाले समय में चुनौती तकनीक नहीं, बल्कि वह शाख होगी जिसे हमारे पूर्वज पत्रकारों ने अपने खून पसीने से कमाया था। 200 वर्षों का यह पड़ाव हमें यह याद दिलाता है कि माध्यम चाहे पत्थर हो, कागज हो या फिर पिक्सल, पत्रकारिता का धर्म हमेशा सत्य और लोकहित ही रहना चाहिए। हिंदी पत्रकारिता ने अपने 200 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा पूरी करते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह यात्रा संघर्ष, समर्पण और निरंतर विकास की कहानी है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्षों की यह यात्रा न केवल गौरवपूर्ण है, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणादायक भी है।
0: अभी आप सुन रहे थे वार्ता हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, अभिव्यक्ति, संघर्ष और उत्कर्ष की अविरल यात्रा। वार्ताकार थे कन्हैया झा, वरिष्ठ पत्रकार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष द्विवेदी मनोज।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणार्थं 525,000 करोडरूप्यकाणां केन्द्रीय परिव्ययेन सह सार्थक पीडीएस योजनायाः विस्ताराय स्वीकृतिः प्रदत्ता। सर्वोच्च न्यायालयेन मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणाय निर्वाचनायोगस्य अधिकारः न्यायोचितम् अंगीकृतम्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानम् अवलोक्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षायाः प्रश्नपत्र गोपन भंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अपि च आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आर्थिक प्रकरण मंत्रिमंडल समित्या अद्य 16 वित्तायोगस्य पुरस्कार चक्रावधौ सार्थक पीडीएस इति अम्रेला योजनायाः निरन्तरतायै 30,500,000 करोडरूप्यकाणां केन्द्रीय विनियोगः करिष्यते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना राज्य संस्थाभ्यः राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहनाय साहाय्यं प्रदास्यति। सहैव उचित मूल्यापणानां सुदृढीकरणं करिष्यति तथा च सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणेऽपि सहयोगं करिष्यति।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्यां योजनायां कृत्रिम मेधायाम् आधारिताः निर्मल आशा सक्षमाख्याः त्रयः घटकाः भविष्यन्ति। तेन स्पष्टीकृतं यत् निर्मलिति कृत्रिम मेधा चालितः वास्तविक समय पीडीएस लाभार्थी पञ्जीकरण मञ्चः अस्ति। सहैव आशा इति बहुभाषीय कृत्रिम मेधा आधारिता जनपरिदेवना निवारण प्रणाली तथा च नागरिक संवाद मञ्चः वर्तते। एवं च सक्षमः इति कृत्रिम मेधायुक्तम् आपूर्ति श्रृंखला प्रबन्धन तन्त्रमस्ति। अनेन सहैव आर्थिक प्रकरण मन्त्रिमण्डल समित्या राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहन व्ययस्य तथा उचित मूल्यापण विक्रेतृणां लाभांश सीमायाः पूर्तये केन्द्रीय सहायता नियमेषु संशोधनस्य तथा च पूर्ववत वित्तपोषण प्रारूपस्य निरन्तरतायाः अपि दृढ निर्णयः कृतः। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य भारत निर्वाचनायोगेन प्रदत्त मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणस्य वैधता प्रमाणीकृता। तेनोक्तं यत् एतादृशं विशेष पुनरीक्षणं निष्पक्ष स्वतन्त्र निर्वाचनानां संवैधानिक अनिवार्यतां संवर्धयति। न्यायालयेन प्रतिपादितं यत् जनप्रतिनिधित्व अधिनियमः 50-21-3300 अनुच्छेदस्य नियमानुसारं निर्वाचनायोगस्य पार्श्वे विशेष गहन पुनरीक्षणस्य पूर्णा शक्तिः वर्तते। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य तथा च न्यायाधीशस्य जयमाल्य बागची इत्यनयोः पीठेन एतत् निर्णयवचनं तासां याचिकानां सन्दर्भे प्रख्यापितम्। यासु गतवर्षे जून मासे निर्वाचनायोगेन बिहार राज्ये विशेष गहन पुनरीक्षणार्थं प्रसारिता अधिसूचना समाहूता आसीत्। मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन प्रख्यापिते निर्णयपत्रे स्पष्टीकृतं यत् यदा स्वयमेव विधिः कारणानि अभिलेख्य केनापि प्रकारेण कस्मिन्नपि समये विशेष पुनरीक्षणाय आयोगम् अधिकरोति तदा इयं विशिष्टा प्रक्रिया केवलं तस्मात् कारणात् अवैधतां न प्राप्नोति यदेषा सामान्य पुनरीक्षणस्य पारंपरिक प्रक्रियाणां सर्वथा अनुरूपा नासीत्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानं अवलोक्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिक संजालीय संदेशे श्रीमोदी सर्वान् आद्रीकरणं रक्षितुं गृहात् बहिः गमनावसरे च जलं स्थापितुं परामर्शं प्रदत्तवान्। दैनिक जीवने उष्णताप जनित कष्टानां विषये चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमंत्री अवोचत् यत् एतादृशायां ऋतौ संवेदनशीलता एव महत्तरः आधारः भवति। तेन पिपासितेभ्यः चषक परिमितं जलं प्रदातुं परामर्शो प्रदत्तः। सः सर्वान् स्वपरिजनैः आत्मीयैः च सह निरन्तरं सम्पर्कं स्थापयितुं तेषां कुशलवार्तां प्रष्टुं भूरि जलं पातुं मध्याह्ने प्रचण्डे आतपे बहिर्गमनं वर्जयितुं तथा च यथाशक्यं विश्रामं कर्तुं स्मारितवान्। तेन पशुपक्षिणां कृतेऽपि करुणां प्रदर्श्य गृहात् बहिः अलिन्देषु छदिषु आपणेषु तथा कार्यालयेषु जलपूरितं लघुपात्रं स्थापयितुं निर्देशो विहितः। श्रीमोदिना तेषां प्रयासानां भूरि प्रशंसा कृता ये पिपासित जनकल्याणाय स्वगृहाणाम् आपणानां च बहिः मृत्तिकाघटेषु शीतलं जलं स्थापयन्ति। प्रधानमंत्री सर्वानेतेषु कष्टकर दिनेषु परस्परं करुणा प्रदर्शनार्थं साग्रहं प्रार्थितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रियपात्रता सह प्रवेशपरीक्षा प्रश्नपत्र गोपन भंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अनेन तावत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्मिन् प्रकरणे दिल्ली जयपुर गुरुग्राम नासिक पुणे लातूर अहिल्यानगरेभ्यः एतावता त्रयोदश आरोपिणः निगृहीताः। अस्मिन्नेव क्रमे लातूर वास्तव्यः कश्चन चिकित्सकः डॉ मनोज शिरूरे इत्येषः नीट प्रश्नपत्र भेद प्रकरणे निगडितः। अन्वेषणाभिकरणानुसारं कोचिंग संस्थापकस्य पुत्रेण सह त्रयाणां छात्राणां कृते अभियुक्त पीवी कुलकर्णी इत्यमुना रसायनशास्त्रस्य प्रश्नान् प्रापयितुं मुख्य भूमिका निर्व्यूढा। अपरः निगृहीतः अभियुक्तः तेजस हर्षद कुमार शाहः वर्तते, यः पुणे नगरस्य डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल अकादमी इति कोचिंग संस्थायां भौतिकशास्त्रस्य प्राध्यापकः अस्ति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन एतावता देशस्य 49 स्थानेषु सहसान्वेषणं विहितम्, यत्र अनेके आपत्तिजनक अभिलेखाः अंकीयसंगणकाः दूरभाषयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः सबलं प्रोक्तवती यत् देशस्य विकासाय पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य विकासः सर्वथा अनिवार्यः वर्तते। अद्य गंगटोकनगरे सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपति मुर्मुः छात्रान् स्वकीय विचारैः नवोन्मेषेण परस्पर विश्वासेन च राष्ट्रनिर्माणे योगदानं विधातुं परामर्शं प्रदत्तवती। मुर्मू महोदया अवदत् यत् शिक्षा एव सशक्तिकरणस्य परम मार्गः अस्ति।
2: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: कनाडा यात्रायाः द्वितीय दिवसे भारतस्य वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे वरिष्ठ व्यापारिक नेतृभिः संस्थागत निवेशकैः च सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विहितवान्। यात्रा प्रसंगे श्री गोयलः कनाडा देशस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मन्त्रिणा मनिन्दर सिद्धू इत्यमुना सह साक्षात्कृत्य भारत कनाडा देशयोः वर्धमान पूरकताम् अधिकृत्य चर्चां कृतवान् तथा च सुदृढ सर्वकारोद्योग सहयोगेन चालितस्य अधिक सशक्तस्य पूर्वानुमान योग्यस्य च व्यापार पारिस्थितिकी तन्त्रस्य आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तवान्। आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं सार्धसप्तवादने समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरे आयोजिते द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 धावनांकैः पराजितम्। इति वार्ताः।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ये उनका पसंदीदा कार्यक्रम है, क्योंकि हम इस कार्यक्रम में, जैसा कि लोकेन भाई आपने बताया कि हम उनको मनोरंजन तो कराते ही हैं, साथ ही में बहुत सारी जानकारी भी देते
1: बिल्कुल
0: हैं। तो आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज हमारा जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है।
1: बिल्कुल रुणेश भाई, देखिए उनका जन्म 14 नवंबर 1889 में को इलाहाबाद में हुआ था। बच्चों के प्रति वो विशेष रूप से प्रेम रखते थे और चाचा नेहरू उनको बच्चे कह के बुलाते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और देखिए रुणेश भाई, इसमें मैं अपने भाइयों को ये भी बता दूं कि पंडित नेहरू ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई में महात्मा गांधी का साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मतलब उनके साथ रहे थे। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में बड़ा योगदान दिया था। उनके नेतृत्व में देश के बड़े बड़े बाद वैज्ञानिक संस्थान, उद्योग और शिक्षा संस्थान स्थापित भी हुए थे। उन्होंने विज्ञान, तकनीकी और लोकतंत्र को मजबूत बनाने की विशेष ध्यान दिया था।
0: बिल्कुल लोकेन भाई, आप सही कह रहे हैं। और इसके साथ ही आज 27 मई है, और 27 मई 1964 को ही जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ था। और आज उनकी इस पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री समेत सभी बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया है। तो हम अपने जो है श्रोताओं को बता दें कि आज हमने ये जो जवाहरलाल नेहरू स्मृति दिवस है, और देखिए देश के विकास में हर एक सरकार का, हर एक प्रधानमंत्री का योगदान रहता है,
1: हाँ
0: तो हमें उनको बीच बीच में याद करते रहना चाहिए, नमन करते रहना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और अब आगे बढ़ते हैं लोकेन्द्र भाई, अपने श्रोताओं को क्या सुनवा रहे हैं?
1: बिल्कुल रमेश भाई, सबसे पहले अपने भाइयों का कराते हैं मनोरंजन, सुनवाते हैं ये रागनी कलाकार हैं ओमपाल रटोलवी से।

0: तो देखिए लोकेंद्र भाई, हमारे आपके और हमारे सभी श्रोताओं के जीवन में शिक्षा यानी एजुकेशन का बहुत महत्व होता है,
1: हाँ
0: और ग्रामीण इलाकों में भी बहुत से स्कूल हैं, विद्यालय हैं, और हमारी सरकार ने अभी नई शिक्षा नीति का भी ऐलान कर दिया है और उनको लागू भी कर दिया गया है।
1: बिल्कुल
0: ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाने वाले हैं, तो उस बातचीत का टॉपिक क्या है?
1: बिल्कुल रुणेश भाई, हम बताते हैं बातचीत का विषय है ग्रामीण विद्यालयों में नई शिक्षा नीति का प्रभाव, और जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हर्षद मिश्रा, उपायुक्त है केंद्रीय विद्यालय संगठन से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल।
0: आइए सुनते हैं।
2: श्रोताओं नमस्कार। किसी देश का विकास इसी इस तरह से नापा जाता है कि उस देश में कितने लोग शिक्षित हैं, और जो शिक्षित हैं वो कितने रोजगार परक हैं। निश्चित तौर पे जब शिक्षा के विकास की बात करते हैं कि जो हमारी प्राइमरी शिक्षा है, और वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्राइमरी शिक्षा है उसका क्या स्तर है, और भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 लागू की, उसके बाद कुछ क्षेत्रों में सुधार हुआ है, और क्या सुधार हुआ है इस नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं हर्षित मिश्रा जी, जो कि उपायुक्त हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार। मिश्रा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी नमस्कार।
2: तो ये जानना चाहूंगा कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, लगभग उसको कई साल हो गए हैं, तो इसमें अब तक क्या प्रगति हुई है?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की बात कर रहे हैं, तो आपका कहना बिल्कुल उचित है कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे भारत विकासशील देश से एक विकसित देश बन सकता है, और पूरी भारत सरकार और मुझे लगता है कि सारी राज्य सरकारें इस लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। जहां तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात है, ये एक भारत का ये एजुकेशन इकोसिस्टम एक ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। हम शिक्षा में एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और ये हमारा एक संक्रमण काल है। नई शिक्षा नीति की जितनी भी अनुशंसाएं हैं उसको भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पूरी शिद्दत से उसके इम्प्लीमेंटेशन में लगे हैं। बहुत सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। हर बजट में माननीय वित्त मंत्री के द्वारा तमाम सारी घोषणाएं शिक्षा नीति के सिंक्रोनाइजेशन में ही की जा रही हैं। आपने ग्रामीण स्कूलों के ग्रामीण भारत के प्राथमिक विद्यालयों प्राइमरी स्कूलों की बात उठाई है,
2: जी
1: तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति में एक क्लियर प्रावधान है कि शिक्षा का उद्देश्य ना केवल शिक्षा को प्राप्त करना है बल्कि एक क्वालिटी एजुकेशन को प्राप्त करना
2: जी
1: है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा को प्राप्त करना है। शिक्षा का उद्देश्य है अच्छी शिक्षा और सबको शिक्षा। एनईपी इसी बात को कहती है, और एनईपी का प्रमुख रिकमेंडेशन है कि शिक्षा का न सिर्फ सेचुरेशन किया जाए, उसका संतृप्तिकरण किया जाए, बल्कि शिक्षा को पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण तरीके से हमारे विद्यार्थियों को प्राप्त कराया जाए। और इस संबंध में एनईपी जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी FLN का कंसेप्ट लेकर आई है, और ये FLN फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी कक्षा 3 के हमारे सारे प्राइमरी स्कूलों में FLN के लक्ष्य को निर्धारित कर दिया गया है, और FLN फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निपुण भारत अभियान NBA भारत सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सारे प्राइमरी स्कूल्स में चलाया जा रहा है, और निपुण भारत अभियान के अंतर्गत टारगेटेड मैनर में हमारे प्राइमरी स्कूल के सभी छात्र छात्राओं को FLN फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी की स्किल्स को एक टाइम बाउंड मैनर में NEP की रिकमेंडेशन के अनुसार प्राप्त करवाना है। तो मुझे लगता है कि NEP अपनी अनुशंसाओं को लेकर के बिल्कुल क्लियर है। भारत सरकार समग्र शिक्षा योजना जो शिक्षा मंत्रालय की है NEP के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर पूरी तरह से क्लियर है, और भारत सरकार के समस्त केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय राज्य सरकार के सारे विद्यालय NEP की समस्त अनुशंसाओं का अक्षराक्ष पालन कराने के लिए कटिबद्ध हैं, चाहे वो FLN हो चाहे वो टीचर्स ट्रेनिंग हो। NEP ने टीचर पर शिक्षक पर बहुत जोर दिया है। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो 2 अध्याय उसमें शिक्षक को समर्पित है। NEP मानती है कि अगर हमें छात्रों की गुणवत्ता में सुधार करना है तो उसका एकमात्र जो उसकी की है जो उसकी चाबी है वो है अच्छे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक। और शिक्षकों को लेकर के जो NEP के रिकमेंडेशन है उसको भारत सरकार ने बहुत ही अच्छी तरह से उसका पालन सुनिश्चित किया है, उसको लेकर के नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिटी फ्रेमवर्क बनाया है, नेशनल टीचर एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाया है, और ये तमाम सारी अनुशंसाएं राज्य सरकारों को उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए दी जा चुकी है।
2: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि अगर शिक्षा में सुधार करना है तो शिक्षकों की शिक्षा में सुधार होना चाहिए, तो शिक्षकों को ट्रेनिंग का आपने जिक्र किया, तो ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को क्या प्राविधान किया गया है, किस तरीके से शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो प्राइमरी एजुकेशन को और गुणवत्तापूर्ण बना सकें।
1: शिक्षकों की शिक्षा के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जो प्रावधान किए हैं उनको लेकर के जो टीचर एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी है कंट्री में, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, वो तमाम सारे प्रोग्राम शिक्षक शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए लेकर के आई है। जैसे उसमें से एक प्रोग्राम है नेशनल मिशन फॉर मेंटरशिप। तो नेशनल मिशन फॉर मेंटरशिप के अंतर्गत एनसीटी ने एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया है कि टीचर को प्रोफेशनल्स के द्वारा कैसे मेंटर किया जाएगा, कैसे उनको कैपेसिटी हैंड होल्डिंग की जाएगी, कैसे उनका डिसेंट्रलाइज वे में टीचर्स का मेंटरशिप किया जाएगा अगर उनको अपना पेडागोजी में, क्लासरूम मैनेजमेंट में, स्कूल मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो एनसीटी ने एक प्रॉपर एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल बनाया है, उस ऐप में इवन मैं और आप भी जाकर के एज ए मेंटर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एनसीटी के द्वारा हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम आयोजित कराए जाएंगे ताकि हम टीचर्स की स्किल सेट में, उनकी विधा में अगर उनको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उनका हैंड होल्डिंग कर सकें, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। इसके अलावा एनपीएसटी, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, एनईपी ने इसकी अनुशंसा की थी कि हमें जल्दी से जल्दी एक टीचर्स के लिए कुछ मानक बनाए जाने चाहिए, उनके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए जाने चाहिए, इसको एनपीएसटी बोलते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स को 2024 में माननीय शिक्षा मंत्री के करकमलों के द्वारा इसको रिलीज कर दिया है, और सारे के सारे एनपीएसटी और एनएमएम के प्रचार प्रसार के लिए

0: एनसीटी हर राज्य में अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है, अपने नेशनल वर्कशॉप करके टीचर्स को, टीचर एडुकेटर को, प्रिंसिपल्स को, वहां के शिक्षा अधिकारियों को ये बता रही है कि एनएमएम और एनपीएसटी का कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रयोग टीचर्स के द्वारा किया जाए।
1: जी
0: इसके अलावा समग्र शिक्षा में ये प्रावधान है कि प्रत्येक टीचर का प्रत्येक वर्ष में 5 दिन का कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम होना ही होना है। इस तरह से भारत सरकार ये सुनिश्चित करती है कि हर टीचर का कैपेसिटी बिल्डिंग हो, उनका प्रोफेशनल हैंड होल्डिंग हो, उनका पेडागोजिकल हैंड होल्डिंग हो, और उन्हें टीचिंग लर्निंग के नए नए जो तरीके हैं, अब आजकल हमारे पास डिजिटल काफी सारे तरीके हैं, तो वेदर फिजिकल डिजिटल टूल्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये सारी चीजें उनको आईसीटी ट्रेनिंग, उनको पेडागोजिकल ट्रेनिंग, उनको सब्जेक्ट ट्रेनिंग में उनको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उनको बताई जा रही है, और राज्य सरकारों को समय समय पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी के द्वारा निष्ठा ऐप से टीचर्स का ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम सुनिश्चित किया जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि हजारों की संख्या में अध्यापक इसका दिन प्रतिदिन लाभ उठा रहे हैं। ये ऑनलाइन है, इसको अध्यापक अपने फ्री टाइम में कहीं से भी कर सकते हैं, और इसका कुशलता पूर्वक ऑनलाइन प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद उनका एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट जनरेट होता है, जो कि उनके आगे के प्रमोशंस में, आगे के करियर प्रोग्रेशंस में काम आता है। तो मुझे लग रहा है तमाम सारे ऐसे एवेन्यूज आज ओपन हैं जिनके द्वारा हमारे अध्यापक अपनी वांछित स्किल सेट में वांछित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने डिजिटल की बात की, तो शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अंतर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना मजबूत नहीं है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को वो शिक्षा दी जा सके, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: अभी जो लेटेस्ट यूडाइस का डेटा आया है, उस यूडाइस के डेटा के अनुसार हमारे लगभग 75 से 80% ग्रामीण अंचल के स्कूल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से आच्छादित हो चुके हैं। भारत नेट योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल के स्कूलों को ये सुनिश्चित कर दिया गया है कि जो भारत नेट की व्यवस्था जहां जहां जाएगी, तो उस गांव के प्राथमिक विद्यालय, उस गांव के माध्यमिक विद्यालय, उस गांव के सरकारी विद्यालय उस भारत नेट के इंटरनेट सुविधा से आच्छादित होंगे। तो अभी जो लेटेस्ट यूडाइज डेटा, और ये मैं आपको 24-25 की रिपोर्ट बता रहा हूं, अगर 25-26 की रिपोर्ट आएगी तो मेरा पूरा विश्वास है कि भारत के लगभग 75 से 80% स्कूल जो है उनमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जा चुका है, अध्यापकों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है, तमाम सारे स्कूलों में डिजिटल डिवाइसेस, तमाम सारे स्कूलों में एलईडी स्क्रीन्स आज की वास्तविकता है। उन एलईडी स्क्रीन्स के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान परक शिक्षा दी जा रही है, न केवल ज्ञान परक शिक्षा दी जा रही है। मैं फिर एनईपी पर लौट के आता हूं। एनईपी ने 3-4 बातों पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। एनईपी का जोर है क्रिटिकल थिंकिंग। उसने कहा है कि भाई रोट लर्निंग, रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा, रट्टा मारने से भारत विकसित भारत नहीं हो सकता, हमें क्रिटिकल थिंकिंग, अपने बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट को इनकलकेट करना है। हमें दूसरी जो चीज एनईपी ने बताई है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें अपने बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल सेट को डेवलप करना है, और यही क्रिटिकल थिंकिंग और यही प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्किल सेट जो आज की जनरेशन हमारी स्कूलों में पढ़ रही है, यही जनरेशन बड़े होकर के हमारे देश को 2047 में बार विकसित भारत की ओर ले जाएंगे। तीसरी चीज जो एनईपी ने बताई है वो है कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कम्युनिकेशन स्किल, और उसके अलावा एनईपी का जोर है वो है स्किल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन। एनईपी कहती है कि बच्चों में वोकेशनल सेट, वोकेशनल एजुकेशन सेट, स्किल एजुकेशन सेट और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स बच्चों में इनकलकेट करना है। बच्चों को ये जानना आवश्यक है कि अच्छे एंटरप्रेन्योर कैसे बनते हैं। एनईपी ने क्लियर रिकमेंड किया है कि हमें एक समयबद्ध तरीके से 50% बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन से आच्छादित करना है, और इसके लिए भारत सरकार वोकेशनल एजुकेशन की दिशा में समग्र शिक्षा प्रोग्राम के अंतर्गत काफी सारे इंटरवेंशन लेके आई है, जिसके अंतर्गत बच्चों की स्किल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा।
1: जी बिल्कुल, बच्चों के स्किल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, इसमें जैसे टीचर्स का योगदान हो गया, बच्चों का भी योगदान रहता है, पेरेंट्स से क्या उम्मीद की जा सकती है?
0: देखिए मेरा मानना है कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम एजुकेशन को एक ट्रायंगल के रूप में देखते हैं, जिसके एक कोने पर स्टूडेंट है, एक कोने पर टीचर है और एक कोने पर पेरेंट्स है। ये ट्रायंगल, ये त्रिकोण जब तक पूर्ण नहीं होगा तब तक आप एक अच्छी शिक्षा की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बच्चा विद्यालय में 6 घंटे के आसपास समय बिताता है, बाकी 18 घंटे का समय बच्चे का उसके घर में बीतता है। तो उसका मतलब ये हो गया कि यदि विद्यालय किन्हीं चीजों को लेकर के, किन्हीं स्किल सेट को लेकर के, फॉर एग्जाम्पल विद्यालय वोकेशनल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन में अगर बच्चे के साथ 6 घंटे में से किसी एक पीरियड में काम कर रहा है और बाकी 18 घंटे बच्चा अपनी पेरेंट बॉडी के पास है, अपने गार्जियंस के पास है, तो अगर वहां से विद्यालय को, शिक्षकों को समुचित सहयोग नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है ये पठन पाठन की प्रक्रिया जो है वो एक पक्षीय हो जाएगी, जबकि पठन पाठन की जो प्रक्रिया है वो एक बहुपक्षीय, और बहुपक्षीय ना कहें तो कंपल्सरी द्विपक्षीय प्रक्रिया तो है ही है। और मेरा समस्त अभिभावकों से तो मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने एज ए गार्जियन आपकी जो ड्यूटी है, क्योंकि हम जिस संसार में रह रहे हैं, जो मैं जितना डिजिटल एजुकेशन की बात कर रहा हूं, जितना ये हमारे लिए यूजफुल है, जितना ये हमारे लिए ज्ञानवर्धक है, उतना ही इसमें वो सारे दुर्गुण भी हैं जो हमारे और आपके बच्चों को बिगाड़ सकते हैं। तो मेरा पुनः सारे माताओं बहनों से ये निवेदन है, और बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपके सहयोग से विद्यालय बच्चों को वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा जहां तक पहुंचाने का प्रयास, जो सपना एनईपी ने और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देखा है। तो मुझे लगता है कि विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमें अपने अभिभावक बंधुओं का सहयोग आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य भी है।
1: जी बिल्कुल, आपने काफी विस्तार से बताया कि किस तरीके से जो हमारे बच्चे हैं, किस तरीके से हमारे जो टीचर हैं और इसमें हमारे जो माता पिता हैं, उनका क्या रोल है शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों को आगे बढ़ाने में। हर्षित मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो लोकेंद्र भाई, अभी हमारे श्रोताओं ने सुनी एक महत्वपूर्ण बातचीत कि ग्रामीण विद्यालयों में नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव पड़ रहा है, और डॉक्टर हर्षित मिश्रा जो कि उपायुक्त हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन से, और शिवनंदन लाल जी इनसे बातचीत कर रहे थे। तो देखिए भाई, ऐसा है कि शिक्षा का तो जीवन में बहुत ही अधिक महत्व है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी सरकार लेके आई है, ये हमारे छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए और अध्यापकों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छी है। तो अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं लोकेंद्र भाई,
3: और सुनवाते हैं और मनोरंजन करवाते हैं कलाकार ओमपी रटोलवी और कुसुम गौड़ से, ये रागनी से।

0: तो लोकेंद्र भाई, अब हमारे इस कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो क्यों ना अपने सुनने वालों को कहें।
1: बिल्कुल, देखिए इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर, संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रसारण है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को
1: राम राम।
0: राम राम। तो लोकेंद्र भाई,
1: हाँ अरुणेश भाई,
0: आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज हम अपने इस कार्यक्रम कृषि जगत लेकर हाजिर हुए हैं। और जैसा कि हमारे जो श्रोता हैं, किसान भाई बहन हैं, वो जानते हैं कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सी नई नई जानकारी देते हैं अपने किसान भाई बहनों को। तो एक ऐसी ही योजना है, AGRI उड़ान योजना। तो क्या इस योजना के बारे में आइए कुछ बताते हैं।
1: बिल्कुल अरुणेश भाई। देखिए, एग्री उड़ान योजना एक कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य

0: शुरू की गई है और यह कार्यक्रम जो है इसका नीति आयोग और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट के सहयोग से संचालित किया गया है। इसका उद्देश्य जो है अरुणेश भाई, मैं हम बता दें कि इसका उद्देश्य कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में नई तकनीक, आधुनिक समाधान और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है।
1: बिल्कुल लोकेन भाई, आपने सही जानकारी दी। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये जो नीति आयोग है और नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट के सहयोग से ये एग्री उड़ान योजना चलाई जा रही है। और इस योजना के तहत जो खेती किसानी से जुड़े स्टार्टअप्स हैं और उनसे जुड़े हुए जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है, उनको जो है एक तरीके का मार्गदर्शन किया जाता है। इसके अलावा जो एक तकनीकी सहायता भी दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पैसों की ज़रूरत है तो फाइनेंसर यानी निवेशक भी चाहिए होता है,
0: हाँ
1: तो निवेशकों से जुड़ने का अवसर भी दिया जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो ये योजना जो है ऐसे नवाचारों को बढ़ावा देती है जो हमारे किसानों की आय को बढ़ा सकें, खेती को आधुनिक बना सकें, और इसके अलावा जो प्राकृतिक खेती है,
0: हाँ
1: जैविक खेती है, उसको बढ़ावा दिया जाता है और हमारे किसान भाई बहनों की जो खेती से संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान भी किया जाता है।
0: बिल्कुल, हमारे भाई बहन इस योजना का भरपूर लाभ उठाएं।
1: और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि लोकेन भाई आप जानते ही हैं, और हमारे जो किसान भाई बहन हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो उनको भी पता ही है कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 देशों की सफल यात्रा करने के बाद स्वदेश लौट आए हैं।
0: हाँ
1: और इस दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका नाम है खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO। और इस संगठन द्वारा हमारे प्रधानमंत्री जी को एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा सम्मान दिया गया है। और उस सम्मान का जो प्रतिष्ठित सम्मान है एग्रीकोल।
0: तो कृषि समाचार दर्शन के अंतर्गत सुनते हैं इसको, उसमें क्या क्या है और उसने बता रही है संध्या गुप्ता।
1: आइए सुनते हैं कृषि समाचार दर्शन।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं संध्या आपका स्वागत करती हूँ प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को रोम स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। कृषि, खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए वैश्विक नेताओं को प्रदान किए जाने वाले इस सम्मान से इस बार भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी सम्मानित हुए हैं। FAO के महानिदेशक डॉक्टर क्यू डोंग्यू द्वारा यह पदक प्रधानमंत्री जी को प्रदान किया गया है और प्रधानमंत्री जी ने इस उपलब्धि को भारत के किसानों को समर्पित किया है। इस सुखद समाचार से भारत के कृषि क्षेत्र में खुशी की लहर है और कुछ किसान मित्रों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रसन्नता को हमारे साथ साझा किया है।
3: मैं ईश्वर दयाल शर्मा, डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव सांवली का रहने वाला हूं और 40 सालों से जो है कृषि कार्य से जुड़ा हुआ हूं। जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा इन महान निदेशक के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को एग्रीकोला पदक से नवाजा गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च खाद्य सुरक्षा सम्मान है, जो मोदी जी की योजनाओं के द्वारा भारत में जो FPO का निर्माण किया गया और सभी किसानों को मिला करके एक ग्रुप बनाया गया जिसे किसान उत्पादक समूह के नाम से जाना जाता है, और इसके साथ साथ जहर मुक्त खेती के बारे में किसानों को जागृत किया गया जिसके द्वारा लागत में कमी एवं फसलों के अंदर न्यूट्रेंट की जो कमी थी उसको दूर किया गया, उसके अंदर जो नुकसान जहर रसायनों से होते थे उसको जैविक तौर पर करने से जो है उनसे छुटकारा मिला। इसके साथ साथ मोदी जी ने जो मोटे अनाज हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, इनको हमारे दैनिक भोजन की सूची है उसमें शामिल किया गया, और इसके साथ साथ किसानों को आय में भी उसका फायदा हुआ। और मोटे अनाज जिनको पहले लोग कम यूज करते थे अपने भोजन में, जबकि गुणवत्ता में वो आम रूटीन की जो गेहूं एवं चावल है उससे बहुत ज्यादा गुणकारी हैं, और इस सारे परिवर्तन का श्रेय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, और उनको जो सम्मान जो है रोम के अंदर संयुक्त राष्ट्र महानिदेशक के द्वारा दिया गया ये भारत के किसानों का ही सम्मान है। मैं तह दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ और इसी प्रकार से वो हमारे किसानों को जागरूक करते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से और अपने किसान भाइयों की तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ भविष्य में भी वो इसी प्रकार से निरंतर किसानों को उन्नति के मार्ग पर लेते चले आएंगे। धन्यवाद।
4: मैं एसपी मौर्या गाजियाबाद से। रोम में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा एग्रीकोला पदक से सम्मानित किया गया है। ये पदक खासतौर से कृषि क्षेत्र में समग्र विकास और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने, जैविक खेती को बढ़ावा देने, मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने, किसानों का स्तर ऊंचा करने, खाद्य शेष की जमा बढ़ाने के संबंध में किए गए सराहनीय प्रयासों के लिए दिया जाता है, जो आज रोम में माननीय प्रधानमंत्री को दिया गया है। ये सम्मान हमारे देश के समस्त किसानों को प्रदान किया जाने वाला सम्मान प्रतीत हो रहा है और पूरे देश के लिए बड़ा सम्मान और गौरव का विषय है। सारे लोग बड़े ही से उत्साहित और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। इधर के वर्षों में लगातार सरकार द्वारा किसानों को दिए गए सहयोग के कारण और उनके मार्गदर्शन के कारण कृषि में काफी उन्नति हुई है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से लगभग 11 करोड़ किसानों को सरकार ने आर्थिक सहायता समय समय पर प्रदान की है। भारत में एक समय ऐसा था कि अन्न की बड़ी कमी हुआ करती थी, लेकिन आज लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन सरकार द्वारा दिया जा रहा है। ये निश्चित है जब देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है तभी यह संभव हो पाया है। बिना कृषि उत्पादन के बढ़े ये चीजें संभव नहीं हो पाती। इधर के सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो उनमें भी कृषि का ही काफी योगदान रहा है और माननीय प्रधानमंत्री ने तमाम प्रयासों से, तमाम मार्गदर्शनों से लोगों को उत्साहित किया, सहयोग प्रदान किया। तकनीकी विकास में वैज्ञानिकों का भी बड़ा योगदान रहा है और कुल मिलाकर के आज ये एक अच्छा दिन आया कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री को उच्च स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया, जो पूरे देश के किसानों के लिए गर्व और फख्र का विषय है और हम सब इससे बड़ा आनंदित और आह्लादित महसूस कर रहे हैं। इस सम्मान से निश्चित है एक प्रेरणा मिलती है वैज्ञानिकों को भी, किसानों को भी प्रेरणा मिलेगी और उसका जो एक समग्र रूप देखने का मिलेगा कि कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, फलों के उत्पाद को निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और उस माध्यम से भी देश में विदेशी मुद्रा आएगी, जिसका कुल मिलाकर के जो एक असर होगा वो किसानों की उन्नति होगी। इधर के सालों में सरकार के लगातार प्रयासों में मार्गदर्शन से कृषि तकनीक में बड़ा विकास हुआ है और किसानों ने उसको अपनाया भी है और पहले खासतौर से सिंचाई के साधन इतने सीमित हुआ करते थे कि किसान फसलें तो बो लेता था लेकिन उसकी सिंचाई उचित न हो पाने के कारण फसलें सूख जाती थी, उत्पादन उतना हो नहीं पाता था। लेकिन इधर के 4-5 वर्षों में सरकार ने सौर ऊर्जा चालित पंपिंग सेट्स को बढ़ावा दिया है, सिंचाई के साधनों में वृद्धि हुई है, नहरों का विस्तार हुआ है, नलकूपों का विस्तार हुआ है। सौर ऊर्जा से संचालित नलकूपों के माध्यम से तो हम लोग खुद भी अपने गाँव में देखते हैं कि काफी परिवर्तन आया है, बिजली पर निर्भरता घटी है, तकनीकी के सहयोग से खेती में तो आमूल चूल परिवर्तन आया है।
5: मैं किसान मनसाराम यादव, ग्राम संसारा, पोस्ट बीजापुर, ब्लॉक हैदरगढ़, जिला बाराबंकी। माननीय प्रधानमंत्री जी को रोम में कृषि संगठन FAO द्वारा प्रतिष्ठित एग्रीकोला पदक से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री जी ने सर्वोच्च खाद्य सुरक्षा सम्मान को भारत के लाखों किसानों को समर्पित किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भारत के खाद्य अधिशेष राष्ट्र बनाने की दिशा में किए गए परिवर्तनकारी सफर, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, बाजरा की खेती का विस्तार करने और 11 करोड़ से अधिक किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को, हम सभी भारत के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और समस्त किसानों की तरफ से धन्यवाद करते हैं। हम सभी किसान भाई बधाई के पात्र हैं। हम किसान भाइयों ने प्राकृतिक खेती और श्री अन्न की खेती, समस्त खेती हम लोग कर रहे हैं, जिससे हमारे देश

0: आगे प्रगत कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हम प्रधानमंत्री जी को लाख लाख बधाई देते हैं।
1: नमस्कार, चित्रकूट से योगेश जैन, प्रगतिशील किसान। आज हमारे क्षेत्र के सभी किसान बहुत प्रसन्न है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को रोम में खाद एवं कृषि संगठन FAO द्वारा एग्रीकोला पदक से उन्हें सम्मानित किया गया है। FPO के माध्यम से इस सरकार ने किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाई, अपने उत्पाद किसान स्वयं बाजार में बेच सकें ऐसी व्यवस्था की। पहले जो किसान बिखरे हुए थे वह संगठित हो गए हैं तथा FPO के माध्यम से वह अपना उत्पाद देश एवं विदेश में भेज सकते हैं तथा अच्छे मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। यह पुरस्कार माननीय मोदी जी ने किसानों को समर्पित किया है। उसमें भारत में वर्तमान सरकार ने टिकाऊ कृषि, सिंचाई संसाधन एवं प्राकृतिक खेती के माध्यम से किसानों को जीरो बजट की एक जो प्रोत्साहित किया है, किसान कम खर्च में अच्छा उत्पाद अपने खेतों में कर रहे हैं। बुंदेलखंड जिस क्षेत्र से हम आते हैं उसके 8 जिलों में प्राकृतिक खेती हो रही है। चित्रकूट में मैं स्वयं इसका चैंपियन फार्मर हूँ। इसके उत्पाद में रासायनिक खाद एवं दवाओं का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, जिससे स्वास्थ्य लाभ का सबसे बड़ा फायदा है। सरकार ने प्राकृतिक खेती को जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया है, हम अपने जो मिलेट्स, बाजरा और श्री अन्न को भूल गए थे, बाजरा में तो सर्वाधिक सरकार ने जोर दिया है और उसके 11 लाख किसान है पूरे देश में, उनको प्रोत्साहित किया है और एक अच्छा उत्पादन हम लोग ने दिया है सरकार को, जिससे स्वास्थ्य लाभ भी हो रहा है और हम अपने मिट्टी को भी जीवित कर रहे हैं। किसानों को भी अच्छा मूल्य मिल रहा है। इसी प्रकार पशुपालन में भी इस सरकार ने पशुओं को बीमारी के लिए जो जितना अच्छा प्रबंध किया है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस भी अब किसानों के द्वार पे आती है तथा जो पशु अपने संसाधन से किसान चिकित्सालय नहीं ले जा सकता था, वह भी अब एम्बुलेंस के माध्यम से जाकर अच्छी चिकित्सा मिल रही है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे इस सरकार को तथा मोदी जी के मिले हुए पुरस्कार को। उन्हें बधाई है कि वह भारत के अलावा भी विश्व में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और हम किसानों की सभी की दुआएं उनके साथ हैं। देखिए, अपने देश में सम्मान पाना या अपने क्षेत्र में सम्मान पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जब विदेश में कोई सम्मान मिलता है, हम ही लोग हैं अगर बाहर कहीं सम्मान पाते हैं तो उसकी एक अलग ही महक, एक अलग ही गमक होती है। माननीय मोदी जी को रोम की धरती में जिस प्रकार का सम्मान मिला है उससे देश का भी नाम बढ़ा है तथा देश के किसानों का सीना चौड़ा हुआ है और मस्तक गर्व से ऊंचा उठा है कि नहीं, खेती घाटे का सौदा नहीं है, फायदे का सौदा है और जो खेती में किसान हट रहा था वो पूरी तन्मयता से जुड़ रहा है। सरकार पूरा जो साथ दे रही है, कंधे से कंधा मिलाकर किसान भी चल रहा है और कृषि प्रधान देश हमारा रहा है और बीच में कुछ भ्रांतियां गड़बड़ियां आई थी, अब पुनः कृषि प्रधान की ओर जा रहे हैं सभी किसान।
2: नमस्कार, वंदे मातरम। मैं किसान नरेंद्र सिंह राठौर पिछले 14 वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहा हूं और मैं धार जिले के मध्य प्रदेश में निवासरत हूं। अभी हमारे लिए एक बड़ा गर्व का विषय रहा है हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो विदेश यात्रा थी, उसमें प्रधानमंत्री जी को यह समझ लिया हमारे पूरे देश के किसानों को एक सम्मान मिला है, ये कहना है हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का। रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा एग्रीकोला पदक में सम्मानित किया गया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च खाद्य सुरक्षा सम्मान को भारत के लाखों किसानों को, अन्नदाताओं को समर्पित किया है और ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये हमारे लिए बड़ी एक उपलब्धि है और मैं पिछले 14 से 15 साल से प्राकृतिक जैविक खेती कर रहा हूँ, जो एक पहल है आत्मनिर्भर भारत की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते रहते हैं कि प्राकृतिक खेती, आत्मनिर्भर जो कृषि है, आत्मनिर्भर भारत है, ये वो सपना देखते हैं। तो इस सपनों का पूरा करने के लिए मेरी एक पहल है पिछले 14 सालों से और मैं कई किसानों को इसके लिए प्रेरित भी कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती जो होती है वो हमारे स्वयं के, जो हमारे देश में जो चीजें हमें मिलती है, जैसे गाय है, गोबर, गोमूत्र है, जो प्राकृतिक संसाधन, उनके आधार पे प्राकृतिक खेती होती है। इसमें किसी भी बाहरी इनपुट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मतलब निर्भरता इसमें पूरी तरह से खत्म हो जाती है।

0: ये जो कृषि है, प्राकृतिक कृषि है, ये पूरी तरह से गोवा आधारित है। प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके इसको करते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लगातार प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों को काफी सहयोग दे रहे हैं। और ये हमारे लिए भी और हमारे देश के लिए भी बड़े गौरव की बात है कि इतना बड़ा सम्मान वो भी विदेशी धरती पे हमारे प्रधानमंत्री को मिला। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ द्वारा वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित होने पर आप सभी किसान भाइयों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं संध्या, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: तो लोकेंद्र भाई, अभी हमारे किसान भाई बहनों ने ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि समाचार दर्शन के बारे में सुना और ये पता चला इससे कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन विभाग यानी एफएओ द्वारा एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार साल 2026 के लिए दिया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में और अपने जो है श्रोताओं का मनोरंजन कराते हैं।
3: बिल्कुल अरुणेश भाई, अब सुनवाते हैं ये उपदेश कलाकार हैं शिवराम।

धाम तेरे घट अंदर नित उठ कर स्नान सदा कस्तूरी के मृग की तरिया

0: अरुणेश भाई, अभी हमारे किसान भाई बहन सुन रहे थे ये उपदेश, और कलाकार थे शिवराम सिंह।
1: जी लोकेंद्र भाई, और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम कृषि जगत का समय समाप्त हो रहा है, तो आइए।
0: इसी के साथ आज हमारा कृषि जगत कार्यक्रम संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब गजलों के कार्यक्रम में सुनते हैं ये पहली गजल।

0: वक्त तो लगता है।
1: और कार्यक्रम के अंत में ये खूबसूरत सी गजल एक बार फिर से जगजीत सिंह की आवाज में।

0: आप सुन रहे थे गज़लों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, DRM 810 किलो हर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभागों के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। सुश्री गुप्ता ने नागरिकों से भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच सावधानी बरतने की अपील की। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने शाहबाद डेयरी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परवेश साहिब सिंह ने राजौरी गार्डन में अंबेडकर चौपाल और हरिजन चौपाल के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सभी विभागों के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान दिल्ली सरकार के बजट में घोषित जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बजट की प्रत्येक घोषणा को पारदर्शिता, जवाबदेही और तय समय सीमा के साथ प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंच सके। बैठक में मॉनसून की तैयारियों को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जलभराव की समस्या को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में पेयजल, शौचालय और पुताई की व्यवस्था, पौधरोपण अभियान, जल संरक्षण और सौर ऊर्जा संबंधी योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से मेट्रो मंडे और वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था का गंभीरता से पालन करने की अपील की, जिससे ईंधन की बचत और प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिल सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नागरिकों से भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच सावधानी बरतने की अपील की है। श्रीमती गुप्ता ने लोगों से भरपूर पानी पीने, शरीर को हाइड्रेटेड रखने और तेज धूप से बचने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने लोगों से पशु पक्षियों का भी ख्याल रखने की अपील करते हुए कहा कि घर, छत, बालकनी, दुकान और आसपास उनके लिए पानी तथा छांव की व्यवस्था जरूर करें। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
4: इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की, वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे, जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है, और 2 फॉर्म लेके जाएंगे, इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है, और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
3: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष ग्रहण पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्रनाथ सिंह ने आज शाहबाद डेयरी के सी ब्लॉक, सुनहरी चौक और लाला स्कूल रोड क्षेत्र में सड़क तथा नाला निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि ये विकास कार्य मुख्यमंत्री विकास निधि के अंतर्गत किए जा रहे हैं ताकि क्षेत्र में बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: श्री सिंह ने बताया कि शाहबाद डेयरी क्षेत्र में लंबे समय से खराब सड़कों, जलभराव और जल निकासी की समस्याओं को दूर करने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शाहबाद में कोई भी ऐसे ब्लॉक नहीं छोड़ा जाएगा जहां पीने के पानी की समस्या बनी रहे। श्री सिंह ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अब तक पेयजल पाइपलाइन नहीं पहुंची है, वहां नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। श्री सिंह ने अधिकारियों को सड़क निर्माण की समय सीमा पहले से तय करने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यदि कोई सड़क लंबे समय तक अधूरी या खुदी हुई पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
7: वैसे तो इसी साल लगभग साबाद डेयरी का 90% काम पूरा हो जाएगा। दूसरा भवाना से लेकर साबाद तक की नई ड्रेन, जिससे कि हमारे भी गलियारों में नालियां भरी रहती है, नाले साफ नहीं होते क्योंकि बाहर पानी नहीं निकल पाता, तो बड़ा नाला, जिसके कारण से भविष्य के अंदर पूरे साबाद डेयरी के अंदर कभी भी नालों में पानी नहीं दिखाई देगा, ऐसी व्यवस्था भी। एक छोटा हॉस्पिटल बनाने की भी बात, लाल बिल्डिंग को इसी वर्ष खुलवा कर नई बिल्डिंग बनाने का काम भी हम शुरू कर देंगे।
6: श्री सिंह ने जानकारी दी कि बवाना से शाहबाद डेयरी तक आदर्श ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की दिशा में भी काम चल रहा है, जिससे बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। आजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
3: दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परवेश साहिब सिंह ने आज राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में अंबेडकर चौपाल और हरिजन चौपाल के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस दौरान श्री परवेश साहिब सिंह ने बताया कि राजौरी गार्डन विधानसभा में लगभग 1,33,00,000 रूपये की लागत से अम्बेडकर चौपाल का निर्माण कराया जाएगा। वहीं हरिजन चौपाल का काम 1,08,00,000 रूपये की लागत से हो रहा है। इसके साथ ही लगभग 1,42,00,000 रूपये की लागत से एनडब्ल्यू चौक, खयाला स्थित शमशान घाट की मरम्मत और सौंदर्यीकरण कार्य भी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं ग्राम विकास, सामाजिक सहभागिता और बेहतर जनसुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
8: प्रधानमंत्री जी की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए कोई भी काम ये हमारा नहीं छूटेगा। ये ऐसा भवन होना चाहिए और यहाँ पे अपने कार्यक्रमों के अलावा भी आदमी सुस्ता सके, बैठ सके, बात कर सके। और जितने भी यहाँ पे भवन बनेंगे, चौपाल बनेगी, कम्युनिटी सेंटर बनेंगे, सारे एयर कंडीशन। क्या है कि पानी कम आ रहा है, कहीं से भी लाना पड़े मैं आपके लिए पानी लेके आऊंगा।
3: श्री सिरसा ने कहा कि चौपालों के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सामुदायिक सुविधाएं मिलेंगी और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए व्यवस्थित स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने बताया कि खयाला गांव में लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से नई पेयजल पाइपलाइन, बड़ी सीवर लाइन और सड़कों के निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार उन सड़कों और सर्विस लेन का भी पुनर्निर्माण कर रही है जिन पर पिछले 20 से 25 वर्षों में काम नहीं हुआ था।
9: जो सड़कें आज तक आपने बनती नहीं देखी थी, चाहे हनुमान मंदिर के सामने सूरज की लाइन डालनी हो या पश्चिम बिहार की तरफ जो नाले की तरफ सड़क निकलती है, ये कभी बनी नहीं थी। हमने आकर पिछली बार भी उसके काम शुरू किए। अब गांव के अंदर सारे नाले की बड़ी सड़कें नाले डालने का, सारे गांव के अंदर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज डालने का काम चल रहा है और इसी तरह पीने की पानी और सीवेज की लाइने डालने का काम चल रहा है। हमारे इलाके के अंदर जितनी चौपाले हैं और जितने कम्युनिटी सेंटर हैं, सबको अपग्रेड करने का काम चल रहा है।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में कई मेट्रो स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों के नाम बदलने की घोषणा की है। रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल मेट्रो स्टेशन कहलाएगा। वहीं रोहिणी ईस्ट का नाम रोहिणी मेट्रो स्टेशन और द्वारका मेट्रो स्टेशन का नाम द्वारका ककरोला होगा। इसके अलावा बेगमपुर रोहिणी में बन रहे नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का नाम अटल खेल परिसर रखा जाएगा, जहां पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। साथ ही ब्रिटानिया चौक का नाम अश्विनी चोपड़ा चौक किया जाएगा। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नमो रेल 10 अतिरिक्त फेरे लगाएगी। इससे पहले भी 8 अतिरिक्त फेरे शुरू किए गए थे, जिससे अब कुल 18 अतिरिक्त फेरे संचालित होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC के अनुसार नई व्यवस्था के अंतर्गत सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक 10 अतिरिक्त फेरे और शाम 5 बजे से 8:30 बजे तक 8 अतिरिक्त फेरे संचालित किए जाएंगे। NCRTC ने कहा कि इससे यात्रियों का प्रतीक्षा समय कम होगा और सीटों की उपलब्धता बेहतर होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब तक 7,72,000 से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बनाए जा चुके हैं। इनमें करीब 2,90,000 कार्ड वय वंदना योजना के अंतर्गत जारी किए गए हैं।
10: इस योजना के अंतर्गत पात्र नागरिकों को 10 लाख रुपए तक की नगद रहित स्वास्थ्य कवरेज मिल रहा है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 5 लाख और दिल्ली सरकार की ओर से अतिरिक्त 5 लाख रुपए की राशि शामिल है। इसके माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों और पात्र परिवारों को स्वास्थ्य सेवा कवरेज का लाभ मिल रहा है। दिल्ली सरकार के अनुसार इसके तहत अब तक 46,900 से अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। उपचार में अब तक 86,22,00,000 रुपए से अधिक के क्लेम का निपटारा हुआ है। योजना के तहत राजधानी के 233 अस्पतालों में कैशलेस आज की सुविधा दी जा रही है, जिनमें 181 निजी और 52 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने हीटवेव को लेकर तैयारियों की समीक्षा की। लोकनायक अस्पताल में लू से प्रभावित मरीजों के लिए 14 विशेष बिस्तर और 70 बिस्तर का डिजास्टर वार्ड तैयार किया गया है। अस्पतालों में ORS, कूलिंग पैड और आपात सेवाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य हर पात्र नागरिक तक सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए अनुपम मिश्र।
3: दिल्ली नगर निगम MCD ने आज दक्षिणी जोन के कुतुब इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया। निगम की संयुक्त टीम ने PWD और स्थानीय पुलिस के सहयोग से सड़कों तथा फुटपाथ पर बने अवैध ढांचे, प्लेटफॉर्म और ठेलों को JCB मशीनों की मदद से हटाया। कार्रवाई के दौरान शैक्षणिक संस्था

मैदानों और पार्कों की दीवारों के आसपास किए गए अतिक्रमण भी हटाए गए। दक्षिणी जोन के उपायुक्त राकेश कुमार ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने एक व्यक्ति के क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग कर लगभग 9,58,000 रुपए की धोखाधड़ी की। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 50 ग्राम वजन के 4 सोने के सिक्के भी बरामद किए। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने पुलिसकर्मियों को उन्नत साइबर प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा की मौजूदगी में किया गया। पुलिस के अनुसार इस साझेदारी के अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, साइबर फोरेंसिक, साइबर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और अन्य उभरती तकनीकों से जुड़े विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि साइबर अपराध, ऑनलाइन वित्तीय ठगी और गलत सूचना फैलाने वाले अभियान जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को न्यू उस्मानपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 750 क्वार्टर अवैध शराब बरामद की है, जिस पर केवल हरियाणा में बेचने का लेबल लगा था। राजधानी में आज दिन के समय तेज धूप रही और लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल दिन के समय बादल छाए रहने की संभावना है, शाम और रात के समय हल्की वर्षा होने का भी अनुमान है। कल अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री और न्यूनतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभागों के अधिकारियों और विभागाध्यक्षों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। सुश्री गुप्ता ने नागरिकों से भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के बीच सावधानी बरतने की अपील की। समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने शाहबाद डेयरी क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और परवेश साहिब सिंह ने राजौरी गार्डन में अंबेडकर चौपाल और हरिजन चौपाल के पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने साइबर ठगी मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रसारण है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कोरोना काल में आकाशवाणी सूचना का सेतु, जो केंद्रित है कोविड-19 के दौरान जन जागरूकता और सही जानकारी के प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ए.के. वार्ष्णेय और उनसे बातचीत कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: नमस्कार। सन्नाटा, बंद दरवाजे, खामोश सड़कें और हर चेहरे पर एक अनजाना डर। समय था वर्ष 2020 का, जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी के सामने खड़ी थी जिसके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता था। हर दिन आती खबरें, बढ़ते आंकड़े और मन में उठता एक ही सवाल, अब क्या होगा? उस कठिन दौर में जब लोग अपने घरों में कैद थे, जब अपनों से दूरियां ही सुरक्षा बन गई थीं, तब एक आवाज लगातार लोगों तक पहुंच रही थी। विश्वास की आवाज, साहस की आवाज, वो आवाज थी आकाशवाणी की आवाज। आकाशवाणी ने सिर्फ समाचार नहीं सुनाए, बल्कि डर के अंधेरे में उम्मीद का दीप भी जलाया। कभी डॉक्टर्स की सलाह हो, कभी कोरोना से जुड़ी अफवाहों को दूर करना हो, तो कभी अकेले पड़े लोगों को ये एहसास दिलाना कि आप अकेले नहीं हैं। कोरोना जागरूकता श्रृंखला जैसे विशेष कार्यक्रमों ने देश के गांव-गांव, शहर-शहर तक सही जानकारी पहुंचाई। लोग सीधे विशेषज्ञों से जुड़े, सवाल पूछे, समाधान पाए और फिर भरोसा भी हासिल किया। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस विशेष प्रस्तुति में आज हम याद करेंगे उस दौर को जब रेडियो

0: एक माध्यम नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का साथी बन गया था। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ चिकित्सक और राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर ए के वार्ष्णेय, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आइए शुरू करते हैं कोरोना काल में आकाशवाणी सूचना का सेतु। डॉक्टर वार्ष्णेय, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद आपका।
0: शुरुआत यहीं से करते हैं, जब कोविड का आगाज हुआ और सबसे पहले ये चीन के वुहान में ब्रेक हुआ था और जनवरी 2020 में पहला मामला भारत में आया और उस समय ऐसा लगा पूरे देशवासियों को, जैसे जैसे दिन आगे बीतते चले गए, कि अब समस्या गंभीर होने वाली है। लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी और फिर मीडिया में इसको लेकर तमाम तरह की बातें होने लगी और आकाशवाणी ने भी समाचारों के माध्यम से और फिर कार्यक्रमों के माध्यम से इस पर जानकारी दी। उस समय आप आरएमएल में थे, किस तरीके से देखते हैं उस माहौल को, कैसे याद करेंगे पहले?
1: देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मेनली शुरू तो 20 में हुआ था, लेकिन इसका नाम ने कोविड-19 क्यों रखा, क्योंकि जो फर्स्ट केस था वो 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर में रिपोर्ट हुआ, जो कि उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन को रिपोर्ट किया था और विश्व स्वास्थ्य संगठन में 10 दिन के बाद बताया कि भाई ये सार्स कोरोना वायरस 2 है। पहले सार्स कोरोना वायरस 1 हुआ था, लेकिन उसमें म्यूटेशन चेंज हो गए और ये नोवेल वायरस है। नोवेल का मतलब है फर्स्ट टाइम ही अब ये वायरस इस जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ आया और ये बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शस था। इसका इतना था कि अगर आप किसी पेशेंट के नजदीक आ गए और उसको खांसी जुकाम बुखार इसके मुख्य सिम्टम थे तो 100% जो है वो ट्रांसमिशन था। तो बहुत ही कम समय में लगभग पूरे संसार के सारे देशों में ये वायरस फैल गया। तो लोग पैनिक में आ गए कि भाई ये कोई अलग डिजीज है। उससे पहले डॉक्टरों को भी नहीं पता था, स्वास्थ्य संगठन को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। जैसा आपने ठीक कहा कि हमारे देश में जो सबसे पहले केस हुआ वो 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट हुए, जो वुहान से ही हमारे 3 केरल के स्टूडेंट्स थे वो जब लौटे तो वो वहां से इन्फेक्शन लेके आए और उन्होंने वहां पे जो है इन्फेक्शन करा। तो जब गवर्नमेंट को लगा कि भाई ये कुछ सीरियस हो रहा है, इन्फेक्शन फैलना शुरू हो गया, तो सरकार ने पूरे देश में ही लॉकडाउन की स्थिति ला दी।
0: 18 मार्च 2020 को कोरोना को लेकर एक विशेष पहल की गई आकाशवाणी की तरफ से। आकाशवाणी समाचार की अवधि बढ़ाई गई, पहले 15 मिनट के मुख्य समाचार होते थे जो 3 मेजर बुलेटिन हैं, उनकी अवधि बढ़ाकर आधे घंटे की गई और फिर कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से कोरोना जागरूकता श्रृंखला, जो रात को 9:30 बजे का कार्यक्रम आता था, वो 18 मार्च 2020 से शुरू किया गया। आपने उसमें तकरीबन 50 से ज्यादा कार्यक्रमों में विशेषज्ञ के तौर पर लोगों को जन जागरूकता दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उस दौर को आप कैसे याद करते हैं, जब लोगों में भ्रम की स्थिति थी, डर की स्थिति थी, घर की चौखट ही लक्ष्मण रेखा बन गई थी, तो आकाशवाणी की भूमिका को आप कैसे देखते हैं?
1: बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि जब कोरोना जागरूकता सीरीज जो आपने शुरू करी, रोज ही ये प्रोग्राम रात को 9:30 बजे जो आता था और ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम था, जैसे ओपन प्रोग्राम था, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जो है सवाल पूछ सकता था, क्योंकि रोज ही कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रहा था तो रोज नई जानकारी आ रही थी, डॉक्टरों के पास भी जानकारी आ रही थी, जो साइंटिस्ट हमारे दे रहे थे, पब्लिक को भी हम उसी तरीके से जो है वो जानकारी आगे ट्रांसमिट करते थे। और रेडियो जो है शुरू से ही विश्वास का एक माध्यम रहा है और इसकी रीच हर जगह तक है। पूरे हमारे इतने बड़ा कंट्री है, 150 करोड़ के करीब का कंट्री है, सब जगह टेलीविजन की रीच भी नहीं है और माध्यम की भी रीच नहीं है, पर रेडियो हर जगह है, शुरू से ही सुना जाता है। और जिस तरीके से हम देखते थे कि जो हमारे श्रोता थे वो बड़ी दूर दूर से सवाल पूछते थे, तो ये उनका इंटरेस्ट दिखाता था और सब तरीके के सवाल पूछते थे, क्योंकि वो जो डर बैठा हुआ था उसको भी उनको दूर करना था, या कोई जागरूकता थी तो हर तरीके का सवाल था कि भाई कैसे हम इससे बचें बीमारी से, क्या क्या सुरक्षा के उपाय करें, कैसे बीमारी का इलाज हो सकता है या क्या सावधानियां करनी। तो ये सवाल बहुत आए और इसमें मैं समझता हूं कि जो ऑल इंडिया रेडियो की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रही।
0: उस समय सरकार भी बीच बीच में दिशा निर्देश जारी करती थी, चाहे देश के नागरिकों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, सैनिटाइजर को लेकर हो, मास्क पहनने को लेकर हो, या फिर बाजार में जाने को लेकर हो। जब ये दिशा निर्देश आते थे तो बतौर प्रोफेसर, बतौर आरएमएल में एक वरिष्ठ चिकित्सक के नाते, आप कैसे सोचते थे कि कैसे इस जानकारी को हम श्रोताओं तक पहुंचाएं?
1: हाँ, देखिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो जो पीपी किट पर जैसा आया, तो ये तो देखिए स्वास्थ्य कर्मियों के लिए थे, जो हमेशा पेशेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहे हैं, तो बहुत से लोग पूछते थे हम पीपी किट पहने, तो हमने कहा भाई ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, लेकिन मास्क जरूर था, क्योंकि ये जब तक सारे विश्व से जानकारी आ चुकी थी कि जो हमारा N95 मास्क है वो लगभग 95% वायरस को रोक सकता है, लेकिन चूंकि वो महंगा था तो बहुत से श्रोता ये थे कि भाई हम फिर N95 अगर नहीं अफोर्ड कर सकते या कई जगह वो मिलते भी नहीं थे तो फिर कौन से मास्क पहने। तो ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क होते थे जो कि लगभग 70% उस वायरस को रोकने में मदद करते थे। कई जगह जैसे रूरल में था कि भाई वो इतने अफोर्डेबिलिटी नहीं थी, मास्क भी नहीं मिल पा रहे थे, तो सिंपल कॉटन के मास्क थे तो वो भी जो है लगभग 50% के करीब बीमारी को रोकते थे। तो यही जो जागरूकता लोगों को हम लोगों ने दी कि भाई जो भी मास्क अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो N95 कर लें, नहीं तो कोई भी मास्क पहने। काफी देखिए रिसर्च हुई और ये देखा गया कि अगर जो है बिना मास्क के दो व्यक्ति मिलते हैं और एक को भी इन्फेक्शन है तो दूसरे को लगभग 100% इन्फेक्शन होने की संभावना है, लेकिन अगर एक व्यक्ति मास्क पहन लेता खासतौर से जिसको बीमारी है और दूसरा नहीं पहनता तो उसका इन्फेक्शन रेट जो है कम से कम जो है 25% कम हो जाता है। अगर दोनों व्यक्ति मास्क पहन लेते हैं तो इन्फेक्शन रेट 75% गिर जाता है, और अगर N95 पहन लेते हैं तो वो 95% से कम गिर जाता है, लेकिन कोई सा भी मास्क जो है वो आपको प्रिवेंट करेगा। फिर मास्क के बारे में भी भ्रांतियां थी क्योंकि मास्क गीले हो जाते थे, हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, सैनिटाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते, एल्कोहल बेस्ड बहुत सी चीजें थी कि भाई उनसे हम सैनिटाइज कर सकते हैं, या एल्कोहल टाइप के बहुत से हमारे सैनिटाइजर थे कि उससे हम अपने हाथ को साफ कर सकते हैं अगर साबुन कहीं पे नहीं मिलता। वैसे तो साबुन सबसे अच्छा था, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कई जगह अगर नहीं है या मार्केट में आप जा रहे हैं आपको लगता है किसी इन्फेक्टेड चीज के कॉमन में आ गए तो एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर मार्केट में उपलब्ध थे, लोग उससे करते थे तो उससे वायरस मर जाता था। तो ये जानकारियां देने में, और चूंकि ये जानकारियां रोज नई नई आती थी क्योंकि देखिए एक साथ तो ये रिसर्च हो नहीं सकती कि कौन सा मास्क वायरस रोक लेगा कितना रोक लेगा, तो अल्टीमेटली ये था कि भाई अगर कुछ भी नहीं है तो दूरी बना के रखिए। सबसे बड़ा यही मैसेज उस समय का था कि भाई पॉसिबल हो तो दूरी बना के रहिए, मतलब आइसोलेशन जिसको हम बोलते हैं। घर में तो आइसोलेशन हो नहीं सकता इतना आसान, लेकिन घर में भी ये था कि अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो वो अगर हमारे पास सुविधा है तो उसको अलग कमरे में रख दें, उसका वॉशरूम अलग हो, उसको भोजन वगैरह या दवाई वगैरह बाहर से ही दे दें और वो मास्क जरूर पहन ले, बाकी लोग भी पहन सकें तो अच्छी बात है। और समाज में भी ये था कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो उसके लिए पहले तो लॉकडाउन ही कर दिया, लॉकडाउन का पर्पज ही यही था कि भाई एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, सारा ट्रेवल बंद कर दिया, सारी ट्रेनें बंद हो गई, बसें बंद हो गई, ट्रांसपोर्ट बंद हो गया, और उसका फायदा भी हुआ, उससे जो इन्फेक्शन था उसकी स्प्रेड रेट काफी कम हो गया। और लोगों में फिर डर तो रहता है क्योंकि देखिए हर आदमी अपना घर भी नहीं बैठ सकता, उसकी रोजी रोटी भी रहती थी, तो उनको फिर यही कहा गया कि किस तरीके की आप जो है अपनी सुरक्षा के उपाय करके और किस तरीके से आप आ सकते।
0: उस समय डॉक्टर वार्ष ने ऐसा कहा जाए कि सूचनाओं की बाढ़ सी भी आ गई थी, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें पोस्ट हो रही थी कि अगर आप ये काढ़ा पी लेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा, इस तरह के मास्क पहनने से नहीं होगा, या फिर छूने से कोरोना आपको हो जाएगा, आपके घर में कोई है तो उसे दूरी बनाकर रखें, एक तरीके से एक अकेलापन भी मरीजों में आ रहा था। आपको क्या लगता है आकाशवाणी ने इन सोशल मीडिया पर जो भ्रामक विज्ञापन चले या जिन्हें मिथक भी हम कह सकते हैं, इन मिथकों को तोड़ने में कितनी अहम भूमिका निभाई?
1: नहीं, बहुत ज्यादा भूमिका है, क्योंकि देखिए आपने सारे विशेषज्ञों को बुलाया जो अपनी अपनी फील्ड में विशेषज्ञ थे, जो साइंटिस्ट थे, मेडिकल साइंटिस्ट थे, रिसर्च वाले थे, और उनको जो भी जानकारी मिलती थी तो वो साइंटिफिक जानकारी होती और उसके जरिए हम देते थे, तो ये जो इस तरीके की जो बहुत सी भ्रांतियां थी उनको तोड़ने में हमें मदद मिली। क्योंकि कई बार लोग हमने देखा कि अखबार भी जो है छूने से डर रहे थे, दूध के पैकेट भी है उनको भी छूने से डर रहे थे, फल कोई बाजार से लाए पता नहीं हमको इससे भी ना इन्फेक्शन हो जाए, तो ये सवाल मेरे सामने भी बहुत आए। लेकिन हम लोगों ने कहा कि इस तरीके से इन्फेक्शन नहीं होता, इन्फेक्शन हमेशा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस था, ये इन्फेक्शन हमेशा जब ही होगा जिसको कोरोना है और जब वो खांसता है छींकता है तो ये वायरस के जो पार्टिकल है उसके थूक में या खांसी में बाहर आते हैं और ये उसको इन्फेक्टेड करते हैं। तो अगर ये एस सच नहीं है तो एक दूसरे को छूने से या पास में रहने से इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, जो व्यक्ति बीमार है उसको जरूर हम कहते थे कि भाई आइसोलेट कर दें, जो सबसे बढ़िया सुरक्षा का उपाय था, और सरकार की भी ये गाइडलाइन थी कि अगर किसी को भी कोरोना जैसे सिम्टम हो रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको टेस्ट करा लेना चाहिए तुरंत, और सरकार ने ये सुविधा उपलब्ध कराई हुई थी सारे सरकारी अस्पतालों में, बाकी कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी उपलब्ध थी, और उसमें अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो तुरंत ही अपने को आइसोलेट कर दें, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो काफी व्यक्तियों को इन्फेक्शन फैला सकता है। तो इस तरीके की जो साइंटिफिक हमने नॉलेज दी और जो भ्रांतियों को तोड़ा, इसमें मैं समझता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो का सबसे बड़ा योगदान रहा।
0: और जैसा कि अभी कुछ समय पहले आप जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे श्रोता जो हैं वो फोन कॉल के जरिए सवाल पूछते थे, जो उनका डर था, जो उनका भ्रम था बाहर निकलें कि न निकलें, किससे मिले किससे न मिले, क्योंकि रोजी रोजगार भी एक ऐसा विषय था जिसके बिना जीवन आगे नहीं बढ़ सकता था। आपको क्या लगता है जब इस तरीके से इंटरेक्शन डॉक्टर्स के साथ हो रहा था, विशेषज्ञों के साथ हो रहा था, उससे भी भरोसा बढ़ा? आकाशवाणी ने उसमें भी अहम भूमिका निभाई।
1: हाँ, देखिए सबसे बड़ा ये होता है कि एक मोनोलॉग होता है। अगर मैंने एक बात सिर्फ आपको कह दी तो आपके मन में हो सकता है कोई जिज्ञासा हो, वो दूर नहीं हो पाती। लेकिन जो डायलॉग होता है, जैसे जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और लाइव पूछ रहे हैं, उसी समय उसके मन में कोई सवाल आया और उसी समय हमने उसका तुरंत जवाब दिया, तो हमेशा जो डायलॉग में उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता। बीच में जैसे एक क्वेरी के साथ मान लीजिए मैंने एक जवाब दिया, उसके मन में एक दूसरी क्वेरी भी है, उसका भी उसी समय जवाब मिल गया, तो उसकी सारी भ्रांतियां दूर हो जाती हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो कोरोना जागरूकता प्रोग्राम है, इससे शायद बढ़िया जो है नेशनल लेवल का प्रोग्राम कोई सा भी नहीं था।
0: फिर बीच में कई सारी कोरोना की लहर भी आई। पहली लहर उतनी ज्यादा मारक नहीं थी, लेकिन जब दूसरी लहर आई जो डेल्टा की लहर थी, उसमें मौत के मामले काफी देखे गए, पूरी दुनिया में देखे गए, और भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। लेकिन सरकारी प्रयासों ने बहुत हद तक उन आंकड़ों को कम करने में और लोगों को राहत पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। वहां आकाशवाणी ने कई सारे प्रयास किए, लोगों के साथ मैसेज भी किए, बातचीत भी किए, व्हाट्सएप पर भी सवाल मंगाते थे कि अगर आपकी कोई समस्या हो। उस समय जो स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव था और जागरूकता के नजरिए से देखें तो कितनी अहम भूमिका आप मानते हैं, क्योंकि आप खुद एक अस्पताल में उस स्थिति में थे जहां बहुत सारे दबाव आपको झेलने पड़ रहे हैं।
1: बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि शुरू में तो इस तरीके का जब वायरस आया तो वो हल्का था, उसकी स्ट्रेन थी, वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा कर रही थी गले के और ये। लेकिन जब एक साल के बाद जो है मार्च 21 में जो वायरस था वो म्यूटेशन कर चुका था और वो डेल्टा वायरस था, इसी का नाम हमने डेल्टा रखा, और वो इतना हाईली इन्फेक्टेड भी था, प्लस उसने निमोनिया कर दिया, और निमोनिया के करने से जो है ऑक्सीजन की कमी होने लगी, तो उसमें भर्ती सबको करना पड़ा। तो उस समय बिस्तरों की उपलब्धता बहुत कम हो गई, ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज पड़ने लगी, और दवाइयां भी पता नहीं थी कि कौन सी दवा काम करेगी, तो जो भी नई नई रिसर्च आती थी सब करते थे, लेकिन कोई भी दवा 100% इफेक्टिव नहीं हो रही थी। तो लोगों में बहुत ही ज्यादा डर फैला होता है, और डर इस बात का भी था कि जैसे किसी को पॉजिटिव हो गया, थोड़ी भी सांस फूल ली तो वो ये चाहता था कि मेरे को भर्ती कर दिया जाए, जिससे कि मैं सुरक्षित जगह पहुंच जाऊं। पर इतने बिस्तर तो थे नहीं, हमारा इतना बड़ा देश था, तो उसमें जो एश्योरेंस देना था कि भाई किस स्टेज पे जो है आप अपने घर में जो है पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह ले लें, उस समय ये चल गए थे ऑक्सीजन नापने के यंत्र, तो उससे अपने ऑक्सीजन नापते रहे और बुखार को नापते रहे। अगर आपका ऑक्सीजन जो है गिरता है 95 से नीचे आ जाता है या 90 नीचे, तो फिर तुरंत भर्ती करें। अगर उस बीच में रहता है तो आपको हम घर पे भी मैनेज कर सकते हैं, तो उससे लोगों का पैनिक कम हो गया। और सरकार ने कई हेल्पलाइन भी कर दी जिसमें पेशेंट अपने घर से ही जो है अपनी बात के बुखार कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना है, वो करता था, तो उससे एश्योरेंस मिलता रहता था। और इस तरीके के एश्योरेंस में आपका भी जो प्रोग्राम था जागरूकता प्रोग्राम, इसने बहुत ज्यादा मदद करी, और हम काफी मरीजों को ये एश्योरेंस दे पाए कि सबको भर्ती होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश बहुत बड़ा देश है, इतने बेड कहीं सडनली उपलब्ध नहीं हो पाते थे, तो उन लोगों को जरूर बेड मिल जाए जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और जिनको हम ऑक्सीजन से या और सुविधाओं से बचा सके। लेकिन चूंकि पैनिक में बहुत से लोग जो इतने गंभीर नहीं है वो भी भर्ती होना चाहते हैं, तो उस चीज को रोकने में कि भाई आपको इतनी तुरंत आवश्यकता नहीं है, और इस तरीके के जो जागरूकता प्रोग्राम है उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की।
0: जब घर में कोई बीमार पड़ता है डॉक्टर साहब, तो बहुत सारे लोग उसकी केयर के लिए आ जाते हैं, उसको साथ देते हैं, चाहे शारीरिक उसकी सेवा करते हैं या फिर इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं, लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जिसमें दूरियां हो गई। अगर घर में आपकी माँ, आपके पिता, आपके बच्चे अगर कोरोना से ग्रसित हैं तो चाहकर भी लोग नहीं जा रहे थे। ऐसे में आपको लगता है कि आकाशवाणी ने अपने कार्यक्रमों और समाचारों के माध्यम से एक इमोशनल सपोर्ट सिस्टम भी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई?
1: हाँ डेफिनेटली, ये पहली शायद अनुभव हुआ लोगों को कि हमारा कोई प्रियजन बीमार है तो हम उससे नहीं मिल सकते और डॉक्टर भी उसको नहीं मिलने दे रहे, क्योंकि उसका कारण है कि प्रियजन के साथ आप भी बीमार हो जाएंगे अगर आप उसके पास गए। क्योंकि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ तो सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो एक प्रोटेक्टेड गियर के साथ कर रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपी पहन के कर रहे हैं, जिससे कि इन्फेक्शन फैलने का डर नहीं होता। और एक दूसरे एनवायरमेंट में कर रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ अपने प्रियजन से मिलना चाहते हैं तो आपको वो पीपीई किट या सब चीज तो उपलब्ध

0: नहीं कराई जा सकती सब जगह, तो आपको इन्फेक्शन होने का, तो एक घर में अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है और उसके चार प्रियजन मिले तो पता लगा चारों के चारों व्यक्ति दो। तो ये चीज समझाने में और आपका ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा मददगार रहा। और उस समय देखिए अन्य कई ऐसी परिस्थितियां आ गई जो पहले कभी किसी ने सुनी नहीं। इनफैक्ट कई बार जो है मृत्यु होने पर उनको एक अलग तरीके के जो है उसमें पैक करके बॉडी को सीधा शमशान गृह तक पहुंचाया जाता था और किसी को भी उससे नहीं मिलने दिया जाता था, न उनके अटेंडेंट को न किसी को, और उसको जिससे कि वायरस किसी को भी न फैल जाए। तो ये बहुत ही अजीब तरीके की स्थिति थी, लेकिन इसमें उनके इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए या पूरे देश में इसी तरीके का हो रहा है तो ये मैसेज समाचार पहुंचाने के लिए कि ये उनके अपने हित के लिए, तो वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और डेफिनेटली जितने भी आपके माध्यम है, आपका ऑल इंडिया रेडियो तो बहुत बड़ा रीच रहा, अखबारों के माध्यम से भी, टेलीविजन के, हर माध्यम से यही कोशिश दी गई कि भाई ये कुछ अलग ही तरीके की परिस्थिति है और इसको अलग तरीके से ही जूझना पड़ेगा।
1: उसके बाद एक दौर आया जब वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। WHO ने कहा कि वैक्सीन को लेकर दुनिया के कुछ देशों में काम चल रहा है, इस पर टेस्टिंग भी चल रही है, तीन चरणों में टेस्टिंग की जा रही है, पहले जानवरों पर, उसके बाद कुछ स्वयंसेवकों को आगे किया गया कि जो लोग स्वेच्छा से इसकी टेस्टिंग कराना चाहते हैं। उस समय भी एक बड़ा भ्रम का दौर आया कि वैक्सीन लगवाएं, वैक्सीन सही है नहीं है, इस भ्रम को दूर करने में बतौर विशेषज्ञ किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा?
0: बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि जब कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा था तो ये चीज जो साइंटिस्ट कम्युनिटी, उनको समझ में आ गया कि इसको रोकने का और कोई तरीका नहीं है और इससे बचने का तरीका कि हम जल्दी से कोई वैक्सीन डेवलप करना है। लेकिन वैक्सीन डेवलप करना बहुत ही टेढ़ा काम होता है साइंस में, लेकिन इस कोरोना में बहुत तेजी से वैक्सीन डेवलप हुई और कई जगह जैसे फेज 3 ट्रायल होती है उसके बाद ही हम अप्रूवल करते थे। तो खासतौर से जैसे हमारी जो इंडिजिनस वैक्सीन थी, कोवैक्सीन थी, उसकी फेज 3 ट्रायल भी नहीं हुई पर उसको इमरजेंसी जो है अप्रूवल दिया गया। दूसरी वैक्सीन जो है वो ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड थी, उसके 3 ट्रायल आ चुके थे और उसको दिया। और उससे जो है 16 जनवरी 2021 से सबसे पहले हमारे देश में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ। लेकिन लोगों को डर था कि उनको पता है पूरी जांचें हुई नहीं है, वैक्सीन के ट्रायल नहीं हुए, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई हम लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और ये डर उनका जेन्युइन था। तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले ये कहा कि भाई जो वैक्सीन है शुरू में, वो 1 करोड़ जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंट मेन वर्कर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सबसे पहले हम उनको वैक्सीन लगाएंगे। इसके दो बातें हुई, एक तो ये होता है कि हेल्थ वर्कर सबसे ज्यादा रोज ही चूंकि उनको पेशेंट के कांटेक्ट में रहना, तो ना चाहते हुए उनके इन्फेक्शन रेट ज्यादा हो सकता, और दूसरे ये है कि लोगों में ये भ्रांति दूर करने में कि भाई जो खुद मरीजों की सेवा कर रहे हैं जब वो वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं तो इसके मतलब ये सुरक्षित है, क्योंकि वो अपनी जान बचाने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई, सारे उन्हें मतलब जितने भी हेल्थ वर्कर थे, एम्स में सबसे पहले शुरू हुई, हमारे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में शुरू हुई और भी सरकारी अस्पतालों में शुरू हुई, और सबसे पहले डॉक्टरों ने और हेल्थ वर्कर ने लगाई। और उसमें रोज लिस्ट आती थी सरकार की तरफ से कि भाई इन इन लोगों को आज लगवाना है, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता कम थी। खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सबसे पहले बैचों में आके जो है वो वैक्सीन लगवाई। उससे ये मैसेज गया कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और इसको सबको लगवाना चाहिए। तो ये डेफिनेटली जो डर बैठा हुआ था कि वैक्सीन हम ना लगवाएं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन लगवाने से और बीमारी हो जाए, हमें कोरोना वैक्सीन लगवाने से हो जाए या हमारी हालत और खराब हो जाए या और कोई सीरियस साइड इफेक्ट हो जाए, तो वो भ्रांति दूर करने में काफी मदद मिली। और इसमें डेफिनेटली जो ऑल इंडिया रेडियो का जो आपका जागरूकता सीरीज थी उसने बहुत ज्यादा मदद की।
1: और वैक्सीन को लेकर यह भी था कि वैक्सीन लगवाने के 2-3 दिनों तक आपको माइल्ड फीवर भी आ सकता है, कुछ लोग उससे भी डर रहे थे, और कुछ तबका यह भी कह रहा था कि जो लोग हार्ट की समस्याओं से परेशान है, किडनी की समस्याओं से परेशान है, उनकी स्थिति और खराब भी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे मामले आपके भी प्रकाश में आए होंगे।
0: हाँ बिल्कुल, देखिए ये भ्रांतियां पहले भी नहीं, ये वैक्सीन नहीं है, ये उससे पहले कई और वैक्सीन भी रही, उनमें भी जो है ये भ्रांतियां एक समाज में रही कि हम पोलियो की वैक्सीन ना लगवाएं, कि हम और वैक्सीन ना लगवाएं, कहीं इससे हमारे को ये खासतौर से जो फर्टिलिटी का इशू है, ये बड़ा इमोशनल इशू है, लोगों में ये गलत जागरूकता है कि वैक्सीन लगवाने से हमारी फर्टिलिटी पे असर पड़ सकता है या हमको और सीरियस बीमारियां हो सकती है। प्लस देखिए जैसे वैक्सीन का होता है, ये जब भी वैक्सीन होती है तो 100% सुरक्षित नहीं होती, काफी हद तक होती। जैसे पुरानी भी कई वैक्सीन है उनमें भी जो है 10 लाख में एक आध केस ऐसा होता है जिसमें हमारे नर्व अफेक्टेड हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है। तो लोग उसी चीज से डर जाते हैं, अरे भाई देखो एक तो हो गया ना 10 लाख में,

0: तो लेकिन जब यही एश्योरेंस दिया कि भाई ज्यादातर केस में सिर्फ आपको हल्का सा जहां पे इंजेक्शन लगा वहां आपको दर्द हो सकता है, 24 घंटे या 48 घंटे तक आपको शरीर में दर्द हो सकता है या बुखार हो सकता है, कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। और फिर जैसे जैसे इसकी जानकारी बढ़ गई, देखिए जब लाखों लोगों को वैक्सीन लग गई और चूंकि उसकी रोज रिपोर्टिंग होती थी, डेली जो है उसकी ये होती थी कि अभी जिन लोगों को वैक्सीन लगी है अगर उनको कोई भी सिम्टम हो रहे हैं तो वो उसको रिपोर्ट करें, मतलब केवल सिंपल इवन बुखार भी है, शरीर में दर्द है, उसको भी रिपोर्ट करें। तो जब ये रिपोर्टिंग से धीरे धीरे हो गया कि किसी को भी कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। शुरू में रेसिस्टेंस था लेकिन फिर कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर लोगों ने जो सेकेंड डोज भी लगनी थी वो भी काफी लोगों ने लगवा ली, पहले जो है फर्स्ट डोज से भी हिचक रहे थे, फिर काफी लोगों ने फर्स्ट डोज लगवा ली, फिर सेकेंड डोज भी जो है बूस्टर जिसको हम बोल रहे थे वो आपको लगना था, सेकेंड डोज 4 से 6 हफ्ते के बाद कोवैक्सीन का लगना था और 4 महीने के बाद जो है ऑक्सफोर्ड का जो कोविशील्ड का लगना था, तो वो शुरू में डरे हुए थे लेकिन बाद में वो भी लगवा लिए। तो ये सब भ्रांतियां दूर करने में या लोगों को मदद करने में या उनके मन से जो डर को हटाने में ये जो जागरूकता सीरीज है, क्योंकि रोज ही जब इस तरीके के प्रोग्राम जाते थे, रोज नए नए डाटा आते थे, तो उससे लोगों में जो है भय की स्थिति कम होती चली गई और वो आगे आके जो है वैक्सीनेशन कराने लगे।
1: लगभग 500 से ज्यादा कार्यक्रम और आकाशवाणी समाचारों की अलग अलग पहल से कोशिश की आकाशवाणी ने कि लोगों को जागरूकता पहुंचाई जा सके, सही जानकारी दी जा सके। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इसी उपलक्ष में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आकाशवाणी की हमेशा से कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि हम लोगों की भ्रांतियों को दूर करें। कोरोना से जुड़ी एक भ्रांति अभी भी डॉक्टर साहब बहुत सारे लोगों के जहन में है कि हमने वैक्सीन लगवाई थी इसलिए अब हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, हमने वैक्सीन लगाई थी इसलिए अब माइग्रेन हो गया, उससे पहले तो हम ठीक थे, वैक्सीन लगाने के बाद ही ये समस्या हो गई। आपके पास भी बहुत सारे पेशेंट आते होंगे इस तरह की समस्याओं को लेकर या इस तरह की मनस्थिति को लेकर, क्या कहेंगे आप?
0: हाँ देखिए, बिल्कुल ये भ्रम रहा काफी दिनों तक और अभी भी बीच बीच में हमारे समाज में चलता रहता है या मीडिया में आता रहता है, लेकिन इस पे फिर काफी रिसर्च की गई, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी रिसर्च करी, हमारे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी रिसर्च हुई और ये पाया गया कि किसी तरीके से कोविड की वजह से ना तो हार्ट की बीमारियां बढ़ी ना ही किसी और तरीके की बीमारियां बढ़ी, बल्कि कोविड की वजह से लाखों लोगों की जान बचाने में हम सफल हुए। तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ ये जरूर है कि देखिए जो कोविशील्ड थी उसमें कुछ केसेस जरूर रिपोर्ट हुए कि यहाँ पे क्लॉटिंग हुई, जो कि उन्होंने अपने रिपोर्ट में भी कहा था कि रेयर एक्सेप्शन है कि कुछ लोगों में क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ब्रेन में क्लॉटिंग वगैरह हो गई थी, पर वो जैसे 10 लाख में एक केस या उस तरीके का था, तो वो हर वैक्सीनेशन के साथ हो सकता है। फॉर्चुनेटली कोवैक्सीन जो हमारी इंडिजिनस वैक्सीन थी उसके साथ कोई भी जो है ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ।
1: जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक कोरोना हुआ, बहुत कमजोर भी हो गए, बहुत तरह की समस्याओं में भी आ गए, जो ये कार्यक्रम अभी हमारा सुन रहे हैं, उनकी ओर से ये सवाल कि जो लोग बहुत लंबे समय से कोरोना से परेशान रहे, क्या उनको भविष्य में किसी तरह की और स्वास्थ्य समस्याओं का डर है, हिचक है, क्या ध्यान रखें?
0: सही बात है कि देखिए जिन लोगों को पहले से काफी बीमारियां थी, जैसे किसी को डायबिटीज की बीमारी थी, हार्ट की बीमारी थी, लंग्स की बीमारी थी, कैंसर की बीमारी थी, उन लोगों में जब कोविड हुआ तो वो सीरियस हुआ और वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए। अनफॉर्चुनेटली करीब 1.5-2% लोगों की डेथ भी हो गई और जो उसमें बच गए वो 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने आईसीयू में रहे और वो वहां का जो अनुभव है वो बहुत ही जो है दुखदायी होता है। उससे बढ़ गए तो वो डर हमेशा बना रहता है उनके घर में, प्लस वो क्रॉनिक बीमारियों से वैसे भी जूझ रहे हैं। लेकिन सिर्फ अब उनको मैं यही आश्वासन देना चाहता हूं कि भाई आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप कुशल चिकित्सक के पास जाएं और उसका निदान करें, केवल अपने मन में वो उस दुविधा को ना रखें या ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए जो आपको गलत तरीके की सूचना दे रहे हैं और उससे डर से अपनी मानसिक स्थिति को भी और शारीरिक स्थिति दोनों को भी खराब करें।
1: बहुत संक्षेप में आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना ने आत्मनिर्भर भारत की एक मजबूत छवि पेश करने में भी अहम भूमिका निभाई।
0: बिल्कुल, देखिए कोरोना सबसे बड़ा था कि जहां हमने वैक्सीन जो है अपनी इंडिजिनस वैक्सीन इतने कम समय में बनाई और कई देशों को एक्सपोर्ट भी की, क्योंकि जो कोविशील्ड भी थी वो भी रिसर्च तो टेक्नोलॉजी इंग्लैंड की थी लेकिन सबसे ज्यादा बनी हमारे यहाँ और हमने उसको बाद में एक्सपोर्ट भी किया, हालांकि जब वो शॉर्टेज हो गई थी तो उसको कुछ समय के लिए एक्सपोर्ट रोकना पड़ा। तो ये हमारा जो आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा था, क्योंकि अगर हम वैक्सीन नहीं बना पाते तो हमारे इतने 140 करोड़ के देश में बाहर से वैक्सीन लाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो बाहर की वैक्सीन थी, स्पुतनिक वैक्सीन थी, मॉडर्ना वैक्सीन थी या और थी, वो बहुत ही ज्यादा महंगी थी और हमारा देश उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था।
1: कोरोना का वो दौर शायद हम कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन उस कठिन समय में हमने ये भी देखा कि सही जानकारी सही समय पर कितनी जिंदगियां बदल सकती है। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें नहीं दी बल्कि हौसला दिया, डर के बीच भरोसा जगाया और दूरी के दौर में लोगों को जोड़े रखा। डॉक्टर प्रोफेसर ए के वॉश ने बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने अनुभव और मार्गदर्शन से हमारे श्रोताओं को एक बार फिर जागरूक किया। आकाशवाणी के 90 वर्षों का ये सफर सिर्फ प्रसारण का नहीं बल्कि विश्वास का इतिहास है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका।
2: अभी आप आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारा विशेष कार्यक्रम कोरोना काल में आकाशवाणी सूचना का सेतु सुन रहे थे, जो केंद्रित था कोविड-19 के दौरान जन जागरूकता और सही जानकारी के प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ थे डॉक्टर ए के वार्ष्णेय और उनसे बातचीत कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। प्रस्तुति सहयोग विशाल कुमार का था। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान और तुषार पाराशर, संयोजक थे प्रमोद कुमार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके ठीक बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वही विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी।

0: विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
1: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्यक्षेत्र में उठा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैम्प दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Center approves extension of Sarthak PDS scheme to modernize public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2-3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल।

0: in his Party of India Marxist in Thiruvananthapuram. The ED today conducted raids at multiple locations, including the residences linked to former Chief Minister Pinarayi Vijayan at Thiruvananthapuram and Kannur. The officials were attacked in Thiruvananthapuram while they were returning after carrying out searches, and their vehicles were allegedly vandalized. BJP State President Rajiv Chandrasekhar condemned the attack, while State Home Minister Ramesh Chennithala assured strict action against those involved. The CPM, however, termed the raids politically motivated. Indian shooter Isha Singh today broke the world record in the women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup in Munich. 21-year-old Isha earned 43 points from a possible 50 in the final to surpass the previous record of 42 points held by South Korea's Kim Ye-ji and claimed the gold medal. India has been awarded the hosting rights for the 2027 Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships. The decision was taken at the Executive Council meeting of the Asian Athletics Association held in Hong Kong ahead of the Asian Under-20 Championships beginning tomorrow. World Athletics Vice President Adil Sumariwala said the 2027 Asian Relays will be held in Chandigarh, while Bhubaneswar will host the 2028 Asian Indoor Championships. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 234 for 6 in 18.1 overs against Sunrisers Hyderabad in the eliminator match in New Chandigarh when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves extension of Sarthak BDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं तनवीरुल फरीद. पहले खबरों की सुर्खियां. मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है. इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं. वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की एसआईआर मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है. उसने कहा है कि ये मश्क आजाद और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी. आसाम असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है और इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है. भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने म्यूनिख के आईएसएसएफ आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है. अब खबरें तफसील से. मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मरकजी काबीना की जानिब से सार्थक पीडीएस के दूसरे मरहले के लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दिए जाने को सराहा है. एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सरकार गरीबी दूर करने की स्कीमों को टेक्नोलॉजी से लैस कर रही है ताकि उन्हें और ज्यादा शफाफ और आसान बनाया जा सके. वजीर दाखला ने मजीद कहा कि एआई की मदद से मुस्तफीद होने वाले अफराद का अंदराज जीपीएस के जरिए ट्रैकिंग और क्यूआर कोड जैसे आला टेक्नोलॉजी निजाम के जरिए गरीबों को स्कीमों के 100% फायदे मुहैया किए जा सकेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों की बढ़ती हुई लॉजिस्टिक लागत के लिए इक्तिसादी मदद की भी गुंजाइश रखी गई है. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے عہد بند ہے کہ ملک میں عوامی نظام تقسیم پی ڈی ایس کے ذریعے ہر ضرورت مند فرد کو وقت پر اناج فراہم ہو۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ اس سمت میں پی ڈی ایس کو زیادہ جدید

0: और मुअस्सर बनाने के लिए फैसला किया जा रहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये अकदाम PDS के तहत फराहमी, लॉजिस्टिक और नकलो हमल के इंतजाम को मजीद शफाफ और मुअस्सर बनाएगा, जिसके साथ साथ ये शिकायतों को हल करने में तेजी भी लाएगा। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इतलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये स्कीम अनाज के एक रियासत से दूसरी रियासत में नकलो हमल के लिए रियासती एजेंसियों, राशन की दुकानों और अवामी निज़ाम में तकसीम की जदीदकारी में मदद फराहम करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम में तीन बड़े AI पर मबनी मॉड्यूल होंगे, जिनके नाम हैं निर्मल, आशा और सक्षम। उन्होंने कहा कि निर्मल एक AI की क्यादत वाली रियल टाइम PDS मुस्तफेदीन का निज़ाम है। आशा एक कसीर लेसानी मस्नूई जहानत का शिकायतों के इजाले और शहरियों को मुंसलिक करने का प्लेटफॉर्म है, जबकि सक्षम AI पर मबनी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है, जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग भी होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह स्कीम खुराक के तहफ्फुज के कौमी कानून के तहत अहाता किए गए 81,35,00,000 अफराद के लिए हुकूमत के अहद को पूरा करने की जानिब काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मौजूदा PDS स्कीम की जगह नहीं लेगी।
1: ये सुधार है PDS के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में, और PDS के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और PDS एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जितना मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने सबको मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और जब कभी घर से बाहर जाएं तो पानी के बोतल के साथ जाएं। गर्मी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुनबा के अफराद और अजीजो अकरबा के राबते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्होंने ज्यादा मिकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं, उन्हें तीसरे पहर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकनियों में, छतों पर, दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भरकर रखें। वजीर आजम ने हर किसी पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल अय्याम में मुकम्मल हसासियत और जज्बे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है, उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की, किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है, उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
2: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त

0: तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में पिंक सिटी रनर अमा दीदी बाहिनी नामी ख्वातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ ख्वातीन के लिए ये बस सर्विस पूरे तौर पर ख्वातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी, जिसका मकसद ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की 7वीं तकसीम असनाद की तकरीब से खताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमुई तरक्की के लिए शुमाल मशरक की तरक्की इंतहाई अहम है।
2: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
1: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फेरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और ये भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को आवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फेरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी करने का इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फेरिस्तों पर खुसूसी जामे नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कि SIR का अमल आजाद और शफाफ इंतखाब करने के मकसद को हासिल करना रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूद तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत ने मजीद कहा कि चुनाव कमीशन ने जो वजूहात रिकॉर्ड की हैं उनका वाज़े मकसद इसकी बुनियादी सियासत को बरकरार रखना है। इनमें 4 दहाइयों से ज्यादा मुद्दत पहले खुसूसी नजरसानी कराना, पिछले बरसों में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान का इजाफा होना और हजफ करना, नीज तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरी इलाके और नकल मकानी के मामलात शामिल हैं, जिनकी वजह से चुनाव फहरिस्तों में मुसन्ना साजी और अदम दुरुस्तगी का इम्कान हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। असम कानून साज असेंबली ने आज यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आसाम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड आसाम बिल 2026 को पीर के रोज 16वीं आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने आज इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मंजूर किए जाने पर आसाम के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड उस वक्त से बीजेपी का अज्म रहा है जब से इसका कयाम अमल में आया है। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने इस साल हज के दौरान भारतीय आजमीन हज को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने पहली बार सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए आरजी आंसर की जारी की है। एक बयान में कमीशन ने कहा है कि जो उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए हैं वो 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर दस्तयाब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पर अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं।

एक बड़ी छापेमारी में गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी के स्क्वाड और भारतीय साहिली मुहाफिजों ने आज गुजरात में कुछ जिले के साहिल के पास 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुश्तबा मनशियात के 115 पैकेट जब्त किए। ये मनशियात एक कश्ती से बरामद की गई जो कच्छ मुंद्रा बंदरगाह की जानिब जा रही थी। म्यूनिख में मुनक्किदा ISSF वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकिर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने मुमकिना 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हुकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बरेआजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजाम तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक PDS स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश के सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे।

0: अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद चार टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की। और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोडबोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य IAS अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो 1 अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1 करोड़ 50 लाख है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था। ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज की रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों का होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही है उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं। वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई

0: इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
1: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा, नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी, 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं, हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी, जिनके लिए CAA जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया, कुछ कारण तो पर्यावरणीय, कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी। तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे है बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में, तो उस समय उजागर हुआ था। ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक, कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे, वहां बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से, 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है, और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए है उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बात की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है, और हमारे पास इसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दो अलग अलग बॉर्डर्स पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं, तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है, और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देंगे और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
0: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर

0: नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है। घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो, तो आपको जरूर घुसपैठी का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं। कुछ सीमित नहीं करते हैं, इसके लिए भी कानून है। किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे। ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
2: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज आईजी बीएसएफ पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले बीएसएफ क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने बीएसएफ के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा से पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी के रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए, अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है, ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसपे हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूं कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ जितना भारत सरकार का आकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
3: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार

0: चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और कुछ सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
1: जी
0: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट में उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेंट उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का, एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? और बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई, तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, एक आई कार्ड दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ये आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
1: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव दैट डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land. Our culture is marginalized in our own land. Economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue. But one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting. And God will bless us, we'll survive.
1: प्रफुल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
0: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल की चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज झकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य केंद्र पर की ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये

0: ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था नक्सलवादी समस्या के बारे में, तो तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा, केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द तीन चले डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
3: देखिये, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ इसकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
0: देखिये, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरे के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन

0: ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
5: ये सुधार है PDS के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और PDS के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और PDS एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
6: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
4: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
7: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
4: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक

0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों को विशेष ध्यान रखने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने हैदराबाद को 244 रन का विशाल लक्ष्य दिया है। जवाब में हैदराबाद की टीम ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में 3 विकेट पर 53 रन बना लिए हैं। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में ताबड़तोड़ 97 रन की पारी खेली। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The Cabinet Committee on Economic Affairs CCEA today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling, Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते?
1: द मिनिस्टर सेड द स्कीम विल वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू 81.35 करोड़ पर्सन्स कवर्ड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through PDS. Normal life has been severely affected due to the intense heat wave sweeping several parts of the country, including central and northwest India. People are facing difficulties as temperatures continue to remain abnormally high during both day and night. In Rajasthan, Sri Ganga Nagar recorded a maximum temperature of 48.2 degrees Celsius today. The Indian Meteorological Department, IMD, has said severe heat wave conditions are expected to continue over central and northwest India during the next 2 to 3 days. The weather agency has issued red colour warning for severe heat wave conditions over East Madhya Pradesh and Vidarbh tomorrow. Heat wave conditions are also expected over Delhi, Chandigarh, Rajasthan, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Konkan, Goa, Odisha, Punjab, Telangana and Uttar Pradesh tomorrow. Meanwhile, the IMD has predicted heavy rainfall over parts of northeast India, Bihar, Tamil Nadu and Puducherry tomorrow. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls being conducted by the Election Commission of India, ECI. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of the Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. It observed that SIR advances the constitutional imperative

कार्यक्रम माटी के रंग के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कलाकार कल्पना त्रिवेदी की आवाज़ में अवधि गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजपाल सिंह का राग अभोगी में गायन। संगत कलाकार हैं तबले पर सुहेब अहमद खान और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं कौशिक मिश्रा।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में राजपाल सिंह का राग अभोगी में गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब कुछ ही पल में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रूपये लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी

बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रिया का स्नेह भरा नमस्कार। मैं हाजिर हूँ कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर, जहाँ हर गीत होगा आपकी फरमाइश का। तो तैयार हो जाइए अपने पसंदीदा गीतों के साथ इस सुनहरे सफर के साथ।

मोहब्बत है क्या चीज़, ये उस चांद से पूछो जो हर रात तन्हा निकलता है, फिर भी अपनी चांदनी से किसी की रात रोशन कर देता है। सुरेश वाडकर और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म प्रेमलोक से। इस गीत की फरमाइश की थी चंडीगढ़ से बिमला अनेजा और सतीश अनेजा, साथ ही दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की है नीलम, मनीष, गीतांजलि, तनिष्का, प्रियाशी और बेबी, वेदांशी और मास्टर रणवीर ने। हरिद्वार से इस गीत की फरमाइश की थी ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम, मेहरा जहाँ, और दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की थी मधु और वीरेंद्र सिंह ने।

दोस्तों, मोहब्बत वो नहीं जो हर रोज जताई जाए, मोहब्बत तो वो है जो खामोशी से समझ जाए। कभी किसी की हंसी में मिल जाती है तो कभी किसी की यादों में बस जाती है। मोहब्बत एक ऐसा गीत है जो दिल टूटने के बाद भी अधूरा सा लगता है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म स्वयंवर से इस गीत की फरमाइश की थी गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फराना, फारिया ताहिरा और बुलंदशहर से एम एस अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार ने।

कुछ प्रेम कहानियों में बारिश जैसे ही होती है ना, तो थोड़ी देर के लिए चली भी जाए दोस्तों, मगर अपनी खुशबू हमेशा के लिए छोड़ जाती है। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म प्रेम कहानी से। इस गीत की फरमाइश की थी पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना और मैडी ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी गुजरात राजकोट से रश्मि झरना भरत कुमार ने। श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल का पता है IP रेडियो दिल्ली @gmail.com।

प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यश रफी साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम ने।

दोस्तों, पायल की छनक सिर्फ आवाज नहीं होती, कभी तो वो किसी की याद बन जाती है, तो कभी किसी के कान आने से उसकी खूबसूरत आहट पता चलती है। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म दीवाना से। इस गीत की फरमाइश की थी शास्त्री नगर भीड़ शहर से किशन साहब पाल, आशा साहब पाल, सोनिया, साई राज और विशाल ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नासमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने।

जी हाँ दोस्तों, पहले प्यार का नशा ही कुछ और होता है। इस गीत की फरमाइश की थी महाराज से श्रीकांत जोशी ने, साथ ही उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश ने। आप सुन रहे थे उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गीत फिल्म जो जीता वही सिकंदर से।

अनुराधा पौडवाल की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म साजन से। इस गीत की फरमाइश की थी रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू ने। साथ ही इस गीत की फरमाइश की है पहाड़गंज दिल्ली से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक ने।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म राजा से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है, मीडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है इन मीटरों

0: हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं सुबह 4:50 पर। आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी है। अब कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूरदराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अवशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसरों और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल को मिशन मोड में बढ़ावा देने पर बल दिया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में गन्ना और प्याज किसानों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
3: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
1: असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया। लगभग 200 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य GI टैग प्राप्त त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल की खेती, पाइनएप्पल की गुणवत्ता तथा कीमत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान एक श्रमिक की मौत और दूसरे के घायल होने के मामले में दिल्ली नगर निगम आयुक्त और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244

0: 47 runs in the eliminator match in New Chandigarh last night. Rajasthan Royals set the target of 244 runs against Sunrisers Hyderabad. In reply, Sunrisers Hyderabad could score only 196 runs in 19.2 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का यायार लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 12:10 और पूरे 10 सेकंड हो चुके हैं और ये वक्त होता है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम का, जिसका नाम है सुरों का सफरनामा।

लफ्जों का जादू, शायरी की दुनिया और सुरों में छुपी जिंदगी की कहानी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विकास। कुछ लोग सिर्फ गाने नहीं लिखते, वो लोगों के दिलों पर अपने अल्फाज लिख जाते हैं। आज का एक खास एपिसोड समर्पित है उस शख्सियत को जिसकी शायरी में बगावत भी थी, मोहब्बत भी, और जिसकी आवाज में दर्द भी था और हौसला भी। आज हम बात करेंगे मशहूर शायर, गीतकार और अद्भुत इंसान राहत इंदौरी की।

0: caro, caro, caro.
1: जी हाँ श्रोताओं, जब बात राहत इंदौरी की होती है तो कुछ उसी तरह के गीत हम सबके जहन में आते हैं और अपनी छाप छोड़ जाते हैं। श्रोताओं, 1 जनवरी 1950 मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में जन्म हुआ राहत इंदौरी साहब का। उनका असली नाम था राहत कुरैशी। पिता कपड़ा मिल में काम करते थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। राहत साहब बचपन से ही अलग थे। उन्हें चित्रकारी का भी शौक था और शब्दों से खेलना भी पसंद था। कहते हैं उन्होंने अपनी पहली शायरी स्कूल के दिनों में लिखी थी, आंख में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी।

दर्शकता हूँ, ये ऐसे गीत हैं राहत इंदौरी साहब के जो नींद भी चुराते हैं और चैन भी चुराते हैं, लेकिन हम बार बार उन्हें लगातार सुनते हैं। दोस्तों, हर बड़े कलाकार की जिंदगी में संघर्ष जरूर आता है और राहत इंदौरी साहब की जिंदगी भी इससे अछूती नहीं रही। उन्होंने पेंटिंग बनाकर पैसे कमाए, साइन बोर्ड पेंट किए, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, फिर उर्दू साहित्य में PhD भी की, लेकिन असली पहचान मिली मुशायरों से। उनकी आवाज, उनका अंदाज और उनके शेर पढ़ने की अद्भुत शैली, लोग बस सुनते रह जाते थे। धीरे धीरे वो हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय शायर।

जी हाँ श्रोताओं, इस तरह के संगीत, इस तरह के गीत राहत इंदौरी साहब की अलग से पहचान है। बहुत सारे गीत ऐसे थे जब हम उनको सुनते हैं तो राहत इंदौरी साहब की वो छाप, वो तस्वीर, जो एक उनकी क्या कह सकते हैं कि एक जो उनके अपनी पहचान है उन गानों को लेके, वो झलक साफ साफ दिखाई देती है। सबकी पलकों पर पानी है, ये कौन सी आग लगाई है। राहत इंदौरी साहब ने सिर्फ शायरी ही नहीं की बल्कि फिल्मों के लिए भी कई शानदार गीत लिखे। 90 के दशक में उनके गीत हर तरफ गूंजते थे। उन्होंने कई फिल्में में गाने लिखे जो आज भी लोगों की जुबां पर है। नींद चुराई मेरी, चोरी चोरी जब नजरें मिली, तुम सा कोई प्यारा कोई और देखा जो तुम्हें यार, ये गीत ऐसे हैं। इन गीतों में राहत साहब की भाषा बेहद आसान लेकिन दिल को छू लेने वाली थी। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब की सबसे बड़ी खूबी थी कि वो आम आदमी की भाषा में दिल की बात कह देते।

श्रोताओं, अगर आपने कभी राहत इंदौरी साहब को मंच पर सुना हो तो आप जानते होंगे कि वो सिर्फ शायर नहीं, एक पूरा एहसास थे। उनके मुशायरों में हजारों लोग जमा होते थे। उनकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि हर शेर पर तालियां गूंज उठती थी। वो कहते थे, बुलाती है मगर जाने का नहीं।

जी हाँ, सपने ऐसे देखें अगर वो सच हो जाएं तो क्या बात है। राहत इंदौरी साहब की ये बात बहुत ही प्यारी है कि वो इस तरह से चीज़ों को बयां करते हैं, अपने गानों में उन जज्बातों को रखते हैं जो बहुत ही अजीज होते हैं हम सभी के लिए। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुशायरे किए उन्होंने। भारत, अमेरिका, दुबई, यूके, हर जगह उनके चाहने वाले मौजूद थे। उनकी किताबें भी बेहद लोकप्रिय रहीं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा अवार्ड होता है लोगों का प्यार, और राहत इंदौरी साहब को ये प्यार बेहिसाब मिला। राहत साहब सिर्फ मोहब्बत की बातें नहीं करते थे, वो समाज, राजनीति और इंसानियत पर भी खुलकर लिखते थे। उनकी शायरी युवाओं को हिम्मत देती।

जी हाँ श्वेतम, जब भी हम बात करते हैं राहत इंदौरी साहब की तो बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो ऐसे जहन में कि उन शायरी का क्या, उन किताबों का क्या, उन लफ्जों का क्या, उन जज्बातों का क्या। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, उनके शब्दों में सच था और यही वजह थी कि लोग उनके दिल से सुनते थे। उर्दू शायरी की दुनिया का एक चमकता सितारा हमेशा के लिए खामोश हो गया, लेकिन कलाकार कभी मरते नहीं, वो अपने शब्दों में, अपने गीतों में, अपने चाहने वालों के लिए हमेशा

श्रोताओं, राहत इंदौरी साहब ने हमें सिखाया कि अल्फाज सिर्फ लिखे नहीं जाते, उन्हें जिया जाता है। उन्होंने लिखा कि मैं मर भी जाऊं मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। तो श्रोताओं, आज का एक खास एपिसोड समर्पित था राहत इंदौरी साहब को। फिर मिलेंगे एक नई आवाज, एक नए कलाकार और एक नए सफर के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने 4 उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली तथा वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका CDC ने कांगो में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के रोग उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात के 2 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: ये सुधार है PDS के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और PDS

0: इसके बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस की रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक जिम्निक में भाग लेने के लिए साइप्रस पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपीय आयोग के उपाध्यक्ष काजा कल्लास और साइप्रस के विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस को नियंत्रण के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भारत में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर अपनी सिफारिशों से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट में विवाह, तलाक, भरण पोषण, बच्चों की देखरेख और संपत्ति में अधिकार जैसे मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें मुस्लिम महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानूनों की भी समीक्षा की गई। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration support, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Support and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,000 530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding cabinet's decision.

बाघ को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और पीडीएस के बेनिफिशियरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजना

0: को तेजी से पूरा करने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंद्र अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिविहा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने रूस यूक्रेन संघर्ष और स्थायी शांति के प्रयासों पर चर्चा की। यह बैठक साइप्रस में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक जिमनिक फोरम के दौरान हुई। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र अफ्रीका CDC ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में फैल रहे इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत द्वारा भेजी गई आपातकालीन दवाओं और चिकित्सा सामग्री का स्वागत किया है। इस सहायता में जांच किट, दवाएं, संक्रमण रोकथाम सामग्री और मरीजों के उपचार से जुड़ी जरूरी सामग्री शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल का शुभारंभ किया। लगभग 200 करोड़ रुपए की इस पहल का उद्देश्य GI टैग प्राप्त त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल की खेती, पाइनएप्पल की गुणवत्ता तथा कीमत को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद अंतिम ओवर में 196 रन पर ही सिमट गई। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades, till March 2031. The umbrella scheme called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle of award period with an outlay of 25,530 crore rupees, a central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw made the announcement regarding the Cabinet's decision while briefing media in New Delhi. The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. Prime Minister Narendra Modi has said the government is committed to ensure that food grains reach every needy person in the country on time through TDS. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गजल। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस शैलजा और एस सौंदर्या का भक्ति संगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं तिरुनयना संबंधार की रचना पीडी अदान से।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। श्रोताओं, आइए सुनते हैं नाद ब्रह्म कर्नाटक म्यूजिक के कार्यक्रम में। आप सुनेंगे अनन्या वेंकटेशन का गायन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज बृहस्पतिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 मई 2026। सुबह के 4:53 हो चुके हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं, आपको बताते हैं प्रोग्राम समरी, कौन कौन से वो कार्यक्रम हैं जो आप इंद्रप्रस्थ पर सुन सकते हैं।

0: अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें, जिसमें आज आप जानेंगे अर्ध मत्स्येन्द्र आसन के बारे में। 5:20 पर देशभक्ति फिल्मों से गीत सुनेंगे आप। 5:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी में आप सुनेंगे प्रभाकर नारायण पाठक का राग भैरव में ध्रुपद गायन। सुबह 6:10 पर भक्तिमय संगीत का कार्यक्रम होगा वंदना, और 6:40 पर कार्यक्रम चिंतन, और 6:45 पर श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। 6:55 पर आपके लिए लेकर आएंगे संस्कृत में समाचार, और 7:10 पर होगा कार्यक्रम संगीतिका। 7:30 पर गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और सुबह 8 बजे समाचार प्रभात। 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे, और 8:30 पर आप उर्दू में समाचार सुनेंगे। 8:45 पर स्वर गंगा शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम होगा, जिसमें आप हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सुनेंगे। राकेश पाठक का राग शुद्ध सारंग में गायन होगा। 9:15 पर कार्यक्रम होगा उद्योग पत्रिका, और 9:30 पर पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक, और जिसमें आप सुनेंगे आज डिजिटल इंडिया योजना सरबजीत सिंह के साथ, और लोकगीत होंगे ये। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, जीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में फिर आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: ये सुधार है पीडीएस के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में, और पीडीएस के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और पीडीएस एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किया जाए। नई दिल्ली में 91वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजना को तेजी से पूरा करने को कहा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। सिक्किम ये पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश का 15वां और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन जाएगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दी जाने वाली सर्वोच्च औपचारिक उपाधि है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में सिक्किम पुलिस के 400 गौरवशाली जवान राष्ट्रपति के समक्ष परेड में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी

0: ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। असम विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकियां स्थापित करने और कांटेदार तार की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को 142.79 एकड़ जमीन सौंप दी है। ये निर्णय पहली मंत्रिमंडल बैठक में तय किए गए उस लक्ष्य का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 45 दिनों के भीतर कुल 600 एकड़ जमीन हस्तांतरित की जानी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य सरकार ने संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ चौकियों और कटीले तारों की बाड़ के निर्माण की गति देकर सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के ठोस कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा है। राज्य में सीमा के लगभग 1,600 किलोमीटर हिस्से पर बाड़ लगाई जा चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू की स्थिति के मद्देनजर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। आईपीएल क्रिकेट में के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान ने हैदराबाद के सामने 244 रन का लक्ष्य रखा था। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and gobar dhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined that the rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. The Supreme Court Collegium recommended the elevation of Chief Justices of 4 High Courts and Senior Advocate V. Mohanna as judges of the Apex Court. According to a statement uploaded on the top court's website, the Collegium, headed by Chief Justice of India Surya Kant, held its meetings on May 22nd and May 27th. It has recommended the elevation of Chief Justice of Punjab and Haryana High Court, Sheel Nagu, Chief Justice of Bombay High Court, Sri Chandrasekhar, Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, Sanjeev Sachdeva, Chief Justice of the High Court of Jammu and Kashmir and Ladakh, Arun Palli, and Mohana as judges of the top court. The Apex Court presently has 32 judges, including the CJI. 2 sitting judges of the top court are set to retire next month. Currently, Justice B.V. Nagaratna is a lone woman judge in the Apex Court. Mohana's appointment as a judge of the Apex Court will add to the women's representation on the bench. Recently, the government had promulgated an ordinance to increase the strength of the Supreme Court from the present 34 judges to 38, including the CJI. President Draupadi Murmu will confirm.

0: for the prestigious President's Police Colour to the Sikkim Police at the Paltur Stadium in Gangtok today. Sikkim will become the 15th state of the country and third from Northeast to receive this award. The President's Police Colour is the highest ceremonial honour awarded to a police force in the country in recognition of exceptional service, unwavering discipline and dedication to the nation. A contingent of 400 proud Sikkim police personnel led by a SSP rank officer will take part in the parade in front of the President. The recognition stands as a proud tribute to the commitment, sacrifice and professionalism displayed by the brave personnel of Sikkim police in serving the people and safeguarding the state. In Uttar Pradesh, Eid al-Adha is being celebrated with religious fervour across the state. Administration has made elaborate arrangements and taken precautions for the smooth celebration of Bakrid today. State government has issued an advisory directing all district police chiefs to ensure that no new tradition should start and no sacrifices restricted animals should take place. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has arrived in Cyprus to participate in the informal meeting of the EU Foreign Affairs meeting, Gimnish. In a social media post, the External Affairs Minister thanked Vice President of the European Commission, Kaya Kallas, and Foreign Minister Cyprus, Dr. Konstantinos Komdos, for the invitation. External Affairs Minister S. Jaishankar and his Ukrainian counterpart, Andrei Sybiha, discussed the ongoing Russia-Ukraine conflict and efforts aimed at achieving a comprehensive and lasting peace. The meeting took place on the sidelines of the informal meeting of European Union foreign ministers, known as the Gymnish Forum in Cyprus. Jaishankar, in a social media post yesterday, described the interaction as a useful meeting and said the two sides exchanged views on the Ukraine conflict and discussed bilateral cooperation. In IPL cricket, Rajasthan Royals defeated Sunrisers Hyderabad by 47 runs in the eliminator match in New Chandigarh last night. Rajasthan Royals set the target of 244 runs against Sunrisers Hyderabad. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, जीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 5:10 और पूरे 15 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है, यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुले एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए।

आज बात करेंगे अर्ध मत्स्येन्द्रासन की। अर्ध मत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्ध मत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्ध मत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्ध मत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्ध मत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें। लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को ढीला छोड़ें। आराम से सीधे बैठ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। अर्ध मत्स्येन्द्रासन के लाभ। इससे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन में रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है, जिससे उसकी कार्य कौशलता में सुधार होता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। यह आसन छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सीय है, लेकिन यह आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। यह आसन पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे कब्ज जैसी स्थिति में लाभ होता है। अग्नाशय के लिए लाभदायक है, मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है अर्ध मत्स्येन्द्रासन। यही आसन डायबिटीज, कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्रपथ विकारों, मासिक धर्म की परेशानियां और अपच के लिए चिकित्सीय है। अर्ध मत्स्येन्द्रासन के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं।

गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान यह आसन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनके दिल, पेट या मस्तिष्क की ऑपरेशन की गई हो, उन्हें अर्धमत्स्येंद्र आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी आसन वर्जित है। पेप्टिक अल्सर या हर्निया वाले लोगों को यह आसन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या समस्याएं हैं तो आप यह आसन ना करें। हल्के स्लिप डिस्क में इस आसन से लाभ हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में इसे नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी चैनल पर इसी समय। योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 5:30 और पूरे 30 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रभाकर नारायण पाठक का राग भैरव में ध्रुपद गायन। पखावज पर इनका साथ दे रहे हैं राहुल भट्टाचार्य। आइए सुनते हैं कार्यक्रम।